सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026 प्रातः के 5:58:45 हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघ

0: वर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, वहां प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज हमारे जीवन में हो चुकी है एक और नई सुबह की शुरुआत, तो इस नई सुबह की शुरुआत में आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की करते हैं हम मंगल कामना। श्रोताओं, ये प्रकृति का नियम है कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ जतन करने होते हैं, वह चीज स्वयं चलकर हमारे पास नहीं आती है। लेकिन जब हम

प्रेमवश, निस्वार्थ भाव से, पूर्णतः समर्पण के साथ अपने आराध्य का सुमिरन कर उन्हें याद करते हैं, तो वे स्वयं हमारे हृदय में आकर बस जाते हैं।

राम स्तुति। श्रोताओं, प्रभु श्री राम तो कण कण में विराजमान हैं। उनके दर्शन पाने की मन में अभिलाषा और नजर होनी चाहिए। अगर हमारे लबों पर राम का नाम हो, मन में आस्था हो, तो हम श्वास श्वास उनका भजन करने में आनंद महसूस करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में भजन। श्रोताओं, अक्सर ये देखा गया है कि इंसान के पास जो भी चीज अधिक होती है ना, उसका उसे अभिमान हो जाता है। वो धन हो, वैभव हो, ताकत हो या फिर सामर्थ्य। इतना ही नहीं, जप तप भी हो सकता है। तो आइए गुरुवाणी सुनकर अकाल पुरख से करते हैं ये अरदास।

अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में ये गुरुवाणी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुन लेते हैं अजीज़ नज़ा की आवाज़ में नात।

अभी आप सुन रहे थे अजीज नजा की आवाज में नात। श्रोताओं, आज मंगलवार है। श्री राम भक्त हनुमान जी की आराधना, पूजन, वंदन, व्रत और आरती का दिन। तो आइए वंदना कार्यक्रम के अंत में हम सुन लेते हैं हनुमान जी की आरती।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ में हनुमान जी की आरती के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। कलाकार हैं भूपेंद्र और मिताली बी सिंह। संगीत सतीश भाटिया का।

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राजतिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धूरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

0: की अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अयोध्या में 2 दिवसीय श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभी कार्य 30 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 2 विशेषज्ञ अगले 3 वर्षों तक स्थानीय कर्मचारियों को संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे।
2: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने 2 अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
0: राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कल जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

नमस्कार, ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं, आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। श्रोताओं, आपके सुखी और संपन्न जीवन की मंगल कामना करते हुए आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत प्रमुख अखबारों की कुछ खास सुर्खियों के साथ। सबसे पहले बात अमर उजाला अखबार की। नागरिक घबराएं नहीं, धैर्य रखें, देश में पेट्रोल व डीजल का पर्याप्त भंडार। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, जरूरी चीजों की पर्याप्त आपूर्ति, ठोस कदम उठा रही सरकार। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका या दबा नहीं सकती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत ने वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु परीक्षण किया, वहीं अटल इच्छा शक्ति आज भी भारत की पहचान। जनपद बिजनौर में 12,000 बीघा में बनेगा एक औद्योगिक गलियारा। जमीन का सर्वे करने के लिए यूपीसीडा ने प्रशासन को भेजा पत्र, यूपीडा ने पहले ही 1,000 हेक्टेयर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने को जमीन की है चिन्हित। लखनऊ से खबर, माह में बनानी होगी 20 करोड़ रुपए तक की लागत की सड़क। पीडब्ल्यूडी ने 5 करोड़ रुपए से ऊपर की सभी सड़क व पुलों के लिए तय की समय सीमा। बंगाल असम में घुसपैठिए और कट्टरपंथी रडार पर, 450 किलोमीटर सीमा की होगी बाड़बंदी। बंगाल में बनेंगे बीएसएफ के 15 बटालियन हेडक्वार्टर, सख्त होगा पहरा। पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, आंधी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी, राजस्थान गुजरात में लू से बढ़ेगी परेशानी। अब बात हिंदुस्तान अखबार की। वीबी राम जी कानून 1 जुलाई से लागू होगा, मनरेगा की जगह लेगा, सरकार बोली श्रमिकों को परेशानी नहीं होगी। अग्निवीरों को नियमित सैनिकों जैसी पेंशन नहीं, केंद्र सरकार ने कहा, परिजन पेंशन लाभों से समानता का दावा नहीं कर सकते। पहाड़ों से लुप्त हो रही चवन प्रकाश की बूटियां, जड़ी बूटियों का अनियंत्रित दोहन और जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा कारण, कई तरह की दवाओं में होता है इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल। चूहों की बदबू से महिला आयोग की सदस्य निरीक्षण छोड़ भागी, बांदा में कस्तूरबा स्कूल के निरीक्षण में खुली पोल, छात्राओं के चयन कक्ष में कूलर न होने पर नाराज। बार्सिलोना की टीम रियल मैड्रिड को हराकर 29वीं बार चैंपियन, स्पेनिश लीग में लगातार दूसरे साल बरकरार रखी बादशाहत, रशफोर्ड और टॉरेस बने जीत के हीरो। 57 बार फाइनल में पहुंची बार्सिलोना की टीम 28 बार उपविजेता रही। ट्रेन सेवाएं कई मार्गों पर उड़ान से आगे निकल जाएंगी, केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा, जल्द ही कई नए रेल मार्गों पर यात्रा समय में काफी कमी आएगी। क्रूज से उतारे गए 3 यात्री हंता वायरस से संक्रमित, क्रूज से उतरकर पेरिस लाए गए 5 यात्रियों में से एक महिला संक्रमित, 17 अमेरिकी यात्रियों में एक व्यक्ति हंता वायरस से पीड़ित मिला। अब सुर्खियां दैनिक जागरण अखबार की। अखबार लिखता है कि नीट यूजी परीक्षा के 140 प्रश्नों के सैंपल पेपर से हूबहू मिलने पर सवाल, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के दावों पर उठा सवाल, महीने भर पहले ही छात्रों के पास पहुंच गया था सैंपल पेपर, पेपर के राजस्थान के साथ केरल और उत्तराखंड तक पहुंचने के मिले सुराग। कूड़ा बेचकर आय बढ़ाने में जनपद बिजनौर की ग्राम पंचायत प्रदेश में अव्वल, 46 लाख रुपए से ज्यादा का बेचा गया कूड़ा, गांव से खत्म हुई समस्या। ग्रेटर नोएडा में देश का पहला मैग्नेट प्लांट लाएगी लोहम, 5,000 टन क्षमता का मैग्नेट प्लांट होगा शुरू, केंद्र सरकार से मिलेगी 25% सब्सिडी। जॉनी जॉनी यस पापा, इस कविता पर छिड़ी बहस, कविता हटाने को केंद्र को पत्र लिखेंगे उच्च शिक्षा मंत्री, बोले झूठी व उपहास उड़ाने वाली अंग्रेजी कविताओं का करेंगे विरोध। जॉनी जॉनी यस पापा और रेन रेन गो अवे को भारतीय संस्कृति व मूल्यों के विपरीत बताया। नेपाल की यमुना ढकाल ने नेपाल से बद्री केदार तक की साइकिल यात्रा, 3 महीने में साइकिल से कर चुकी हैं 3,000 किलोमीटर से अधिक सफर। पीएम की

दिल से निवेशक चिंतित, बाजार लुढ़के। अमेरिका ईरान के शांति समझौते में पहुंचने में नाकाम रहने और क्रूड में आई तेजी का भी दिखा दबाव। पीएम की अपील से निवेशक चिंतित, बाजार लुढ़के। अमेरिका ईरान के शांति समझौते में पहुंचने में नाकाम रहने पर क्रूड में तेजी का दिखा दबाव। और ये आखिरी खबर कि हल्दी लगाने के बाद दूल्हा दुल्हन बीमार, इंदौर प्रशासन ने लिए नमूने, एलर्जिक रिएक्शन की हुई पुष्टि। तो श्रोताओं, ये थी आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियां। और अखबारों की सुर्खियों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम करते हैं बात भारतीय संस्कृति की किसी एक विशेषता की, तो आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद 3000 वर्ष से अधिक पुरानी एक समग्र जीवन शैली और चिकित्सा पद्धति है। ये केवल रोगों का उपचार नहीं, बल्कि योग, आहार और दिनचर्या के माध्यम से मन, शरीर और आत्मा के संतुलन द्वारा स्वास्थ्य जीवन जीने की कला सिखाता है। आयुर्वेद शरीर में वात पित्त कफ के संतुलन पर आधारित है। सुबह उठने से लेकर खानपान, जड़ी बूटियों का प्रयोग, मौसम के अनुसार दिनचर्या तक आयुर्वेद भारतीय परंपरा में रचा बसा है। इसके जनक आचार्य चरक माने जाते हैं, जिन्होंने चरक संहिता के माध्यम से चिकित्सा संसाधनों का विस्तार किया। दोस्तों, आयुर्वेद हमें काफी हद तक रोगों से बचाता है, लेकिन एक अटल सत्य है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है परमात्मा के सिवा, क्योंकि परमात्मा ही मारने वाला है और वही बचाने वाला भी है।

0: है, यानी एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे आसपास रहती है, जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन असर उसका महसूस किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? अगर नहीं तो किसी डॉक्टर या किसी नर्स को देख लीजिएगा। बेशक मरीज के उपचार का भार एक चिकित्सक के कंधों पर होता है, जी हां, लेकिन किसी मरीज के प्रति अपनत्व का भाव एक नर्स में नजर आता है। नर्स स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की रीढ़ होती है, जो जीवन बचाने, रोगियों के उपचार में सुधार लाने और समाज में, या यूं कहें कि समुदायों को सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभाती है। आपको बता दें कि आधुनिक नर्सिंग की अग्रदूत फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि क्रीमिया युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायल सैनिकों की देखभाल की और स्वच्छता की स्थिति में उनका व्यापक सुधार किया, जिससे आज की पेशेवर नर्सिंग की नींव पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने विश्व भर में नर्सों के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करने की एक जरूरत को महसूस किया और फिर वर्ष 1974 में इस दिवस की आधिकारिक रूप से स्थापना की। आपको यह भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 की थीम है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर हम उनकी निस्वार्थ सेवा और अस्पताल के हर वार्ड और क्लिनिक के गलियारे में उनके द्वारा छोड़े गए स्थायी प्रभाव को सम्मान देते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और दोस्तों, आपने भी ये चीज जरूर अपने जीवन में महसूस की होगी कि जब कभी आपके परिवार में कोई बीमार होता है, आप उन्हें आपात स्थिति में अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, तो निश्चित ही चिकित्सक से उन्हें उपचार तो मिलता है, लेकिन यही एक शख्स है, यानी अर नर्स, जो कि आपको निस्वार्थ भाव से, हालांकि वो उसकी ड्यूटी होती है, उनकी ड्यूटी होती है, उसकी वो सैलरी लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने दायित्वों से ऊपर उठकर आपको एक परिवारजन का एक एहसास कराती है और आपको कतई परेशान नहीं होने देती है। तो ऐसी नर्स के प्रति हमें हर समय सम्मान का भाव रखना चाहिए। श्रोताओं, इसी भाव के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। इस कार्यक्रम में मैं बना हुआ हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तिथि विशेष की। दोस्तों, यूं तो हमारे जीवन में हर एक दिन खास होता है, कुछ बीते दिनों की यादें जो हमारे जहन में ताज़ा रहती हैं, इन्हीं यादों को एक बार फिर से पन्नों में पलटते हुए हम आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं कुछ ऐतिहासिक तिथियाँ। इन तिथियों पर हुआ था कुछ खास, जो कि आपको दिलाएगा इस बात का एहसास कि हाँ, वास्तव

हमारे जीवन की हर एक तिथि महत्वपूर्ण होती है, यादगार होती है, क्योंकि आज जो होगा वो इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा और फिर कभी किसी दिन याद किया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम में बात करते हैं आज के दिन हुई कुछ खास घटनाओं की। दोस्तों आपको बता दें कि 12 मई 1941 में जर्मनी में दुनिया का पहला कार्यात्मक स्वचालित व प्रोग्राम करने योग्य Z3 कंप्यूटर प्रस्तुत किया गया था। आविष्कारक कॉनराड जूस ने इसे डिजाइन किया था और इसका उपयोग विमान निर्माण में जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता था। दोस्तों इस प्रमुख कंप्यूटर को प्रस्तुत करने के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि 12 मई 1926 में नॉर्वे के रोआल्ड अमुडेसेन ने और उनके 15 सदस्यीय दल ने उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले सत्यापित खोजकर्ता आप बने थे और इस यात्रा के लिए हवाई पोत नार्गे का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले अमुडेसेन ने 1911 में पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर कदम

15 सदस्यीय दल ने उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले सत्यापित खोजकर्ता अपने थे और इस यात्रा के लिए हवाई पोत नार्गे का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले अमन सेन ने 1911 में पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर कदम

राष्ट्रीय महासभा ने दिसंबर 2018 में वर्ष 2020 को ये दिन मनाने की घोषणा की थी। और यूं तो हमारे सभी श्रोता जानते ही होंगे कि फिर भी आपको बता दें कि यह हमारा दायित्व है कि आज के दिन विशेष पर ये बात हम आपके साथ साझा करें कि पौधे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, ये भोजन और औषधि प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि कीटों और बीमारियों के कारण दुनिया भर में 40% फसलें प्रभावित होती हैं। इसके बचाव के लिए सही मिट्टी, संतुलित पानी, धूप, जैविक कीट नियंत्रक संयोजन जरूरी होता है। नियमित जांच, जैविक खाद का प्रयोग और कीटों के लिए नीम के तेल का प्रयोग जरूरी होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पौधों से लगाव करें, उनसे प्यार करें। वे बोल भले ही नहीं सकते लेकिन महसूस बहुत करते हैं, समझते बहुत खूब हैं।

तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन इस कार्यक्रम को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में अपने सुझाव हमें जरूर भेजिएगा। अब कल पुनः आपसे भेंट होगी कुछ और खास जानकारियों और प्यारे प्यारे से फिल्मी गीतों के साथ। तब तक आप आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और याद रखिए, भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। नमस्कार।

0: کے ساتھ ساتھ
1: ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم سورج کے ساتھ ساتھ. ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. صبح کے 8 بجنے کو ہیں. اب آپ ہمارے دلی کیندر سے سنیں گے سماچار پربھات.
2: نمسکار, آکاشوانی سے سماچار پربھات کے ساتھ میں مکیش کمار. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया. वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे. प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है. और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है. गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई.
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें. ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए. मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें. मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले.
2: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है. पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है.
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें. जहां भी

0: संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
3: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री

0: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमरीका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
5: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
6: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री

0: जाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
2: प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इंडिया स्पेंड्स लाख्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस इन फॉरेन एक्सचेंज टू इंपोर्ट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड द क्राइसिस हैज लेड टू स्टीप राइज इन इंपोर्टेड गुड्स इन severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी

परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। और दोस्तों, गीत संगीत के साथ साथ हम कर रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो कि दिल को छू ले जाती हैं। और देखिएगा, दिल को छूने के लिए जो अचानक से मौसम बदला है, वो ही इस समय चाहता नज़र आ रहा है। और कई जगहों पर तो बारिश पड़ रही है और ठंडी हवा के झोंके हैं, ऐसे में ये मौसम दिल को तो लुभा ही रहा है। लेकिन भीषण गर्मियों के दिन इस समय चल रहे हैं, ये मौसम स्थायी नहीं है। आज नहीं तो कल मौसम जब बदलेगा तो फिर से गर्मियों का दंश झेलना होगा। लेकिन जो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, वो आपको ताजगी से भर देगा।

ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की युगल आवाजों में फिल्म पति पत्नी और वो। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत रविंद्र जैन का। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बदलाव प्रकृति का एक नियम है, जैसे कि यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, अब रफ्तार रफ्तार आगे बढ़ते हुए अपने अंतिम मुकाम पर पहुँच चुका है और अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। लेकिन चलते चलते इस कार्यक्रम का ये अंतिम प्यारा सा गीत आपके लिए।

किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे और आर डी बर्मन के संगीतबद्ध किए फिल्म कारवां के इस प्यारे से गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। क्षमा कीजिए, जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
1: जिले में स्वगणना प्रक्रिया को नागरिकों का उत्साहपूर्ण समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस ऑनलाइन सुविधा के तहत लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से खुद ही जनगणना कर रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन 2400 से ज्यादा नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना पूरी की, जिससे कुल संख्या बढ़कर लगभग 3200 तक पहुँच गयी है। जबकि पहले दिन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों समेत 762 लोगों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की थी। ये ऑनलाइन व्यवस्था सरल, सुरक्षित और समय की बचत करने वाली है। नागरिक अपने मोबाइल नंबर के ओटीपी सत्यापन के बाद निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कर परिवार से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं। फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें आवास, परिवार और सामाजिक स्थिति से जुड़े लगभग 33 बिंदुओं की जानकारी मांगी जाती है। फॉर्म जमा होने के बाद नागरिक को एक विशेष SEID प्राप्त होती है, जिसे बाद में सत्यापन के दौरान जनगणना अधिकारी को दिखाना होगा। ये प्रक्रिया 21 मई तक जारी रहेगी और प्रशासन लगातार लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित कर रहा है। बेहतर शिक्षा और उन्नत भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचंदपुर कला में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों के चेहरे उस समय खुशी से खिल उठे जब उनके मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की घोषणा का जिक्र हुआ। समारोह का शुभारंभ मारेरा विधायक वीरेन सिंह लोधी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे शिक्षा मित्रों और अधिकारियों ने ध्यान पूर्वक सुना। विधायक वीरेन सिंह लोधी ने शिक्षा

0: छात्रों को बढ़े हुए मानदेय के प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए। जिले में पोषण और बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की तैयारी तेज कर दी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिल सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जलेसर क्षेत्र के कोसमा, बिचपुर और अवागढ़ के पुनहरा में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। जलेसर के दोनों केंद्रों पर लगभग 27,80,000 रुपए की लागत आएगी, जबकि पुनहरा केंद्र पर करीब 30,22,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र के लिए पहली किस्त के रूप में 10-10 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इन केंद्रों में बेबी टॉयलेट, बाल अनुकूल शौचालय, मल्टीपर्पज हॉल, किचन शेड, स्टोर रूम और विस्तृत बरामदा जैसी सुविधाएं होंगी। बच्चों के खेलने और गतिविधियों के लिए आकर्षक लॉन भी विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन मॉडल केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, महिलाओं में जागरूकता और किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। खरीफ सीजन से पहले किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग इस बार किसानों को धान की उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाली कई किस्मों के साथ उड़द का बीज भी 50% अनुदान पर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन बुकिंग और फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मनवीर सिंह ने बताया कि जिले के लिए 1,540 क्विंटल धान बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 552 क्विंटल धान बीज प्राप्त हो चुका है और बाकी बीज जल्द ही पहुँच जाएगा। उन्होंने बताया कि उपलब्ध कराई जा रही धान की किस्में अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिरोधी और बेहतर गुणवत्ता वाली हैं। विभाग ने किसानों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है, जिससे कि उन्हें योजना का लाभ आसानी से मिल सके। वीरंगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की साइटोपैथोलॉजी लैब ने चिकित्सा क्षेत्र में एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। पैथोलॉजी टीम ने मरीज के हाथ में बनी सामान्य दिखाई देने वाली गांठ की जांच के दौरान फाइलेरिया के जीवित माइक्रो फाइलेरिया की पहचान की है। जांच के दौरान FNC तकनीक के माध्यम से फाइलेरिया के परजीवी की पुष्टि की गई। गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2027 तक देश से फाइलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साइटो लैब इंचार्ज डॉक्टर अंकिता शर्मा ने कहा,
1: जब मरीज को सिम्टम आना शुरू होते हैं तो उसके कॉमन जो लक्षण हैं वो हैं बुखार आना, दर्द होना, तो लसिका तंत्र को ब्लॉक कर देता है, उसको खराब कर देता है। तो पैरों में सूजन आना, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, तो हाथी पांव नामक बीमारी हो सकती है। फाइलेरिया लाइलाज बीमारी नहीं है जब तक वो लेट ना हो।
2: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
3: कौशाम्बी जिले में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला होमगार्ड कार्यालय का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 284 करोड़ की लागत यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। उन्होंने कहा कि
4: सन 1962 में होमगार्ड का विभाग का गठन हुआ। 1962 के बाद 1970 तक के और 1970 से अब तक के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक होमगार्ड विभाग के लिए है, मैं कह सकता हूँ ये कीर्तिमान है। वर्दी भत्ता हो चाहे दैनिक भत्ता हो, उसको माननीय मुख्यमंत्री दैनिक भत्ता एक किया, 42 दिन की ट्रेनिंग को 90 दिन की किया कि हमारा होमगार्ड का जवान दक्ष हो और शारीरिक क्षमता उसकी बढ़े। 1970 से पहले कोई होमगार्ड का जवान किसी दुर्घटना का शिकार होकर आता तो 3 लाख रुपए की बीमा राशि होती थी, लेकिन आज होमगार्ड का जवान ड्यूटी पे है, घर पे है, रास्ते में है, कहीं भी है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। साथ साथ हमने जो बैंकों से टाई अप किया है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 35 लाख रुपए बैंक देगी। तो 40 लाख रुपए जब उस परिवार को मिलते हैं तो हम लोगों को कुछ संतुष्टि होती है कि उस परिवार के लिए हम कुछ कर पाए।
3: कौशाम्बी जिले में जनगणना 2027 का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। जिला अधिकारी अमित पाल शर्मा ने बताया कि 7 मई से 21 मई तक स्वगणना हो रही है। इस अवधि में नागरिक स्वयं एवं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से जनगणना वेबसाइट SCS पर दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े विश्वसनीय होंगे, जिससे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय अभियान में अधिक से अधिक जनगणना ऐप का प्रयोग कर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। कौशाम्बी जिले में जिला न्यायालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 30,000 से अधिक शमनी वादों का निस्तारण किया गया। कौशाम्बी जिले में समाधान अभियान के अंतर्गत कई ग्राम सभाओं में भूमि विवादों की सुनवाई कर अवैध कब्जे खाली कराए गए। अपर जिला अधिकारी राजस्व ने बताया कि टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान के अंतर्गत भीती देहमाफी कोरीपुर सहित दर्जनों गांव में अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम के साथ विवादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पुलिस और राजस्व टीम अवैध भूमि खाली कराई गई। कौशाम्बी जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 192 कार्यों को पूर्ण किया गया। जल निगम एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 275 पेयजल परियोजनाओं में 192 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 78 परियोजनाओं पर कार्य जारी है, 114 परियोजनाओं में टेस्टिंग और ट्रायल का कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने की योजना कई गांवों में चल रही है। गर्मी के मौसम में 130 तालाबों के सापेक्ष 40 तालाबों में पानी भरा दिया गया, शेष तालाबों में कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी जिले में नई बैरिक का निर्माण होने से बंदियों को जिला कारागार में सुविधा मिल रही है। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला कारागार में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध होने के कारण बंदियों को रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पत्राचार के माध्यम से एडीजी कारागार द्वारा जेल के अंदर बैरिक निर्माण की अनुमति दी गई, जो करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो गई। बंदियों को गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा। जिला कारागार में बंदियों को शुद्ध भोजन और शीतल जल की सुविधा उपलब्ध है। कौशाम्बी जिले में लक्ष्य के सापेक्ष किसानों से गेहूं खरीद सरकारी संस्थानों द्वारा की गई। जिला विपणन अधिकारी सुधांशु शेखर चौबे ने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष 75% किसानों से गेहूं खरीद की गई। किसानों को समय से समर्थन मूल्य का भुगतान बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में लगभग 2 दर्जन से अधिक क्रय केंद्र संचालित है, जहां पर किसानों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि जिले में 1 दर्जन से अधिक थानों और चौकियों पर काफी समय से तैनात पुलिस कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 1 दर्जन से अधिक जेल की सलाखों में भेजा गया। 2 दर्जन से अधिक पारिवारिक विवादों का सुलह समझौता के आधार पर पत्नी को राजी कराकर नया जीवन व्यतीत करने के लिए पहल की गई। गंभीर आपराधिक मामलों में पैरवी कर न्यायालय में 3 दर्जन से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। धरती गाती है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आइए आज इस कार्यक्रम में हम सुन लेते हैं लोक कलाकार नीलम वर्मा की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का ये पहला रुहेलखंडी लोकगीत।

0: इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। कार्यक्रम में आपने सुने लोक कलाकार नीलम वर्मा की आवाज़ में रोहिलखंडी लोक गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की, वाचन स्वर एवं संकलन साद अहमद का।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं साद अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का हम सबके पसंदीदा कार्यक्रम बात आसपास की में। श्रोताओं, कहते हैं हम दुनिया को जैसे देखते हैं वैसी ही हमारी दुनिया बनती है। हर रंग, हर चेहरा, हर एहसास हमारी आंखों के जरिए ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है। लेकिन सच ये भी है कि हम अपनी आंखों का उतना ख्याल नहीं रखते जितना हमें रखना चाहिए। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आंखों की देखभाल, सही आदतें और जागरूकता की, ताकि हमारी यह अनमोल रोशनी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। आज की जिंदगी में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सब हमारे सबसे ज्यादा करीब हो चुके हैं। सुबह उठते ही स्क्रीन और रात को सोने से पहले भी स्क्रीन। इसी बीच हमारी आंखें लगातार काम करती रहती है और धीरे धीरे शुरू होती है छोटी छोटी समस्याएं, आंखों में जलन, ड्राइनेस और धुंधलापन। लेकिन हम इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आंखों से जुड़ी समस्याओं और उनकी गंभीरता को समझने के लिए हमने बात की एक नेत्र चिकित्सक से।
2: जी, मैं अथन नसीम, फाउंडर डॉक्टर अथर चैरिटी आई हॉस्पिटल करतपुर। समस्या है ड्राई आई, जिसको बोलते हैं खुश्की आंखों की, या आंखों का सूखापन जिसको कहते हैं। ये इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आजकल नॉर्मल इंसान का लाइफस्टाइल चेंजेस है, जैसे आप यूं समझे कि आंख के अंदर नया पानी बनता है। अब जब आप कोई सिस्टम लाइक लैपटॉप, मोबाइल या डिजिटल स्क्रीन कोई देख रहे होते हैं तो उस वक्त आप ब्लिंक नहीं करते, तो ब्लिंक नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है जो प्रोसेस था आपका नया पानी बनने का वो हो ही नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से खुश्की हो रही है। हर साल चेक कराना जरूरी है, चाहे कोई आंख में परेशानी हो या ना हो, एक बार जो भी आपके करीबी आंखों के डॉक्टर हैं उनसे आंख जरूर चेक कराएं। अगर आदमी को फील होती है

0: इंसान को फील होती है तो उनको जरूर जाना चाहिए डॉक्टर के पास। वो ये है जैसे सर में दर्द हो रहा है मानिए किसी के, तो उसको चाहिए कि वो एक बार आंख जरूर चेक कराए। किसी इंसान को धुंधला दिख रहा है उनको चाहिए वो जरूर आंख चेक कराए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी स्कूल्स को ये संदेश देना चाहूंगा कि वो अपने जो भी करीबी आई डॉक्टर है उनसे एक टाई अप कर लें कि आपको हर साल हमारे यहाँ पर एक कैंप लगाना है जिसमें आपको स्क्रीनिंग करनी है बच्चों की आंख की। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैं अक्सर जो हमारे एरिया में स्कूल है सबसे मेरा टाई अप है, मैं सभी जगह जाके आई चेक करता हूँ बच्चों की। तो अगर किसी स्कूल में गैदरिंग 2000 की बच्चों की है और हमने 2000 बच्चों की आंख चेक की है तो अभी तक का एवरेज ये है कि 80% बच्चों की आंख में परेशानी कुछ ना कुछ मौजूद है।
1: डॉक्टर की बातों से साफ है कि अगर हम समय रहते ध्यान नहीं देते तो छोटी समस्याएं भी आगे चलकर बड़ी बन सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं जब तक ज्यादा दिक्कत ना हो जांच कराने की जरूरत ही नहीं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है। आंखों की नियमित जांच, समय पर सही नंबर का चश्मा और शुरुआती लक्षणों को समझना बहुत जरूरी होता है। आज के समय में आंखों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और ऐसे में केवल इलाज ही नहीं बल्कि समय पर सही जांच भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। अक्सर हम छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। आंखों की नियमित जांच, सही नंबर का चश्मा और शुरुआती लक्षणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमने बात की एक ऑप्टोमेट्रिस्ट से।
2: सबसे पहले तो आप बताइए कि जो आंखों के टेस्ट होते हैं, जो जांच होती है, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होता है इस टेस्ट में?
3: आंखों की जांच के लिए कम से कम 12 फीट की दूरी होनी चाहिए, वो मिरर के अंदर देखा जाता है उससे, और 6x6 विजन होना चाहिए उसमें। विजन जांच के लिए पास की निगाह और दूर की निगाह का विजन लिया जाता है। चश्मे का सही नंबर के लिए 6x6 का विजन चाहिए होता है। अगर आंख में कोई प्रॉब्लम होती है तो 6x9 या 6x18 का विजन हो जाता है।
2: आपके पास मतलब जो लोग आते हैं उनमें सबसे ज्यादा समस्या किस तरह की रहती है नजर को लेकर के?
3: सबसे ज्यादा नज़र की जो समस्या होती है वो दूर की निगाह की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आजकल मोबाइल वगैरह हम चलाते हैं तो उसकी लेजर्स के वजह से ज्यादा।
2: अच्छा, तो मोबाइल लैपटॉप ज्यादा हम इस्तेमाल देख रहा है तो ये कैसे आज के टाइम में प्रभावित कर रहा है आंखों को, नजरों को, इसके बताइए।
3: इसके अंदर जो ग्लेयर्स होती हैं, एंटी ग्लेयर्स, जो हमारे लैपटॉप से जो ग्लेयर्स निकलती है वो हमारी आंखों तक जाती है तो हमारे जो है रेटिना पे जोर पड़ता है।
2: अच्छा,
3: उसकी वजह से आईसाइट ज्यादा भी।
2: तो इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब जो प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल, लैपटॉप पे 8-8 घंटे रहना होता है या मोबाइल पर,
3: तो उसके लिए आपको जो है एक ब्लू कट लेंस आता है वो आपको यूज करना पड़ेगा। उसकी जो लेजर होती है वो रोक लेता है वो लेंस। बच्चों की जो जाँच है वो बच्चों की हो या उसमें बड़ा हो कम से कम 3 महीने में एक बार जाँच करा लेनी चाहिए। बच्चा जो है या बड़ा बुक्स वगैरह जो देखता है वो पास से देखता है या आंखें मीचना चुनियाना जो जिसे कहते हैं उस तरीके से फिर आंख जांच करानी चाहिए।
2: अच्छा, लोगों में ना एक मिथ ये भी है, लोग ऐसा मानते हैं बहम लोगों में कि चश्मा पहनने से ना उनकी आंखें और कमजोर हो जाएगी।
3: नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि चश्मा पहनने से उनको विजन पूरा मिलेगा और जो आजकल स्क्रीन वाली ज्यादा चीजें हैं मोबाइल लैपटॉप वगैरह उनसे बेनिफिट हो जाएगा।
2: तो इसके अलावा और आम इंसान जो है अपनी आंखों को कैसे देखभाल रख सकता है जिससे स्वस्थ रहे उसकी आंखें?
3: देखिए, डोर टू डोर जो है बंदे को जो है हर 3 महीने के बाद आई साइट चेक करानी चाहिए और स्क्रीन की जो आजकल लैपटॉप वगैरह है उससे हमें जो है बचाव करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए। आपको जो है धूप से आपको बहुत बेनिफिट।
1: यानी साफ है कि सही समय पर जांच और सही सलाह आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ इलाज से ही आंखें स्वस्थ रह सकती हैं? जवाब है नहीं। हमारा खान पान, हमारी नींद और हमारी दिनचर्या, इन सब का सीधा असर हमारी आंखों पर पड़ता है। अगर हम अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त पानी शामिल करते हैं तो आंखों की सेहत काफी हद तक बेहतर बनाई जा सकती है। आंखों की सेहत में खान पान की भूमिका को समझने के लिए हमने बात की एक डाइटिशियन से।
4: मेरा नाम अल्पिशा है, मैं एक डाइटिशियन हूँ। हमारी आंखें हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं उसका सही से देखभाल नहीं करते। असल में आंखों की सेहत का संबंध सीधा हमारे खान पान लाइफस्टाइल से होता है। अगर हम अपनी डाइट सही रखते हैं तो काफ़ी हद तक आंखों की समस्या से बच सकते हैं, ठीक है। और आंखों के लिए विटामिन ए, सी, ई और ओमेगा 3 जैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके लिए हमें रोज़ खाने में हरी सब्जियां, गाजर और जो है फल, दूध, ड्राई फ्रूट ज़रूरी शामिल करना चाहिए।

0: ठीक है, वही दूसरी तरफ जंक फूड कम करने चाहिए, ठीक है, उतना बेहतर है, क्योंकि अक्सर धीरे धीरे हमारी आंखों भारी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है, एक और बहुत ज़रूरी बात, हाँ, पानी अगर हम दिन भर में पीते हैं, कम पीते हैं, ठीक, तो आँख की ड्राइनेस और जलन दिक्कत ये सब बढ़ जाती है, और इसके लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और सही, देखो बच्चों के लिए तो यह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, उनकी आँखों की डेवलपमेंट हो रही है अभी, और आजकल मोबाइल स्क्रीन इन सब का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो सही से खान पीन तो बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। साथ ही हमें अच्छी नींद, नींद तो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, अगर नींद ही पूरी नहीं होगी तो आँख में थकान, भारीपन और इरिटेशन महसूस होती रहती है। बस रोज़ थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छा खाए, पानी पिए और आँखों का आराम दे, ये छोटी आदत हमारी आँखों की रोशनी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते।
1: डाइटिशियन के अनुसार छोटी छोटी आदतें, सही खाना, पर्याप्त पानी और अच्छी नींद आंखों की सेहत को लंबे समय तक बनाए रख सकती है। और जब बात आती है अनुभव की, तो मरीज की कहानी हमें सबसे ज्यादा सिखाती है।
2: हेलो सर, मेरा नाम अंजलि है। मेरे ना शुरुआत में बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता था, तो मैं इस बात को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती थी और सोचती थी ऐसे ही आ रहा है। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लगा तो मैंने इससे बहुत को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। फिर मैंने एक बार जब इसके ज़्यादा सिर में दर्द होने लगा तो मैंने अपने एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट बताया, फिर वो मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें मेरी आंखें कमज़ोर आई। तो इस कारण की वजह से मेरी आंखों में होता था सिर में दर्द भी मेरी आंखें कमज़ोर होने की वजह से। फिर मैंने चश्मा बनवाया, वो इसलिए कि मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। इस समस्या को मैं पहले देख लेती तो आज ये नौबत आ जाती।
1: आंखों की देखभाल कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता की। दिन भर में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना, आंखों को आराम देना और अच्छा खाना, समय पर जांच, ये सब हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के आसान तरीके हैं। आंखें हमारी जिंदगी की रोशनी है, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी। तो श्रोताओं, आज के इस हमारे कार्यक्रम में हमने बात की सही जांच, सही चश्मे और हमारी आंखों को हम किस तरीके से स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। तो श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए अंक में। मैं साद अहमद आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर एवं संकलन था साद अहमद का। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाना सफ़र।

0: नमस्कार श्रोताओं, भारत में 90 वर्ष रेडियो प्रसारण के उपलक्ष्य में आज का सुहाना सफर कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके बीच आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह
1: और मैं हूं आप सभी की रेडियो साथी नेहा शर्मा।
0: हम दोनों की ओर से आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं, और श्रोताओं आपको मालूम ही है कि सुहाना सफर में हर रोज की तरह हम आज के दिन भी किसी एक साल की खास जानकारियों और घटनाओं के साथ उस साल के गलियारे में चलेंगे। तो
0: जी हाँ नेहा, आज हम अपने श्रोताओं को लेकर चलेंगे साल 2018 की उन यादों के बीच जो कहीं ना कहीं उनके जहन से या तो धुंधली हो रही होंगी या वो भूल चुके होंगे।
1: जी हाँ, एक ऐसा साल जिसने दुनिया को कई यादगार पल दिए। कहीं नई उम्मीदें थी, कहीं बड़े बदलाव थे, तो कहीं तकनीक, खेल और मनोरंजन की दुनिया में नई उड़ानें थी।
0: जी हाँ नेहा, तो जब आपने नई उड़ानों की बात की है तो हम भी इस कार्यक्रम को एक उड़ान देते हैं एक प्यारी सी जानकारी के साथ साल 2018 से जुड़ी, और ये खास जानकारी है क्रिकेट जगत की।
1: जी हाँ, 2018 में नए नए समीकरण भी तो बने थे क्रिकेट के।
0: जी हाँ, बहुत सारे समीकरण बने थे। और देखिएगा, फिलहाल 2018 में एक ऐतिहासिक घटना घटी थी क्रिकेट के क्षेत्र में, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस साल अंडर 19 विश्व कप का खिताब एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत लिया था। और श्रोताओं आपको बता दें कि साल 2026 जो कि अभी चल ही रहा है, और हाल ही में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम ने भी एक बार फिर से विश्व कप जीता था और बड़े अंतर के साथ इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हराया था। और ये जो फाइनल का जो एक लक्ष्य दिया गया था, ये भी क्रिकेट इतिहास का बहुत बड़ा लक्ष्य रहा, 412 रन का। लेकिन चूंकि बात हम साल 2018 की कर रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं को बता दें नेहा के
1: जी
0: अंडर 19 विश्व कप 2018 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ये खिताब अपने नाम कर लिया था। नेहा, आपको क्या मालूम है कि ये खिताब जो भारतीय क्रिकेट टीम ने कब जीता है?
1: आप बताइए, आप ही ये जानकारी दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा कि आप ही सारी जानकारी।
0: जी हाँ बिल्कुल। देखिएगा श्रोताओं, हाल ही में 2026 में क्रिकेट टीम ने ये खिताब लगातार छठी बार जीता। और हम बता दें कि 2000, 2008, 2012 और जो साल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, 2018 में इस खिताब को जीता था, और फिर 2022 में, और 2026 के बारे में हम आपने बताया कि वैभव सूर्यवंशी जो कि धाकड़ बल्लेबाज इस टीम कर रहे, उन्होंने इस क्रिकेट के मामले में इस टूर्नामेंट के फाइनल में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी के रूप में एक धमाकेदार खिलाड़ी का जन्म हुआ, एक उजली सुबह भारतीय क्रिकेट ने देखी।
1: चरणजीत जी, इतनी अच्छी बात आपने बताई, इतनी अच्छी जानकारी आपने बताई, तो एक गीत भी बहुत ही खूबसूरत सा इस सेलिब्रेशन के नाम कर ही देते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं साल 2018 में आई फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का ये प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, और इस गीत को लिखा कुमार ने, संगीत दिया अमान मलिक ने।
1: और श्रोताओं कहीं जाइएगा मत, गीत के बाद फिर से एक बार आपके साथ रूबरू होंगे साल 2018 की कुछ और खास जानकारियों के साथ।

0: सोनू के टीटू की स्वीटी, इस फिल्म के गीत को अभी हमारे श्रोताओं ने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। और श्रोताओं, चरणजीत जी गीत से पहले बात कर रहे थे क्रिकेट से जुड़ी।
1: बिल्कुल, साल 2018 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे देश के उन युवाओं के नाम जुड़ी जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीत कर एक इतिहास रचा था।
0: तो अब क्रिकेट के मैदान से लेकर सियासत के गलियारों तक हम आपको लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति की कहानी या एक ऐसे क्रिकेटर की बात जो आपको भी बहुत ज्यादा प्रेरणादायक लगेगी।
1: जी,
0: 25 अप्रैल 1996 एक दिन ऐसा था जब इमरान खान, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने लाहौर के एक टीम की स्थापना की और औपचारिक रूप से राजनीति की दुनिया में प्रवेश कर लिया। हालांकि शुरुआत उनकी इतनी आसान नहीं थी, कुछ उन्हें सफलताएं भी मिली, असफलताएं ज्यादा मिली, लेकिन संघर्ष, मेहनत और अपने विचारों पर भरोसे के साथ उन्होंने करीब 22 सालों तक राजनीति का सफर जारी रखा। और ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि फिर आया साल 2018 जब पाकिस्तान के आम चुनावों में इमरान खान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और इसके बाद 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
1: और नेहा, 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उसके बाद पाकिस्तान की राजनीति में एक उतार चढ़ाव जो कि अब तक भी लगातार
0: भी देखने को
1: लगातार बना हुआ है ये। और ये चीज, ये जो खबरें हैं जो हाल फिलहाल में घटित हुई है पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर, वो तो सुर्खियों में रही ही, लेकिन अपने श्रोताओं को बता दें कि साल 2018 में जो एक बड़ा बदलाव पाकिस्तान की राजनीति में आया था इमरान खान को लेकर, उसे लेकर भी भारत में रेडियो प्रसारण में, खासतौर से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ उस दौर में प्रसारित किया गया था और देश ने इन सूचनाओं के माध्यम से काफी जानकारियां हासिल की थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल। और क्रिकेट के मैदान से विश्व कप जीतने वाले इस खिलाड़ी ने राजनीति में अपनी अलग पहचान तो बनाने की कोशिश की ही थी। और चरणजीत जी, ऐसा नहीं लगता इनके सफर से हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो जीवन में एक नया मैदान जीता जा सकता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल। और इस बात के साथ हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं नेहा, और सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को एक और प्यारा सा गीत।
0: हाँ, बिल्कुल। पद्मावत फिल्म का एक गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं शिवम पाठक की आवाज में। संजय लीला भंसाली का संगीत है और एम एम तुराज का गीत।

0: इस गीत के साथ ही एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में हमारा विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सुहाना सफर। और दोस्तों, जैसे कि आपको हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि भारत में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता था और इसके साथ ही उपलब्धियां मिलना हमारे देश को शुरू हो गई थी। और देखिएगा, पुरस्कार जब कभी मिलता है ना, तो उसका एक अलग ही एक मन में एक भाव होता है, और जब उपलब्धियां हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं तो वो एक इतिहास बन जाती हैं। और ऐसे ही इतिहास के पन्नों को हम पलट रहे हैं साल 2018 की कुछ प्रमुख घटनाओं के साथ। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पुरस्कारों की, तो नेहा, क्या आप भी कुछ इसी तरह की बात?
1: बिल्कुल बिल्कुल, पुरस्कारों की हम बात कर रहे हैं और ये उन महान हस्तियों के नाम साल 2018 रहा, जिन्होंने अपने हुनर, अपनी मेहनत और समर्पण से भारत का नाम रोशन किया। इन्हीं योगदानों को सम्मान देने के लिए उन्हें देश के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। बात अगर हम पद्म विभूषण सम्मान की करें तो प्रसिद्ध जो संगीतकार है इलैया राजा, उनको ये सम्मान साल 2018 में दिया गया। शास्त्रीय संगीत के दिग्गज गुलाम मुस्तफा खान और साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले पी परमेश्वरन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
0: और नेहा, वहीं पद्म भूषण पाने वालों में भारतीय क्रिकेट के सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, स्नूकर और बिलियर्ड्स के खिलाड़ी पंकज आडवाणी और अपनी मधुर लोक गायकी से पहचान बनाने वाली शारदा सिन्हा भी शामिल रही। और इसके अलावा पद्मश्री सम्मान से भारोत्तोलन में देश का गौरव बढ़ाने वाली मीराबाई चानू, टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन और अभिनेता मनोज जोशी को सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल चरणजीत जी, और ये पुरस्कार केवल सम्मान नहीं थे बल्कि उन सपनों, संघर्षों और उपलब्धियों की पहचान है जिनसे देश को गर्व महसूस हुआ। और पढ़ते समय हमें भी कितना गौरवान्वित महसूस होता है कि हाँ, हमारे देश में इतने दिग्गज हैं सब।
0: जी हाँ, जब कभी उपलब्धियां हमारे नामों के साथ जुड़ती हैं, या यूं कहें कि हमारे देश के साथ जुड़ती हैं, तो हमारा सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है और सीना चौड़ा हो जाता है।
1: और साल 2018 में भारत और दुनिया ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को और करीब से देखा था। राजनीति में नए समीकरण बनते चले गए, खेल जगत में नए सितारे चमके और विज्ञान ने भी लोगों को चौंकाने वाले पल दिए थे।
0: और इसी साल दुनिया ने एक ऐसा नजारा देखा जिसने विज्ञान और तकनीक को लेकर लोगों की कल्पनाओं को और भी बढ़ा दिया। स्पेसएक्स के फॉकन हेवी रॉकेट के जरिए एक टेस्ला रोडस्टर कार को अंतरिक्ष में भेजा गया। धरती की सड़कों पर दौड़ने वाली कार का अंतरिक्ष की ओर बढ़ना दुनिया भर में चर्चा का विषय बना।
1: वहीं राजनीति की दुनिया की तो हमने बात कर ही ली, खेल जगत की भी हमने बात कर ली, पुरस्कारों की भी बात कर ली, और वक्त है एक गीत का।
0: जी हाँ, बिल्कुल।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना रेस 3 फिल्म का यह प्यारा सा गीत अमित मिश्रा जोनिता गांधी की युगल आवाज़ों में। इस गीत को लिखा शब्बीर अहमद और श्लोके लाल ने, संगीत तुषार जोशी ने दिया। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में। कार्यक्रम का नाम सुहाना सफर, और आपको मालूम ही है कि इस साल हम इस कार्यक्रम में हम हर विशेष साल की कुछ विशेष घटनाओं का आपके बीच लेकर आते हैं। जैसे कि आज हम साल 2018 की
1: जी हाँ साल 2018 की गलियारों में आज हम घूम रहे हैं अपने श्रोताओं के साथ। और श्रोताओं, आपको बताएं उस साल की आई जो फिल्में थी उनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि उस साल एक से एक बढ़कर फिल्में आई। चरणजीत जी, एक फिल्म आई पद्मावत, जिसका गीत अभी हमने पहले सुना भी। शानदार भव्यता और दमदार अभिनय से सजी इस फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया। रानी पद्मावती की कहानी ने साहस और सम्मान की नई मिसाल पेश की। और उसी तरह एक और फिल्म आई थी संजू,
0: जी हाँ, और इसमें रणवीर कपूर ने संजय दत्त के किरदार को बेहद शानदार अंदाज में निभाया, और यह फिल्म 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही।
1: अंधाधुन एक फिल्म ये आई थी जो रोमांच और सस्पेंस से भरी थी, और आयुष्मान खुराना के अभिनय की खूब सराहना की गई। सामाजिक मुद्दे पर बनी एक और फिल्म इस साल आई थी जो अक्षय कुमार ने, जिसमें मैं अपनी जो है मुख्य भूमिका निभाई थी, उसका नाम था पैडमैन। ऐसी ही एक फिल्म आई बागी 2, एक राजी। राजी फिल्म का एक गीत हम अभी अपने श्रोताओं को सुनाएंगे, कुछ और बातचीत अपने श्रोताओं से कर लेते हैं। एक फिल्म आई थी सिम्बा,
0: और सिम्बा फिल्म में रणवीर सिंह की ऊर्जा और कॉमेडी ने फिल्म को मनोरंजक बना दिया था। एक्शन और मसालेदार अंदाज ने इसे सुपर हिट बना दिया था।
1: बिल्कुल।
0: और नेहा, अब फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलकर कुछ ऐसी बातें अपने श्रोताओं के साथ हम साझा कर लेते हैं जो कि साल 2018 की बड़ी घटनाएं थी, और इन घटनाओं को आकाशवाणी के सभी केंद्रों से बड़ी प्रमुखता के साथ में प्रसारित किया गया था, और ये सूचनाएं हमारे श्रोताओं तक समय से पहुंची थी, जिसे जानकर उनका ज्ञान अर्जन भी हुआ और वो रोमांचित भी हुई। जैसे कि हम बता दें अपने श्रोताओं को कि सम्मेलनता जो कि अपराध मुक्त किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया था साल 2018 में, और ये मामला भी सुर्खियों में रहा था और लोगों तक घर बैठे रेडियो के माध्यम से ये बात पहुंची थी। और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि केरल में एक भीषण बाढ़ आई थी नेहा, और ये
1: जी हाँ, और कोरेगांव भीमा हिंसा कांड आपको याद ही होगा, 1 जनवरी 2018 को जो पुणे के पास कोरेगांव में हुआ था, उस समय वो काफी चर्चा में रहा था।
0: बिल्कुल। और महाराष्ट्र में ये हिंसा बड़ी काफी ज्यादा हुई थी और इसका दंश लोगों को झेलना पड़ा था।
1: और IMF में पहली जो महिला अर्थशास्त्री थी अक्टूबर 2018 में गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी।
0: और नेहा, केवल भारत ही नहीं, भारत से बाहर यानी दुनिया के कोने कोने में भी जब कोई बड़ी घटना घटती थी तो उसका भी जिक्र जो है रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचता था। जैसे कि ईरान परमाणु समझौता, अमेरिका ने JCPOA से खुद को अलग कर लिया था, और हम बता दें अपने श्रोताओं को कि इथियोपिया एरिट्रिया शांति समझौता, जो कि दशकों से चल रहे युद्ध का अंत हुआ था, और इस खबर को भी लोगों को घर बैठे आकाशवाणी के माध्यम से पता चला था।
1: और अच्छी खबरों के साथ एक दुखद खबर भी थी जो 2018 में हमारे सभी देशवासियों को देखने को मिली, और जो सुनकर पूरा देश जो शोकमग्न हो गया था, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी, उनका निधन हुआ था, जो आकस्मिक निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई में हुआ था, जिसे सुनकर सभी भारतवासी बहुत निराश हो गए थे और हताश हो गए थे। तो चरणजीत
0: जी
1: देशभक्ति से ओतप्रोत एक गीत आपने हमारे श्रोताओं को सुनवाने का इरादा बना ही लिया तो सुनवा ही दीजिए।
0: चलिए, श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का यह अंतिम गीत फिल्म राजी से, जिसे आवाज दी अरिजीत सिंह ने, और गीत लिखा गुलजार ने, संगीत शंकर एहसान लॉय ने दिया।

0: श्रोताओं, राजी फिल्म के इसी खूबसूरत से गीत के साथ आज के सुहाने सफर का ये अंक अब यही। श्रोताओं, राजी फिल्म के इसी खूबसूरत से गीत के साथ आज के सुहाने सफर का ये अंक यहीं पर संपन्न करने की मुझे यानी नेहा शर्मा और
1: मुझे यानी चरणजीत सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे। गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह,
1: और मैं आपकी साथी नेहा शर्मा। और बहुत बहुत स्वागत श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कार्यक्रम आपका है, आप ही के लिए है, क्योंकि इस कार्यक्रम से आप सीधे जुड़ जाते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस और पत्रों के माध्यम से।
1: तो अपने व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे पास भेजने के लिए आप नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा नंबर है 9457078288।
0: जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9457078288। और श्रोताओं, जैसे कि आपको हम बता दें कि ये कार्यक्रम आपके पत्रों से भी जुड़ा होता है, तो जो पत्र हमें इस कार्यक्रम से पहले हम तक पहुंच चुके थे उन्हें हमने कर लिया इस कार्यक्रम में शामिल। और जो श्रोता अभी सोच ही रहे हैं पत्र लिखने के बारे में, तो हम उन्हें बता दें इस कार्यक्रम का पता, ताकि वे भी हमें पत्र भेज कर इस कार्यक्रम में अपनी पसंद के गीत सुन सकें। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि वे नोट कर लें इस पते को, कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो नेहा, जैसे कि हमारी स्क्रीन पर लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहे हैं, हमारे नंबर को बताने के साथ ही हमारी स्क्रीन जो है वो ग्रीन हो चुकी है, हरी हो चुकी है। तो हम अपने श्रोताओं को बताएं कि लगातार मैसेज तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात का ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि आपका जो एक मैसेज आप भेज दें तो बस प्रतीक्षा करें कि हम आपके मैसेज को शामिल करें, और अगर आपका मैसेज पढ़ लिया जाए तो आप मैसेज दोबारा ना करें, ताकि हम अपने अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ सकें, उनकी पसंद के गीत उन्हें सुनवा सकें। तो नेहा, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत कुछ मैसेजेस के साथ।
1: बिल्कुल,

0: हमारे श्रोताओं के ढेर सारे मैसेज हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो ये पहला मैसेज हमें कहाँ से मिला?
1: जी हाँ, ये पहला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है रेलगाड़ी श्रोता टोली नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, और ये मैसेज भेजने वाले हैं महबूब सैफी, मोहम्मद यूसुफ, विनय कौशिक, रवि अरोड़ा, चंद्रशेखर ठाकुर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद फरमान और याकूब सैफी। और इसके साथ ही हमें ये मैसेज मिला है, एक अन्य मैसेज है, बुंदकी रोड नजीबाबाद जनपद बिजनौर से ये मैसेज, अंस टोंक, देव टोंक, साकेत टोंक और राजेंद्र का। नेहा, इसके साथ ही हमें एक और मैसेज ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, और ये मैसेज है दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ साबरी और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का। इसके साथ ही एक मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, भेजने वाले हैं मनोज रावत, रजनी नौटियाल, मुकेश नौटियाल, अशोक केस्टवाल और इनके अन्य साथी। तो लीजिए प्रस्तुत है हमारे इन श्रोताओं की पसंद का कार्यक्रम का ये पहला गीत, फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और इसे गीत को आवाजें दी हैं कुमार सानू और कविता कृष्णामूर्ति ने, गीत रचना महबूब की है और संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे और ये कार्यक्रम आप लाइव सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म चाइना गेट से। आवाजें अलका याग्निक और शंकर महादेवन की हैं और इस गीत की फरमाइश हमारे पास चरणजीत जी पत्रों के माध्यम से आई है।
9: जी बिल्कुल,
8: ये पहला पत्र हमें मिला है ग्राम अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ज्योति, रेयांश ठाकुर छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से हैं। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। एक और पत्र हमें इसी गीत की फरमाइश के साथ मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक का। अगला पत्र है मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से। पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु और ऋषभ सिंह का। अगला पत्र हमें मिला है जसपुर रोड से। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर का।
9: तो लीजिए प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं हमारे श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। और नेहा, अब समय है कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ लेने का जो कि हमें मिला है। ये पहला मैसेज लालमाता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी काना और मनोहर भाई बागरी प्रभुलाल बागरी बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण कपिल शोभा फुंदीबाई बागरी और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का।
1: अगला मैसेज हमें मिला है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा का।
0: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से।

0: रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का।
1: अगला मैसेज हमारे पास आया है चरणजीत जी, नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और मोहम्मद जैन, जन्नत का मोहल्ला अफगाना शेरकोट से।
0: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है अनिल विनोचार, इनके परिवार के अन्य सदस्यों का, नगीना के जनपद बिजनौर से।
1: जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार हमें मैसेज कर रहे हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से।
0: आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, एम असलम सैफी, इल्मा खान, मास्टर जाहिद अली ने हमें मैसेज भेजा है परी महल कासगंज से।
1: मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट से एक और मैसेज हमें मिला है, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साज दरानी और हिना कौसर का।
0: और ये मैसेज भाई रफत का, सईद मंसूरी, राशिद मंसूरी, असद, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी ने मोहल्ला बारादरी, महमूद खां रामपुर से।
1: मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने हमें मैसेज किया है जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से।
0: सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहम, मोहम्मद आलम हाशमी ने नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमें मैसेज लिख भेजा है।
1: रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान और सूर्यनगर नगरी जोधपुर राजस्थान से हमें मैसेज करते हैं।
0: ये अगला मैसेज रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, लाल सिंह, लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का।
1: एक और मैसेज हमें मिला है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवल से हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप।
0: ये अगला मैसेज भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष का व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से और रामगढ़ कैंट से हमें मैसेज भेज रहे हैं महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
1: गांधीबाग अकोटा अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर, सरोज चौक अमरावती से हैं कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम।
0: तो हम अपने श्रोताओं की पसंद का कार्यक्रम का गीत सुनवा रहे हैं फिल्म प्यार किए जा का, और इसमें आवाजें हैं मन्ना डे और उषा मंगेशकर की, गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

झटका झटका। दिल में रहता है कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को

0: Baby drums. Dudes. Dudes. Devils. Tepka.
1: तो श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के साथ आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और व्हाट्सएप मैसेजेस को कर लेते हैं आपके साथ साझा। ये मैसेज हम तक पहुंचा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का।
2: जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा।
1: और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबेरा नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय का।
2: गमहरिया जमशेदपुर से हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल और बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से हैं मुराहू जायसवाल और देवंती, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल।
1: और ये अगला मैसेज जो कि हमें मिला है अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का।
2: कच्छ गुजरात से गंगावणकर, गोविंद, प्रीति, गीता, विशाल, विजय, रमेश और जयंती हमें ये मैसेज करते हैं।
1: एक मैसेज सहारनपुर से हमें मिला है सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग का।
2: मुंदीचक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शाह।
1: ये मैसेज दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा का मिला है चौटाला हरियाणा से।
2: अगला मैसेज हमें मिला है कश्मीर से, ये भेजने वाले हैं नजीम उद्दीन और कैसर उद्दीन और इनके सभी साथी।
1: नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय, पी बी कुलथे का मैसेज हमें मिला है बीड शहर महाराष्ट्र से। और ये अगला मैसेज
2: महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से है रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत मिथिल और प्रगति नाचानी का।
1: और ये मैसेज है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो का जनकपुरी सहारनपुर से।
2: सूर्यवाड़ी से हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीटी, अंशुमन और बेबी ओवी।
1: और ये कार्यक्रम का अगला मैसेज हम तक पहुंचा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का।
2: जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी भी हमें मैसेज करते हैं।
1: इसके साथ ही ये मैसेज है ग्राम पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
2: मानपुर जिला मुरादाबाद से हैं शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान।
1: और ये मैसेज रियासन हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रियाफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड से हमें मैसेज भेज रहे हैं। मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद जनपद बिजनौर से गुलाम हसन, निषाद बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी, शराफत अली, अब्दुल रहमान और बिटिया मदीहा ने मैसेज हम तक किया है। और लीजिए प्रस्तुत है हमारे इन श्रोताओं की पसंद का कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म धर्मवीर से, जिसे आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने।

0: तो श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ अब इस कार्यक्रम से हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि जिन श्रोताओं के मैसेज हम समय की बाध्यता के चलते नहीं पढ़ सके, वे हमें लगातार मैसेज भेजते रहें। हम इस वादे के साथ आपसे विदा लेंगे कि अपने आने वाले कार्यक्रमों में हम आपके मैसेजेस को ज़रूर शामिल करेंगे और सुनवाएंगे आपको आपकी अपनी ही पसंद के कुछ प्यारे प्यारे से गीत।
1: इसी के साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे संपन्न करने की मुझे यानी नेहा शर्मा और
0: मुझे यानी चरणजीत सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं दिन के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

0: वाकई श्रोताओं, जब दो दिल सच में एक दूसरे के करीब आते हैं तो बातें कम और एहसास ज्यादा बोलने लगते हैं। फिल्म परदेश का एक खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं ने सुना कुमार सानू की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा एक गीत था और संगीत था नदीम श्रवण का।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। श्रोताओं, कभी किसी की एक मुस्कान दिल पर ऐसा असर कर जाती है कि फिर हर धड़कन में बस उसी का नाम सुनाई देता है। और फिर होता क्या है कि चांद सा वो चेहरा और प्यारी सी उसकी अदाएं दिल को चुरा ही लेती हैं।

रिश्ता से ये गीत। श्रोताओं, इस गीत के बोल लिखे थे समीर ने और धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, मोहब्बत जो है वो सिर्फ साथ रहने का नाम थोड़ा ही है, बल्कि वो तो किसी को अपनी हर बात, हर एहसास और हर अधूरी मुस्कान में महसूस करने का नाम है। कुछ ऐसा ही मासूम और गहरी प्रेम कहानी को दर्शाता और सुरों में पिरोता ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, फिल्म बॉडीगार्ड से। आवाज़ें राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल की हैं। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा का लिखा ये गीत है, संगीत हिमेश रेशमिया का है।

वाकई श्रोताओं, जब कोई इंसान हमारी हर खुशी, हर दुआ और हर ख्याल का हिस्सा बन जाता है ना, तो प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, बल्कि प्यार जीने की वजह बन जाता है। दिल चाहता है कि वो एक बार हमारी आंखों में झांक कर देखे, ताकि बिना कुछ कहे ही समझ जाए कि उसके लिए इस दिल में कितनी मोहब्बत छुपी है। कुछ शब्द बयां नहीं होते, लेकिन उनके एहसास दिखाए जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और ये गीत उन्हीं अनकही जज्बातों को की एक खूबसूरत सी कहानी कहता है। फिल्म कंपनी का ये गीत है श्रोताओं, आवाज अल्ताफ राजा की है, ताबिश रोमानी का लिखा ये गीत और संदीप चोप का ये संगीत बद किया हुआ गीत है।

श्रोताओं, कभी कभी इंसान पूरे दिल से किसी को चाहता है, उसकी खुशी में अपनी दुनिया ढूंढ लेता है, लेकिन बदले में जब सिर्फ दूरी और खामोशी मिले तो दिल धीरे धीरे से टूटने भी लगता है। फिर मोहब्बत से शिकायत तो नहीं होती, लेकिन खुद से एक सवाल जरूर रह जाता है कि क्या सच में उस इंसान से इतना प्यार करना चाहिए था या नहीं। ये गीत भी कुछ ऐसे ही एहसासों को छूता है श्रोताओं, जो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, और ये गीत कार्यक्रम का अंतिम गीत है। गीत हमने लिया है फिल्म हद कर दी आपने से, आनंद राज आनंद की आवाज में ये गीत है और संगीत भी आनंद राज आनंद का ही है। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है श्रोताओं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिल का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: है जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भवका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
2: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
2: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
2: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
2: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
3: आग बरसाती धूप।
4: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
5: क्यों?
4: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
5: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
4: हाँ।
5: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
4: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
5: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलू देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
4: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
4: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
2: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
4: भाई लू लगे व्यक्ति के

0: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
1: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, तीन गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना, गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक में खेले भरपूर।
1: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
7: इन्हें हमारा सलाम।
6: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
6: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
6: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
6: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
8: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
6: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
8: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
6: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
8: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी।

0: इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था।

0: एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित

श्रोताओं, आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय खेल दर्पण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। प्रस्तुति आकाशवाणी मथुरा की होगी।

आज रात्रि 10:30 पर सुनिएगा श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विशेष भेंटवार्ता में आप सुनेंगे नारायण शर्मा से रेनू कोटनाला की बातचीत। समय रहेगा संध्या 6:45 पर।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 12:05 पर आप सुनेंगे सैनिक भाइयों को समर्पित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 12:30 पर एक और फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी हमारे श्रोता सुनेंगे।

आज दोपहर 1:15 पर महिला साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत, जिसके अंतर्गत क्रम रहेगा आधी आबादी से, और कहानी सुनिएगा सुधा, जिसकी कहानीकार हैं अंशु। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रताप सिंह चौहान के स्वर में जौनसारी लोकगीत।

और श्रोताओं, आज दोपहर 2:30 पर सुनना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज की हमारी कलाकार हैं अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में आज जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या DBT योजना पर। समय रहेगा संध्या 5 बजे। युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी आज संध्या 5:15 पर, जिसके अंतर्गत क्रम होगा बूझो तो जाने। कुछ खास है आज दिल से दिल तक लव स्टोरीज और फिल्म संगीत का।

किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत आप सुनेंगे बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का एपिसोड 2। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम का समय रहेगा आज संध्या 6:05 पर।

सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ललित भूटानी के स्वर में गजल। समय रहेगा संध्या 7:32 पर। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे आज रात्रि 8 बजे गीत संध्या में और रात्रि 8:30 पर फिल्म एक ही फिल्म से के अंतर्गत। और श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 अर्थात 954 kHz पर। दोपहर के 12:05 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है सैनिक भाइयों को समर्पित कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सैनिक भाइयों जय हिंद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम समर्पित है सरहद पर तैनात उन वीर जवानों को जो अपने घर से दूर रहकर भी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, जिनकी वजह से ही हमारी सुबहें सुकून से होती हैं और रातें चैन के साथ गुजरती हैं। श्रोताओं, उनकी हिम्मत सिर्फ वर्दी में नहीं बल्कि उनकी मुस्कान में भी दिखाई देती है, जो हर मुश्किल के बीच अपने देश के लिए जिंदा रहती हैं। तो आइए आज का एक खूबसूरत कार्यक्रम शुरू करते हैं अपने सैनिक भाइयों के नाम, अपने देश के नाम।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

दिल जले फिल्म का एक गीत अभी हमारे श्रोताओं ने सुना, कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाज़ में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सरहदों पर खड़े वो वीर जवान जो अपने घर, अपने सपने और अपनों की मुस्कान छोड़कर सिर्फ देश की हिफाजत को अपना फर्ज मान लेते हैं, उनके दिल में सबसे ऊपर होता है उनका वतन। ऐसे होते हैं हमारे सैनिक भाई।

पंकज उदास की आवाज़ में नाम फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं ने सुना और उम्मीद करते हैं हमारे सैनिक भाइयों को भी ये गीत पसंद आया होगा। श्रोताओं, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी राहें आ जाती हैं या ऐसा समय आ जाता है जहां फ़र्ज और अपनों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और मीलों की दूरियाँ हो जाती हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो दूर रहकर भी हर धड़कन में साथ बना रहे। हमारे सैनिक भाई भी तो इसी एहसास को जीते हैं। बॉर्डर पर खड़े होकर वो सिर्फ देश की रक्षा नहीं करते बल्कि अपने परिवार की खुशियों की भी हिफाजत करते हैं। उनकी आंखों में भले ही वतन का गर्व होता है लेकिन दिल में अपनों की यादें और भी ज़्यादा गहरी होती चली जाती हैं और फिर जब रात की तन्हाई में घर की याद आए तो कुछ इस तरह का गीत गुनगुनाने को दिल करता है।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम।

बागवान फिल्म में अभी हमारे श्रोताओं ने सुना अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक को। श्रोताओं, घर से दूर जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी महसूस होती है तो वो है किसी अपने का साथ, वो आवाज, वो बातें, वो एहसास जो हर मुश्किल में दिल को सुकून देता है और हमारा सच्चा हमसफर होता है।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: मैं फिर भी खुश हूँ, बस एक

अभी आप सुन रहे थे सैनिक भाइयों को समर्पित कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी साथी नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म गुलाम के इस गीत से, जिसको आवाज दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। समीर का लिखा यह गीत है और संगीत है जतिन ललित का।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म गुनाह से। आवाजें रूप कुमार राठौर और साबरी ब्रदर्स की हैं। आनंद बख्शी का लिखा यह गीत है और धुन तैयार की है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, रूप कुमार राठौर और साबरी ब्रदर्स की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म गुन्हा से। आइए अब आपको एक और गीत सुनवाते हैं फिल्म बेवफा से। उदित नारायण की आवाज में ये गीत है श्रोताओं, और इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है।

बेवफा फिल्म में अभी हमारे श्रोताओं ने सुना उदित नारायण को। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म तेरे नाम से। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत है समीर के लिखे बोल, और धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में हमारे श्रोताओं ने सुना फिल्म तेरे नाम का ये गीत। श्रोताओं, समीर का लिखा ये गीत था और हिमेश रेशमिया का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म फना से। आवाजें सोनू निगम और सुनिधि चौहान की हैं। प्रसून जोशी ने इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन तैयार की है जतिन ललित ने।

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: श्रोताओं, फना फिल्म का एक गीत आपने सुना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में। प्रसून जोशी का लिखा यह गीत था और संगीत था जतिन ललित का। और श्रोताओं, इसी खूबसूरत से गीत के साथ आज का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं पर संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी नेहा शर्मा को दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव

0: 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज के हमारे कलाकार हैं अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लाऊ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
2: Moi Sri Himanta Biswa Sarma Ishwaror namot shapat lao je bidhir dwara stapito Bharator Sangbidhanor proti moi prokito biswas aru anugotya pohon korim.
3: Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Ahom Gana Parishad, and Charan Boro from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of NDA ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as chief minister. The National Democratic Alliance NDA returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. The Bharatiya Janata Party emerged as the dominant force with 82 seats, while its allies, the Ahom Gana Parishad and the Bodoland People's Front, won 10 seats each. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that the decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation, CBI, for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by law enforcement agencies. The NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decisions of the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister Shubhendu Adhikari. In a social media post, the Prime Minister said the welfare of people of West Bengal is their top priority. Mr. Modi expressed happiness that the people of the state will have access to Ayushman Bharat, the world's largest healthcare scheme that ensures top quality and affordable healthcare. The state government announced several important decisions after the first cabinet meeting yesterday. Transfer of land to the Border Security Force within 45 days for fencing the borders with Bangladesh was among the decisions. In Uttar Pradesh, an FIR has been registered in Mahoba district against Samajwadi Party MP Ajendra Singh Lodhi over alleged objectionable remarks against Prime Minister Narendra Modi. The case was lodged at Mahoba Kotwali police station following a complaint filed by BJP leader Satyendra Pratap. Police said the FIR has been registered under various sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita. The controversy erupted after Lodhi allegedly made objectionable remarks against the Prime Minister while reacting to Mr. Modi's appeal urging people not to buy gold. President Draupadi Murmu today conferred the National Florence Nightingale Awards 2026 to 15 nursing professionals at a function held at Rashtrapati Bhavan. The award has been given for their outstanding contribution in the field of nursing. These prestigious awards are presented to registered nurses, midwives, auxiliary nurse midwives and lady health visitors serving across central and state governments, union territories and voluntary organizations. International Nurses Day is being celebrated today, marking the birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. The theme this year is Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Lives.

0: Benchmark domestic equity indices were trading around 1.3% lower in afternoon trade today. The Sensex plunged 1,041 points to 74,975, while the Nifty shed 297 points to 23,519 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया तनाज़ों को एक दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार देते हुए कौमी ज़राए पर बोझ कम करने के लिए आवाम से एकजुट होने की अपील की है। वज़ीर आज़म ने गुजरात के एक प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत ये यकीनी करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस हालात का मुल्की आवाम पर कम से कम असर पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: वजीर आजम ने आवाम से सात निकाती अपील को अपनाने की बात दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है। खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन का और एलपीजी का 45 दिनों का जखीरा मुहैया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कल नई दिल्ली में हुई काबीना की मीटिंग में ये जानकारी दी गई। हुकूमत ने कहा है कि आवाम को घबराने या ईंधन और दीगर मसनूआत की ज्यादा खरीद करने की जरूरत नहीं है। नीट यूजी 2026 के इम्तिहान को एनटीए ने मंसूख कर दिया है। जल्दी इम्तिहान की दोबारा तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोबारा मुनक़िद होने वाले इस इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों से कोई भी अलग से फीस नहीं ली जाएगी। इम्तिहान में खलल के मामलों की अब जांच सीबीआई करेगी, जिसके लिए सभी अहम दस्तावेज एनटीए सीबीआई को सौंपेगी। वाज रहे कि यह इम्तिहान गुज़िश्ता 3 मई को मुनक़िद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत विश्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी मर्तबा असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानपारा वाके वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद एक जलसे में डॉक्टर शर्मा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मेंबर असेंबली रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरे और अजंता नियोग ने भी वुजरा के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वुजरा और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वुजरा आला भी इजलास में मौजूद रहे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में मुनक़िद सीआईआई सालाना बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में उत्तर प्रदेश में तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बना है, पॉलिसी तामीरात में इसलाह हुई है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के तई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने आज रियासत में सरमायाकारी की नई राहें हमवार कर दी हैं। आज उत्तर प्रदेश ने मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मारूफ रियासत के तौर पर पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज और नाजेबा तबसरा करने के इल्जाम में महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के लीडर सत्येंद्र प्रताप की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अफसरान के मुताबिक ये तनाजो तब शुरू हुआ जब अजेंद्र सिंह लोधी वजीर आजम की उस अपील पर रद्द अमल जाहिर कर रहे थे जिसमें आवाम से सोना न खरीदने की अपील की गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। रेवेन्यू काउंसिल के तहत लेखपाल के खाली ओहदों पर तकरूरी के लिए उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 21 मई को रियासत के 44 जिला में खसूसी इम्तिहान मुनक़िद करेगा। कमीशन के एग्जाम कंट्रोलर की जानिब से कल जारी जानकारी के मुताबिक इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा।

0: सैम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अलॉट जिले की आइंदा जानकारी कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के बेशतर अज़ला में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत में मशरकी और मगरबी हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का कयास जाहिर किया। दरियासना आज बिजनौर, अमरोहा और बदायूं में एक बार फिर तेज आंधी के साथ बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, मैं आपकी दोस्त भावना अरोड़ा एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। तो चलिए बहनों, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहनों, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जो हर साल 12 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है, ताकि समाज में नर्सों के योगदान को चिन्हित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो हर साल 12 मई को मनाया जाता है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है। साथ ही वैश्विक स्तर पर नर्सों की सेवा, समर्पण और समावेश को प्रोत्साहित करना है। और बहनों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। यह थीम वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे कि कार्यबल की कमी और जलवायु परिवर्तन के बीच अधिकतम जीवन रक्षक प्रभाव प्राप्त करने के लिए नर्सों को सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इस विषय में नर्सों को भावात्मक, मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों से बचाने के लिए तत्काल निधि, व्यवहारिक समाधानों की मांग की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि उनका सम्मान, महत्व और समर्थन किया जाए। बहनों, भारत में नर्सें स्वास्थ्य कार्यबल बल का लगभग 47% हिस्सा हैं। वे रोगियों की देखभाल, उपचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि उन्हें प्रायः डॉक्टरों के सहायक के रूप में देखा जाता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता सीमित होती है। स्वतंत्र एवं उन्नत देखभाल करने वाली के रूप में नर्स प्रैक्टिशनर्स की अवधारणा भारत में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए समय समय पर विभिन्न सरकारी प्रयास भी किए गए। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में नर्सिंग की भूमिका की बात करें तो नर्सें सीधे रोगियों की देखभाल करके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और विभिन्न चिकित्सा स्थितियों का प्रबंधन करके भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे रोगियों का निदान और उपचार करने, दवाएं देने, महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करने और रोगियों को स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में शिक्षित करने में चिकित्सकों की सहायता करती हैं। बहनों, कोरोना काल में दुनिया में लाखों लोगों की मौत हुई, लेकिन करोड़ों लोगों को प्राण बचाने में भी सफलता मिली। इसका श्रेय जाता है नर्सिंग कर्मियों की को, जो स्वयं को संक्रमित होने के खतरे के बावजूद अपनी जान की परवाह किए बिना ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने में लगे रहे। आज के दिन नर्सों के इसी योगदान को नमन करना बहुत जरूरी है। यह दिवस दया, सेवा और प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता माना जाता है।

वास्तव में नर्सिंग के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान, सेवा और समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता। नर्स हमारे चिकित्सा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी हैं। और बहनों, जब बात चिकित्सा और सेवा की हो ही रही है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्रम की ओर, जो है आधी आबादी, और जिसमें आज हम बात करेंगे एक चिकित्सक के बारे में, और सिर्फ चिकित्सक ही नहीं बल्कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर चिकित्सक। तो आइए जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी।

0: बहनों, आधी आबादी के क्रम में आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वास्तव में सबसे अलग हैं, जिनको शायद कुदरत ने भी सबसे अलग बनाकर भेजा। बहनों, हम बात कर रहे हैं केरल की डॉक्टर प्रिया की। डॉक्टर प्रिया भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने हौसले से इस इतिहास को रचा है। डॉक्टर प्रिया एक ऐसी महिला जिन्होंने समाज की हर दीवार तोड़कर यह साबित कर दिया कि सपनों की कोई पहचान नहीं होती, हौसले की होती है। केरल की इस बहादुर बेटी ने भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जलाई। बचपन से ही भेदभाव और ताने झेलने के बावजूद डॉक्टर प्रिया ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, मुश्किल हालातों में पढ़ाई जारी रखी और अपने जुनून से वो मुकाम हासिल किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। डॉक्टर प्रिया की यह उपलब्धि न सिर्फ चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक कदम है बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा भी है। उन्होंने तमाम कठिनाइयों और भेदभाव का डटकर सामना किया और यह साबित किया कि लगन और जुनून से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। आज डॉक्टर प्रिया का नाम उन सभी के लिए उम्मीद की किरण है जो हालात से जूझ रहे हैं। उनकी सफलता हमें यह सिखाती है कि पहचान हमें जन्म से नहीं बल्कि हमारे कर्म और परिश्रम से मिलती है। बहनों, डॉक्टर प्रिया का जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था। कोल्लम के SN पब्लिक स्कूल से पढ़ाई के दौरान ट्रांसजेंडर जीनू के मन में अपनी पहचान पाने की जद्दोजहद हावी थी। उन्हीं दिनों जीनू के पेरेंट्स ने उनकी नोटबुक के पन्ने पर यह लिखा हुआ देख लिया कि यही वो वक्त है जब मुझे अपनी पहचान हासिल करनी है। जीनू के माता पिता को अपने बेटे के लिए चिंता हुई, लेकिन वे क्या हल निकालें ये खुद भी उन्हें नहीं समझ आ रहा था। कुछ दिनों बाद जीनू के माता पिता को ये लगने लगा कि उसे कोई मानसिक बीमारी है और वे उनका हल तलाशने लगे। उसे मनोचिकित्सक से चेकअप कराने की बात भी होने लगी। उनके माता पिता चाहते थे कि वे एक लड़के की तरह रहें, लेकिन जीनू की भावनाएं एक लड़की के समान थीं। ऐसे ही तमाम हालातों के बीच जीनू ने 2008 में वैद्य रत्नम आयुर्वेदिक कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। 2012 में कर्नाटक के KVG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज दक्षिण कन्नड़ से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। फिर त्रिशूर के सीताराम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से उन्होंने अपने मेडिकल कैरियर की शुरुआत की। बहनों, अपनी पहचान को हासिल करने और डॉक्टर बनने की इस जद्दोजहद में प्रिया को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं कि किस तरह के हालातों से वो गुजरी।
1: जब हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि यह प्रदर्शनकारी हैं, सिर्फ नाचने वाले हैं, बस अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवाने वाले हैं। लोगों द्वारा उन्हें किसी पायलट या डॉक्टर की तरह सोचना मुश्किल है। मैं ये बदलाव चाहती थी और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। मैं अपने प्रति मजाक उड़ाए जाने से तंग आ चुकी थी। लोगों ने मेरे जेंडर को लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया। जब मैं कॉलेज पहुंची तो किसी ने मुझे एक ट्रांसजेंडर की तरह मान्यता ही नहीं दी। एक समय पर मैंने सोचा मैं समाज के बारे में सोचूं ही क्यों, मुझे बस अपने आप में जीना है, मुझे बस अपने तरीके से जीना है। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने ट्रांजिशन के समय फेस किया वह मेरे खुद के अंदर से था, ना कि बाहर की दुनिया से। मैं लगभग 30 साल से लड़के की तरह जी रही थी। एक आदमी को समाज में ज्यादा विशेषाधिकार दिया जाता है औरतों के बजाय। हमारे समाज में किरदार भी जेंडर के हिसाब से ही दिए जाते हैं। ट्रांसजेंडर की हालत टेक्निकली बहुत बुरी है, इसलिए बदलाव करने की जरूरत है। शुरुआत परिवार से होगी। अगर एक परिवार ट्रांसजेंडर बच्चे को ट्रांसजेंडर बच्चे की तरह ही एक्सेप्ट करता है तो वह यकीनन एक बढ़िया इंसान की तरह ग्रो कर सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं खुद हूँ, डॉक्टर प्रिया।
0: डॉक्टर बनने के बाद वो दिन भी आया जब जीनू ने अपनी माँ से सेक्स रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की मांग की। उसकी माँ इस सर्जरी के लिए राजी हो गई। जल्दी ही परिवार के अन्य लोगों की सहमति से जीनू ने 2018 में कोची के रेनाई मेडिसिटी में हार्मोन ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद उन्होंने सेक्स रीअरेंजमेंट सर्जरी भी कराई। इस तरह जीनू लड़की बनी और उसने अपना नाम प्रिया रख लिया। उन्हें केरल की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त है। प्रिया को इस बात की खुशी है कि सर्जरी के बाद उन्होंने अपनी पहचान पा ली। उनका मानना यही है कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसा वो है, समाज के लोगों की परवाह करके उसकी सच्चाई को सबसे छुपाकर ना रखें। आज जब डॉक्टर प्रिया सफेद कोट पहनकर गले में स्टेथोस्कोप डालकर चलती हैं, तो वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि साहस, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल बन जाती हैं। उनका हर कदम यह बताता है कि ट्रांसजेंडर होना कोई रुकावट नहीं बल्कि इंसानियत की सुंदर विविधता का हिस्सा है। उनकी सफलता ने पूरे भारत को यह संदेश दिया है कि अगर मन में सच्चा इरादा हो तो कोई भी दीवार सपनों को नहीं रोक सकती। डॉक्टर प्रिया ने सिर्फ एक डिग्री नहीं हासिल की बल्कि बदलाव की एक नई कहानी लिखती है। डॉक्टर प्रिया ने दिखाया कि असली ताकत उस दिल में होती है जो अपने सच को स्वीकार कर पूरी दुनिया को बदलने का साहस रखता हो। वो आज लाखों दिलों की प्रेरणा बन चुकी हैं।

0: बहनों, आधी आबादी के क्रम में अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर प्रिया, जो थी भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, जिन्होंने अपने हौसले और मेहनत के बल पर समाज में एक मुकाम हासिल किया है। और चलिए बहनों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कहानी पाठ की ओर। आपको सुनवाते हैं कहानी जिसका शीर्षक है सुधा, और कहानी पाठ कर रही हैं अंशु जी। तो चलिए सुनते हैं कहानी पाठ।
1: बहुत समय के बाद आज जब कुछ लिखने का मन हुआ और कलम हाथ में उठाई, तो स्वतः ही सुधा दीदी का चेहरा मेरी स्मृति में तैर गया। सुधा दीदी मेरी प्रेरणा स्रोत, एक ऐसी प्रेरणा जिन्हें जब जब याद करती हूँ मन एक आत्मबल से भर जाता है। आज मैं आपको उन्हीं की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुधा दीदी एक ऐसी महिला हैं जो कहीं ना कहीं हम सब में होती हैं, बस ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। बहुत अधिक आकर्षक ना होते हुए भी उनके व्यक्तित्व में एक सादगी थी। हल्का गेहुआ सा रंग, काले लंबे घने बाल, माथे पर सामान्य से थोड़ी सी ऊंचाई पर लगी हुई बिंदी और सादी सी सूती साड़ी, यही था उनका व्यक्तित्व। उनसे मेरी पहली मुलाकात एक बस में हुई थी, जब हम दोनों अपने अपने विद्यालय जा रहे थे। लेकिन ये मुलाकात इतनी साधारण नहीं थी। हुआ यूं कि हर रोज की तरह मैं बस में बैठकर उसके चलने की प्रतीक्षा कर रही थी। 15 मिनट से अधिक बीत चुके थे और बस ड्राइवर चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सवारियों के बार बार टोकने पर बस का कंडक्टर बस 5 मिनट 5 मिनट बोलकर सबको टाले जा रहा था। अलीगढ़ की एटा चुंगी से गंगीरी को जाने वाली वो प्राइवेट बस एकमात्र साधन थी उस रास्ते से जुड़े हुए हर गांव तक पहुंचने का। मेरी झुंझलाहट भी चरम पर थी। अगर कोई विकल्प होता तो पैदल ही चल देती, लेकिन 25 किलोमीटर के रास्ते पर भला कौन सी बाटा की चप्पल मेरा साथ देती, और क्या मेरे पैर भी मेरा बोझ उठा पाते। खैर, धीरे धीरे मेरी झुंझलाहट बढ़ रही थी और गर्मी से परेशान होकर मैंने कुछ तेज आवाज में कंडक्टर को कहा, अरे भैया जल्दी करो, क्या सारा दिन यहीं बैठे रहोगे। मेरे क्रोध का असर कहिए या संयोग, बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और चलने को तैयार हो गए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही बस चली, कंडक्टर लगभग चिल्लाते हुए ड्राइवर से बोला, अरे रुको रुको रुको, एक सवारी और आ रही है, और बस फिर से रुक गई। मेरे साथ साथ सारी सवारियां भी झुंझलाहटी। कुछ लोग तो खड़े होकर कंडक्टर से लड़ने भी लगे। कंडक्टर ने सबको अनदेखा किया और बाहर की ओर देखने लगा। इतने में एक महिला भागते भागते जल्दी से बस में आई, एक हाथ से दरवाजे को थामे और दूसरे हाथ से साड़ी का पल्लू संभालते हुए मेरी ही सीट पर आकर धम्म से बैठ गई। एक हल्की सी मुस्कुराहट मेरी तरफ फेंक कर उन्होंने मुंह फेर लिया। यही प्रथम परिचय था मेरा दीदी से। कोई बातचीत नहीं, बस खामोशी। लेकिन प्रतिदिन विद्यालय जाते हुए अब एक निश्चित समय पर मेरी उनसे मुलाकात होने लगी। धीरे धीरे बातें हुई, कभी हंसी मजाक तो कभी हल्की मुस्कुराहट से हालचाल पूछा जाता, और यह छोटा सा परिचय एक संबंध में बदल गया। मैं उन्हें दीदी पुकारने लगी। दीदी ने बातों ही बातों में अपने बारे में बताया। उनके 2 बेटे हैं, अजय और विजय, और उन्होंने मुझसे भी मेरे परिवार और मेरी शैक्षिक योग्यता आदि के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि मैं विज्ञान और गणित की विद्यार्थी रही हूँ, तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने का आग्रह मुझसे किया, जो कि दीदी के हिसाब से बड़े ही शैतान थे। दीदी ने उन बच्चों का कई जगह ट्यूशन लगवाया, लेकिन उनकी शैतानियों के आगे ट्यूशन टीचर ने हाथ खड़े कर दिए थे। दीदी ने जब मुझसे उन्हें पढ़ाने को कहा तो मैं मना ना कर सकी। उनका और मेरा घर पास ही था। दोनों बच्चे हर रोज शाम को पढ़ने आने लगे। बच्चे थे तो वाकई में नटखट, लेकिन बिल्कुल अपनी माँ की छाया, मन के निश्चल और साफ। समय यूं ही सरकता रहा। बातों ही बातों में मुझे पता चला कि दीदी, जो कि एक मेरे साथ ही नियुक्त हुई थी, उनकी साल भर से तनख्वाह नहीं आई है, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। शायद नियुक्ति के समय कोई कागजी कार्रवाई अपूर्ण रह गई थी, लेकिन मैंने कभी भी उनको शिकायत करते हुए नहीं देखा। वो प्रतिदिन चिर परिचित मुस्कान के साथ मुझे मिलती और अपने अपने काम पर हम दोनों निकल जाते थे। फिर एक दिन अचानक सुधा दीदी का मिलना बंद हो गया। हालांकि बच्चे पढ़ने आ रहे थे, फिर भी मैंने बच्चों से बहुत ज़्यादा पूछताछ करना उचित नहीं समझा और सोचा कि शायद दीदी की तबीयत ही खराब रही होगी। 7-8 दिन बाद जब सुधा दीदी फिर से मिली तो मैं यह घटना भूल गई और हम दोनों फिर से साथ जाने लगे। लेकिन 20-25 दिन के बाद जब वही घटनाक्रम फिर से दोहराया गया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बच्चों से पूछ लिया कि मम्मी कहाँ हैं आजकल। बच्चों ने मुझे बताया कि उनकी छोटी बहन की तबीयत खराब है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि दीदी ने तो मुझे अभी तक बताया ही नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी है। मैंने निश्चय किया कि इस बार जब दीदी मिलेंगी तो ज़रूर पूछूंगी। 7-8 दिन बाद जब दीदी मिली तो मैंने तुरंत ही उनसे बिना हालचाल पूछे ना आने का कारण पूछ डाला। पहले तो उन्होंने टालना चाहा, लेकिन जब मैंने बताया कि बच्चों ने मुझे बता दिया है तो शायद दीदी का धैर्य जवाब दे गया। उनकी आंखें भर आईं। मेरे मन में अंतर्द्वंद चल रहा था, क्या ये दीदी का बेटी होने का दुख था या कुछ और है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं दीदी को लेकर न जाने कितने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती चली गई, लेकिन मैं बहुत ही गलत साबित हुई। दीदी ने अगले ही पल मुझे जो बताया उसने मेरी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। दीदी ने बताना शुरू किया, उनके विवाह के शुरुआती दिन कुछ अच्छे नहीं थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। दीदी के पति, जिनको मैं भैया कहने लगी थी, बिजली के छोटे से कारीगर थे। भैया के परिवार के लोगों का रवैया दीदी के प्रति बड़ा ही नकारात्मक था, सहयोग भी ना के बराबर था। अजय और विजय दोनों के होने के बाद जब दीदी को तीसरी बार गर्भ ठहर गया तो आर्थिक तंगी और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन दोनों ने उस गर्भ को ना रखने का निर्णय लिया। उन दोनों की चिकित्सीय अल्पज्ञता कहिए या भाग्य का खेल कहिए, गर्भपात पूर्ण नहीं हुआ और उनकी बेटी दिव्या इस दुनिया में आ गई। बस यहीं से नियति की निष्ठुरता का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। दिव्या के थोड़े बड़ा होने पर दीदी ने अनुभव किया कि उनकी बेटी अपनी आयु के अन्य सामान्य बच्चों की तरह हाथ पर नहीं चला रही है, ना ही करवट बदलती है, ना घुटने चलना, ना खिसकना, ना बलबलाना, ना ही कोई गति। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि गर्भपात के लिए जो दवा ली गई थी उसका असर दिव्या की रीढ़ की हड्डी पर हुआ था। उसकी रीढ़ की हड्डी रबड़ की तरह लचीली थी। शरीर की वृद्धि सामान्य बच्चों की तरह थी। मस्तिष्क भी पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन उसके अंग गति नहीं करते थे। और फिर जब दिव्या लगभग 14 वर्ष की हुई तो सामान्य बालिका की तरह रजस्वला की प्रक्रिया शुरू हो गई। बस यही वजह थी जो दीदी ने 7-8 दिन की छुट्टी ली। उन दिनों दीदी को हर पल उसके साथ रहना पड़ता था। ये सामान्य सी शारीरिक क्रियाएं एक असामान्य बालिका की माँ के लिए एक युद्ध क्षेत्र था। कल्पना कीजिए उन माँ और बेटी की मानसिक स्थितियों की और साहस की। धीरे धीरे बड़ी होती उस बच्ची के पास हर एक एहसास था। अपनी माँ की मजबूरी वह अपनी आंखों से देखती थी, बस शब्द नहीं थे। अपनी माँ के सुख दुख, आंसू हंसी, सब कुछ देख कर भी वह अपनी माँ को उठकर गले तक नहीं लगा सकती थी। और वो माँ जिसकी बेटी बड़ी हो रही थी, वो किसी से क्या कहती कि उसे अवकाश क्यों चाहिए? शायद इसलिए वो बिना कहे गायब हो जाती थी। क्योंकि आज भी इस तथाकथित आधुनिक समाज में कुछ बातें अनकही रखना हम नारियों के लिए सौम्यता और शील कहा जाता है। दीदी ने बताया, बाकी दिन उनके विद्यालय जाने के बाद भैया एक बिना गद्दे की कुर्सी पर नीचे बाल्टी या कोई बर्तन रखकर उस बच्ची को कपड़े से लगभग बांध कर ही जाया करते थे, ताकि उनके पीछे अगर उसे लघुशंका जाना हो तो वह निर्वृत्त हो सके। बार बार घर जाकर भैया बेटी को देखते थे। इस समाज में ऐसी दयनीय स्थितियों का फायदा उठाने वाले मानसिक रोगी बहुत हैं। इसी डर से वे दंपति किसी को अपनी बेटी होने की बात तक नहीं बताते थे। मेरा रो रोकर बुरा हाल था। मैं निःशब्द थी, निष्प्राण थी, और जो मैं स्वयं को बड़ा साहसी मानती थी अपने इस दंभ को चूर मैं खुद ही करती जा रही थी। मैं 4 साल वहां रही, ये क्रम अनवरत देखती रही। उसके बाद अलीगढ़ से मेरा ट्रांसफर आगरा हो गया। अलीगढ़ लगभग आना जाना बंद हो गया। कभी कभी दीदी से फोन पर बात होती थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें परेशान, थका हुआ, हारा हुआ ऐसा स्वर मुझे उनका कभी सुनाई नहीं दिया। हम जो तनिक सी बात पर विधाता को कोसते हैं, वो दीदी हमेशा मुस्कुराकर मुझसे बात किया करती थी और एक ही बात बोला करती थी, अंशु मैं अपनी बेटी की सारी उम्र सेवा करती रहूंगी, हर पल उसकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, बस एक ही चिंता है कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा।
0: बहनों, ये थी कहानी सुधा, और कहानी पाठ कर रही थी श्रीमती अंशु जी। तो चलिए बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कराते हैं आपका मनोरंजन। तो चलिए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

और बहनों, मनोरंजन के बाद अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ काम की बातें जरूर बता दें। बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि खाने के बाद सभी माएँ कहती हैं कि बच्चों को कि ब्रश करें, लेकिन खाने के तुरंत बाद ब्रश करना खतरनाक हो सकता है। खाने के बाद ब्रश करना जरूरी है, लेकिन खाना खाते ही ब्रश करना नुकसानदायक होता है, खासकर जब भोजन में खट्टे फल या सोडा जैसी चीजें शामिल हों तो मुंह में एसिड बढ़ जाता है और इनेमल कमजोर हो जाते हैं। मैंने विशेषज्ञों के अनुसार 30 मिनट इंतजार करने के बाद सॉफ्ट हाथों से सॉफ्ट ब्रश से सही तकनीक और 2 मिनट तक ब्रश करना दांतों को मजबूत बनाता है। तो आशा करते हैं कि यह काम की बात आपके लिए जरूर अच्छी साबित रहेगी। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, और जाने से पहले ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। तो बहनों, इसके लिए लिखने होंगे आपको हमें पत्र, और पत्र लिखने के लिए नोट कीजिए हमारा पता, कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। इसी के साथ अपनी बहन भावना अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे महिला साथियों का दैनिक कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रताप सिंह चौहान के स्वर में जौनसारी लोकगीत।

0: श्रोताओं, प्रताप सिंह चौहान के गाए इसी लोक जौनसारी लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा, जिसके अंतर्गत आज आपने सुने प्रताप सिंह चौहान के स्वर में जौनसारी लोकगीत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज की कलाकार हैं अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। तो सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines: NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Hemanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide Chandranath Rath. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET-UT 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that the decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by the law enforcement agencies. The NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Registration details, candidature information and examination centres selected for the May 2026 cycle will remain unchanged and be carried forward to the reconducted examination. The agency informed that no fresh registration will be required and no additional examination fee will be levied. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered him the oath of office in secrecy at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: Along with Dr. Sarma, 4 MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog of the BJP, Atul Bora of the Ahom Gana Parishad, and Charan Boro from the Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as Chief Minister. The National Democratic Alliance, NDA, returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. The Bharatiya Janata Party emerged as the dominant force with 82 seats, while its allies, the Ahom Gana Parishad and the Bodoland People's Front, won 10 seats each. The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken over the investigation into the murder of Chandranath Rath, personal aide to West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Acting on a recommendation from the state police, the agency officially took over the probe into the case today. In a statement, the CBI said a special investigation team will be formed under the supervision of the joint director of its Kolkata zone. Meanwhile, the state police are preparing to hand over the case diary to the agency. A CBI team is likely to visit Madhyam Gram police station and inspect the crime scene later today. Meanwhile, the CBI has formed a 7-member team led by DIG Pankaj Singh to conduct the investigation. In West Bengal, a division bench of the Calcutta High Court comprising Justices Raja Shekhar Mantha and Rai Chattopadhyay has stepped aside from hearing the RG Kaur rape and murder case. During today's hearing, the CBI submitted a progress report in a sealed envelope. Counsel for the victim's family alleged that no fresh investigation had been carried out by the agency. Justice Mantha observed that adequate time could not be devoted to the case due to other pending matters and directed that it be referred to the Chief Justice, suggesting that a commission could be formed if necessary. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decisions of the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister, Shubhendu Adhikari. In a social media post, the Prime Minister said, "The welfare of people of West Bengal is the top priority." Mr. Modi expressed happiness that the people of the state will have access to Ayushman Bharat, the world's largest healthcare scheme that ensures top quality and affordable healthcare. The Prime Minister added that the double-engine government will ensure seamless delivery of key central schemes. The state government announced several important decisions after the first cabinet meeting yesterday. Transfer of land to the Border Security Force within 45 days for fencing the borders with Bangladesh was among the decisions. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said India has increased its domestic LPG production from nearly 36,000 tonnes per day to 54,000 tonnes amid the West Asia conflict. The minister said this while addressing the annual Business Summit 2026 in New Delhi. The minister said, while many nations have faced skyrocketing prices and fuel shortages over the last few months, India has managed to keep domestic prices relatively stable. He said the country maintains a buffer stock of 60 days for crude oil and LNG and 45 days for LPG, ensuring there is no immediate threat of a shortage. Mr. Puri further urged industry leaders and its constituents to shift from LPG to LNG and move towards green energy.
3: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons. Per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. International Nurses Day is being celebrated today, marking the birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. The day recognizes the essential role of nurses in patient care, community health, and economic development. The theme for International Nurses Day this year is Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Lives. It highlights the need for better support, safety, and resources for nursing professionals globally. On the occasion, President Draupadi Murmu conferred the National Florence Nightingale Awards 2026 on 15 nursing professionals at a function held at Rashtrapati Bhavan. In her message, President Murmu stated that this occasion is a fitting tribute to the invaluable contribution of nursing personnel and healthcare professionals who serve the nation with compassion and unwavering dedication. She said, "Nursing personnel exemplify the highest standards of service and play a crucial role in delivering quality healthcare, often in the most challenging circumstances." The president commended all the awardees for their inspiring devotion to duty and their tireless efforts in upholding the highest standards of patient care. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda, Ministers of State for Health Pratap Rao, Jadhav and other senior officials were present on the occasion. The National Florence Nightingale Award was instituted by the Ministry of Health and Family Welfare in 1973 as a mark of recognition for the meritorious services rendered by the nurses and nursing professionals to society. Prime Minister Narendra Modi will be on a five-nation tour to the United Arab Emirates, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. Our correspondent brings us the details of the Prime Minister's visit. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. Then the Prime Minister will reach Netherlands on Friday and call on King William Alexander and Queen Maxima. For the third leg of the visit, Mr. Modi will travel to Gothenburg, Sweden on Sunday and hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. As part of the final leg of his visit, the Prime Minister will undertake an official visit to Italy on Tuesday. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has ordered the closure of 717 Tasmac Tamil Nadu State Marketing Corporation retail liquor shops located near schools, colleges, places of worship and bus stands. In a statement, the state government said 4,675 retail liquor shops are operating under it. It said out of these 717 shops, functioning within 500 meters of schools, colleges, places of worship and bus terminals have been ordered to be closed within 2 weeks. TVK legislator JCD Prabhakar has been unanimously elected as Tamil Nadu Assembly Speaker. Pro Tem Speaker MV Karupaya announced Mr. Prabhakar's election after Chief Minister Joseph Vijay proposed his name, which was seconded by party's floor leader K.A. Sengotan. The Speaker also allowed AIADMK breakaway faction leader S.P. Velumani to speak in the Assembly. 30 AIADMK MLAs have elected him as the leader of the Legislature Party, while former Chief Minister Edappadi K. Palaniswamy has reportedly secured the support of 17 MLAs. The TVK government is scheduled to prove its majority in the Assembly during the floor test tomorrow. A US-based media has reported that Pakistan quietly permitted Iranian military aircraft to be stationed at its air bases during the recent conflict between Iran and the United States, despite publicly portraying itself as a mediator to end the war between Tehran and Washington. The report said some Iranian aircraft were parked at Pakistan's Nur Khan Air Force Base near Rawalpindi, a key military facility, to safeguard its aviation and military assets from possible American strikes during the conflict. Reacting to this, Republican Senator Lindsey Graham called for a complete re-evaluation of Pakistan's role as a mediator to end the U.S.-Iran war that broke out on the 28th of February and has been put on pause since the 8th of April. British Prime Minister Keir Starmer is facing mounting pressure from within his own Labour Party. More than 60 Labour MPs are reportedly urging him to set a timetable for stepping down. The demand follows the party's poor performance in recent local elections across England and Wales. According to media reports, several Labour lawmakers have privately and publicly called for a change in leadership amid fears that Prime Minister Starmer's leadership could hurt the party's prospects ahead of the next general election. Responding to the calls to quit, the UK Prime Minister pledged that he would prove his doubters wrong. Mr. Starmer said this while giving a speech in London. Back home, benchmark domestic equity indices declined around 1.4% in the afternoon session today. The Sensex plunged 1,048 points to 74,967, while the Nifty shed 305 points to 23,511 when reports last came in. The broader market at the National Stock Exchange also declined. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heatwave conditions at isolated places over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has issued an orange-coloured warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya and also predicted heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim tomorrow. Bihar and Uttarakhand are also likely to witness thunder squall with wind speed reaching up to 60 km per hour tomorrow. Meanwhile, warm night conditions are expected to prevail at isolated places over Rajasthan throughout this week. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Hemanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Roth. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द सीबीआई जांच के आदेश हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है
5: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी पंजीकरण विवरण उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक
4: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম
4: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता केए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
6: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
3: आवर एलपीजी
7: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
4: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
8: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा के नाम जिसकी मुस्कान में एक अलग ही अपनापन है, अदाओं में एक जादू सा है और जिनके नृत्य की थिरकन आज भी दर्शकों के दिलों में बसती है। अब तो हमारे सभी श्रोता समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की।

0: श्रोता, जब वो पर्दे पर आती हैं तो हर दृश्य में एक अलग ही चमक आ जाती है। माधुरी दीक्षित ने कभी मासूम सी प्रेमिका बनकर, कभी चुलबुली लड़की, तो कभी भावनाओं भरी एक खूबसूरत अदाकारा और कभी एक मजबूत स्त्री का किरदार निभाया। जी हाँ, ऐसी हैं बॉलीवुड की धक धक कर माधुरी दीक्षित। मुंबई में जन्मी माधुरी ने बचपन से ही कथक नृत्य सीखा। कथा के कला के प्रति लगाव आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। 1984 में अबोध फिल्म से करियर की शुरुआत की और बाद में 1988 में आई फिल्म तेजाब ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। और श्रोताओं, इस फिल्म का एक गीत तो आपको याद ही होगा, आइए आपको भी सुनवा देते हैं तेजाब फिल्म का एक गीत जो आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम एक ही कलाकार में, जिसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की। श्रोताओं, तेजाब फिल्म के बाद माधुरी दीक्षित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, देवदास, अंजाम, राजा, याराना, प्रेम ग्रंथ, कोयला, मृत्यु दंड जैसी अनगिनत फिल्मों में उन्होंने सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया अपने आप को, और माधुरी दीक्षित हर दिल की धड़कन बन गई।

हम आपके हैं कौन। इस फिल्म में अभी हमारे श्रोताओं ने सुना लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। श्रोताओं, माधुरी दीक्षित की आज हम बात कर रहे हैं अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार में। माधुरी दीक्षित ने अपने अभिनय से अनगिनत सम्मान हासिल किए हैं। श्रोताओं, उन्होंने 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और लगभग 15 से ज़्यादा बार नामांकन भी प्राप्त किया। साल 2008 में भारत सरकार ने कला जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। यह सम्मान सिर्फ उनकी लोकप्रियता का नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान का प्रतीक है। फिल्मों के साथ साथ श्रोताओं, माधुरी दीक्षित ने टीवी की दुनिया में भी बेहद लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शो में जज बनकर नई प्रतिभाओं को प्रेरित भी किया है।

श्रोताओं, समीर का लिखा यह गीत आपने सुना। संगीत था आनंद मिलिंद का। आवाजें अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की थी। फिल्म का नाम था बेटा। तो दोस्तों, इसी गीत के साथ अब समय हो चुका है कार्यक्रम एक ही कलाकार से विदा लेने का। आज हमने बात की उस कलाकार की, उस महान अभिनेत्री की, जिसने अपनी मुस्कान से दिल जीते, अपने अभिनय से किरदारों को यादगार बनाया और अपने नृत्य से हर महफिल में जान डाल दी। श्रोताओं, माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का वो सुनहरा अध्याय है जिसकी चमक आज भी बरकरार है। उनके दांवों की नजाकत, चेहरे की मासूमियत और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें हर दौर में खास बना रखा और शायद यही वजह है कि समय बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन माधुरी दीक्षित के प्रति लोगों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। माधुरी दीक्षित ने अपना नाम अपने दम पर बनाया, अपने हुनर के दम पर बनाया। श्रोताओं, उम्मीद है आज का ये सफर आपको भी पसंद आया होगा और माधुरी दीक्षित से जुड़ी यादों ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। इसी उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज हमने बात की अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजे हैं श्रोताओं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। संध्या 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी सायंकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी योजना के विषय में। पहले जानकारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है, जिसे 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को मुफ्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है, जिससे कि वे बेहतर आजीविका प्राप्त कर सकें। श्रोताओं, इस योजना के अंतर्गत 3 माह से 1 साल तक के लिए रजिस्ट्रेशन होता है और कोर्स पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यता अनुसार रोजगार देना है। इस योजना के अंतर्गत पहले वर्ष में 24 लाख युवाओं को शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना का लाभ देना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा प्राप्त है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की एक प्रमुख योजना है, जो कि 15 वर्ष से 45 वर्ष के बेरोजगारों को उद्योग प्रासंगिक कौशल सिखाकर रोजगार योग्य बनाती है।

0: 2015 में शुरू हुई ये योजना अब तक 4 चरणों में जो कि 2026 तक चलेगी। इसमें 3 महीने से 1 साल तक के कोर्स और 8,000 रुपये तक का मौद्रिक पुरस्कार भी मिलता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारतीय होना आवश्यक है। आयु सीमा 15 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक स्कूल कॉलेज छोड़ चुके हों या बेरोजगार हों। आवेदक का आधार कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट है pmkvyuofficial.org। और अब जानकारी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी के बारे में। श्रोताओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी भारत सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत सरकारी सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की राशि बिचौलियों के बिना सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाता है और भ्रष्टाचार को रोकना है, समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। श्रोताओं, इस योजना को भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु मिशन के रूप में शुरू किया गया था। यह योजना जनधन खाते, आधार कार्ड और मोबाइल का उपयोग करती है। इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सका है और सरकारी धन की बचत हुई है। डीबीटी के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ योजना के कार्यान्वयन के प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली, आरबीआई, एनपीसीआई, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एकीकृत स्थायी भुगतान एवं समाधान मंच शामिल है। डीबीटी के तहत 53 मंत्रालयों की 310 योजनाएं इसमें शामिल हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल पेंशन योजना आदि। डीबीटी पाने के लिए बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि फंड सीधे खाते में जाने से धोखाधड़ी कम होती है और लाभार्थियों तक धन का हस्तांतरण तेजी से होता है और सरकारी अधिकारियों या बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। और आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष में आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष में अरुण दीक्षित से रेणु राजपूत की बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष में आज हम बात कर रहे हैं अरुण दीक्षित जी से, जो कि हिंदी साहित्य के कवि हैं और वर्तमान समय में राजा चरण सिंह इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए बात करते हैं अरुण दीक्षित जी से और करते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत अपने इस स्टूडियो में। आइए आज हम जानते हैं कि आकाशवाणी ने किस तरह से हिंदी साहित्य को पंख दिए और जन जन तक पहुंचाया, और आकाशवाणी ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर, संगीत, गायन, इन सबको संभाल कर किस तरह से रखा हुआ है।
1: धन्यवाद रेणु जी, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आकाशवाणी के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं बचपन से ही आकाशवाणी से जुड़ा रहा हूँ, आकाशवाणी का नियमित श्रोता रहा हूँ। एक समय था जब देश में सूचना प्रणाली के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब देशवासी आकाशवाणी के माध्यम से ही देश विदेश के समाचारों से परिचित होते थे। मुझे अपने बचपन की घटना याद है, हमारे घर में एक रेडियो था। शाम को मोहल्ले के लोग हमारे दालान पर आकर बैठ जाते थे और सभी ध्यानपूर्वक समाचार सुना करते थे। उस दौर में चलचित्र और समाचार पत्र की पहुँच गाँव देहात में नहीं थी, केवल आकाशवाणी ही ज्ञान और मनोरंजन का माध्यम था। आज भी आकाशवाणी प्रासंगिक है, उस दौर में भी प्रासंगिक था। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, हर क्षेत्र प्रांत में भाषाई विविधता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में अब से 90 वर्ष पहले आकाशवाणी का उदय हुआ। मैं आभारी हूँ आकाशवाणी का, जिसने हिंदी साहित्य का अत्यधिक

0: प्रचार प्रसार किया है। हिंदी भाषाई कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी ने देश को वैचारिक रूप से एकता के सूत्र में पिरोया है। आकाशवाणी ने देश के दुर्गम क्षेत्रों में अपनी पहुंच बनाकर देशवासियों को हिंदी भाषा से जोड़ा है। हिंदी साहित्य का जितना प्रचार प्रसार हिंदी के साहित्यकारों ने किया है, उससे अधिक योगदान आकाशवाणी का भी है। एक समय ऐसा था कि जब आम आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था, या वह अपनी दुकान पर व्यवसाय में बिजी होता था, पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर पाता था, उस समय में आकाशवाणी ऐसा माध्यम था कि अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी मनोरंजन, सूचनाएं और ज्ञान प्रदान करता था। व्यस्ततम व्यक्ति के लिए भी वह सुलभ होता था। आकाशवाणी के माध्यम से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। आकाशवाणी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हम सब देशवासियों के कार्यक्रमों को राह चलते, घर बैठे कार्य करते भी लाभ देता रहता है। इसके कार्यक्रम से केवल वृद्ध प्रौढ़ ही नहीं, अपितु गृहिणी, व्यवसायी, युवा वर्ग, बालक वर्ग, किसान, जवान सभी लाभान्वित हो रहे हैं। विविध कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी समाज के सभी वर्गों को जोड़ रहा है। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से वे अपनी फसल की पैदावार अधिक लेने के साथ साथ उपज का अधिक मूल्य कैसे प्राप्त करें, इसकी भी जानकारी लेते रहते हैं। बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर आकाशवाणी के द्वारा बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को मोबाइल फोन की लत से दूर करके आकाशवाणी के कार्यक्रम बाल वाटिका से जोड़ें, जिससे उनमें सही संवेगों का विकास हो सके। आकाशवाणी के द्वारा हिंदी साहित्य के कार्यक्रम जैसे वार्ता, कहानी, नाटक, काव्य पाठ आदि का निरंतर प्रस्तुतिकरण हो रहा है। आकाशवाणी पर आने वाले साहित्यिक कार्यक्रम विद्यार्थियों को लाभप्रद सिद्ध हो रहे हैं, जिसके माध्यम से भी अपनी साहित्यिक रुचियों को तुष्ट कर रहे हैं। आकाशवाणी पर प्रस्तुत वार्ताओं से हिंदी साहित्य प्रेमियों को साहित्यकारों की शब्दावली से नए नए शब्दों का ज्ञानार्जन होता है। आकाशवाणी द्वारा प्रतिष्ठित कवियों के साथ साथ नवोदित रचनाकारों को भी मंच प्रदान किया जाता है। आकाशवाणी पर प्रस्तुत कहानियां प्रेरणा देने के साथ साथ चरित्र निर्माण का भी कार्य कर रही है। आज के समय में जहां विदेशी संगीत और गायन दुनिया में पैर पसार रहा है, वहीं आकाशवाणी वह माध्यम है जो हमारी प्राचीन संस्कृति, धरोहर, संगीत और गायन को जीवंत रखे हुए है। आकाशवाणी के द्वारा हिंदी साहित्य को सदा आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता रहा है। आकाशवाणी द्वारा हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा। आशा है भविष्य में भी आकाशवाणी के माध्यम से हिंदी साहित्य का उन्नयन होता रहेगा। मैं अपनी चार पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा, 90 बरस आकाशवाणी के उत्सव बरस मनाना है। 90 बरस आकाशवाणी के उत्सव बरस मनाना है। हिंदी साहित्य समृद्ध कीना, संदेश घर घर जाना है। सुनो युवाओं, सजग बनो, तुम हिंदी का उत्थान करो। हिंदी है माथे की बिंदी, इसका भी बड़ मान करो। पढ़ो लिखो और बोलो हिंदी, इसमें ना तुम शर्म करो। चौड़ा हो भारत का सीना, ऐसे उत्तम कर्म करो। आकाशवाणी के सफल प्रयास जो हिंदी विश्व की भाषा है, जन जन के मन पहुंचे हिंदी, ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अरुण दीक्षित के विचार। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 956 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी ही देर में 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का एपिसोड नंबर 2। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। आज शाम 6:45 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल। रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नारायण शर्मा से रेणु कोटनाला की बातचीत। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज शाम 7:32 पर श्रोता आनंद लेंगे ललित भूटानी की गायी गजलों का। कार्यक्रम मुलाकात के अंतर्गत रात्रि 9:30 पर सुखवीर यादव से शोभित शर्मा की बातचीत।

राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे हमारे लखनऊ केंद्र से। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में, और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल सवेरे 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण समय होगा सवेरे 6:30 पर। चिंतन आप सुनेंगे सवेरे 6:40 पर। कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत मुकेश कुमार का काव्य पाठ सवेरे 6:45 पर। कल सुबह 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा गर्मी और लू से बचाव विषय पर। खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत कल सवेरे 7:10 पर जानकारी दी जाएगी उर्द मूंग और लोबिया की फसल में सामयिक कार्य विषय पर। जानकारी और मनोरंजन से ओतप्रोत कार्यक्रम सूरज के साथ साथ प्रातः 7:31 पर।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सुबह 9:25 पर श्रोता सुनेंगे रजनी टोंक के गाये रुहेलखंडी लोकगीत। बात आसपास की, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 9:50 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर प्रातः 10:00। कल दिन में 12:05 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित ब्रज नारायण का सरोद पर बजाया राग मुल्तानी। आलाप विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध होगा और तबले पर संगत करेंगे सुखविंदर सिंह नामधारी। कार्यक्रम घर संसार का समय होगा दिन में 1:15 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल क्रम होगा थारा स्वास्थ्य का, साथ ही सुनेंगे महिलाएं और युवाओं में माइग्रेन की बढ़ती समस्या विषय पर डॉक्टर निधि अरोड़ा से तनप्रीत कौर की बातचीत। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत श्रोता आनंद लेंगे भूंगर खान और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीतों का। कल शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे कल शाम 5:15 पर। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला, इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत कल शाम हम आपको सुनवाएंगे वार्ता खड़ी बोली उद्भव विकास और विशिष्ट वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा। कार्यक्रम कानून की बात कल शाम 7:32 पर हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।

0: गुड इवनिंग लिसनर्स,
1: स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में।
0: मैं हूँ आपकी सगी दोस्त और आज की वन ऑफ द होस्ट नंदिनी माहेश्वरी, और मेरे साथ हैं एक यूनिक आवाज वाली साथी।
1: जी, नंदिनी के साथ हाजिर हूँ मैं दोस्तों यूसुफा जैदी, और हाँ मेरी आवाज ही।
0: बस बस बस यूसुफा, गाकर यकीन कराने की जरूरत नहीं है।
1: देखो, यकीन तो कराना पड़ता है, दुनिया में बगैर मिसाल के तो कुछ भी नहीं होता।
0: अच्छा, मिसाल तो ठीक है, मलाल हो जाएगा अगर तुम फिर गाने लगोगी।
1: अरे मेरे गाने को मारो गोली और उसी गोली पे फोकस करो।
0: साफ साफ बताऊं ना यूसुफा,
1: अब क्या अपनी बात पर फिनाइल का पोछा मारूं?
0: नहीं, सबटाइटल दे दो बस काफी है।
1: अरे मैं कह रही हूँ गोली गोली पर फोकस करो, यानी कि स्पोर्ट्स की तरफ।
0: फोकस तो तुम ठीक करा रही हो लेकिन ह्यूमर बहुत बेकार है तुम्हारा। एनीवेज, तो दोस्तों आप बताइए, आपको गेम स्पोर्ट्स खेल का नाम सुनकर कौन सा खेल याद आता है?
1: जो भी याद आया उसके नाम पर हमारे बूझो तो जाने का सवाल दे।

0: दीजिए, उसका जवाब भी दीजिए।
1: और आज का सवाल जो कि हम आपको देंगे वो रहेगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
0: सही जवाब आपको पता ही कहाँ देना है, एबी पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
1: और जाइए नहीं, रुकते जाइए, आप हमारे साथ खूब सारी बातें भी करेंगे आज, दिल की बातें करेंगे आज।
0: दिल से दिल तक आने वाली बातें, क्योंकि आज है सेगमेंट दिल से दिल तक।
1: नंबर आप नोट कर लीजिए मैसेज के लिए, 9457078288।
0: मैसेज करेंगे क्या,
1: खाली,
0: यानी आज की थीम है खाली।
1: आपके अंदर का खालीपन या कोई भी एम्प्टीनेस, कोई खाली एहसास हो,
0: उसे बताइए, बांटिए हमारे साथ सेगमेंट दिल से दिल तक में।
1: जी आप कीजिए हमें मैसेज टाइप और साथ ही दीजिए हमारे सवाल का जवाब। तब तक हम रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे आशा कर लोट कोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
5: हेलो अंकल।
6: हेलो मेरे बच्चा, कैसे हो?
5: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
6: और
5: अंकल, आपको पता है आज मुझे PhD की डिग्री मिल गई।
6: अरे वाह, तुम तो मुझे पता ही था, पहले से ही होना आ रो।
5: जी, और ना आप ऐसा कीजिए, आप वो मेरा उधारी वाला खाता है ना, वो निकाल दीजिए।
6: बड़ी खुशी की बात है, आज सारा हिसाब चुकता करोगी क्या?
5: अरे नहीं नहीं अंकल, बस वो जो खाते में आपने मेरा नाम लिखा है ना, उसके आगे डॉक्टर लगा दो, मजा आ जाएगा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
7: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका DD फ्री डिश।

0: Akashwani at 90.
1: वेलकम बैक। तो प्रोग्राम में फुल एनर्जी बरकरार है और इसका राज है आप।
2: जी आप। हाँ हाँ आप।
3: देखिए मौसम बड़ी तेजी से करवट बदल रहा है। कभी सूरज की लाली है तो कभी बारिश के आंसू, और कभी कभी आ जाती है ठंडी हवा की मुस्कुराहट भी।
1: तो ऐसे में तबीयत बिगड़ने के चांस है। ख्याल रखिए कहीं आपका बॉडी सिस्टम भी ना कह दे कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।
3: दवा का तो नर्स बताएगी, हम आपको नर्स का पता देंगे। तो बात है 12 मई 1820 की। देश था इटली और जमीन पर उतरी लेडी विद द लैम्प। समझे आप?
1: हम किस लिए हैं, हम समझाएंगे ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नाम अपने हिप्पोकैम्पस में दर्ज कर लीजिए और अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए पेस्ट कर लीजिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग डिपार्टमेंट की मदर हैं और इसीलिए 12 मई को मनाया जाता है।

0: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस।
1: तो आज का दिन उन सभी के नाम है जो अपनी सेहत के लिए आपके अपनों से ज्यादा आपके होते हैं, और फिर चाहे वो इंजेक्शन लगाना हो, रात भर जुगनू बने रहना हो,
0: या आपकी नजर से नजर मिलाकर आपका बीपी चेक करती हूँ, और जब घर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी,
1: तब नर्स होती है जो जोर से चिल्लाकर कहती है, डॉक्टर पेशेंट का होश आ गया है।
0: तो कुल मिलाकर थैंक यू सो मच नर्स फॉर एवरीथिंग, यही है आज की खास बात अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस।
1: अब जो कि हम आपको बता देते हैं कि आज हमारा दिल से दिल तक सेगमेंट है जिसकी थीम है खाली, और आपके मैसेजेस को हम नहीं जाने देंगे खाली, उन्हें जरूर पढ़ेंगे।
0: तो अर्ज किया है कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। अब देखिए, जिंदगी तो आपको समझ आ जाएगी इश्क करने के बाद, लेकिन जब इश्क होता है तो फिर होती है मोहब्बत। और
1: आज हम दिल की बात करें तो सबसे पहले जो दिल के तार छिड़ते हैं यानी लव स्टोरीज, हम उसका जिक्र कर लेते हैं।
0: तो वो तो आपको सुना होगा हमारा सेगमेंट लव स्टोरी, जिसमें प्रेजेंट करेंगे आज शुमायला गुनाहों का देवता धर्म भारती के उपन्यास पर आधारित ये लव स्टोरी।
2: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे,
3: ये धड़कने लगे,
2: है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे,
3: हम तड़पने लगे।
2: आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं लव स्टोरी गुनाहों का देवता। जी हाँ, मैं हूँ शुमायला आपके साथ, और आप सभी का स्वागत करती हूँ एपिसोड नंबर 2 में। वक्त कभी कभी बहुत खामोशी से बदलता है, ना कोई आहट होती है ना कोई शोर, मगर कुछ रिश्ते धीरे धीरे दोस्ती की सरहद पार कर दिल तक पहुंच जाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वही गलियां, वही पेड़, वही चाय की महक, सब कुछ पहले जैसा था। अगर कुछ बदल रहा था तो वो थे सुधा और चंदर। अब सुधा पहले की तरह सिर्फ शरारतें नहीं करती थी, कभी कभी वो चंदर को चुपचाप देखा करती थी, जैसे उसकी आंखों में कोई जवाब तलाश रही हो। और चंदर, वो अब हर छोटी बात में सुधा को महसूस करने लगा था। उसकी हंसी, उसकी नाराजगी, उसका अचानक चुप हो जाना, सब कुछ चंदर के लिए दिल पर असर डालने लगा था। लेकिन इन सब एहसासों के बीच एक दीवार खड़ी थी, मर्यादा की दीवार। डॉक्टर शुक्ला सिर्फ उसके प्रोफेसर नहीं थे, उसके गुरु थे, और सुधा उनके विश्वास की सबसे प्यारी अमानत। चंदर, आजकल तुम बहुत खोए खोए रहते हो।
5: नहीं तो सुधा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
4: झूठ बोलते वक्त आपकी आंखें इधर उधर देखने लगती हैं। अच्छा, अब तुम आके पढ़ना भी सीख गई हो।
5: हाँ चंदर, कुछ लोगों को समझने के लिए किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। उस पल चंदर ने पहली बार महसूस किया कि सुधा की बातें अब पहले जैसी ही नहीं रही, उनमें कहीं ना कहीं एक अनकहा इकरार छिपा था। मगर चंदर हर एहसास से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो डरता था अपने दिल से भी और समाज से भी। चंदर, अगर मैं कहीं दूर चली जाऊं तो तुम्हें मेरी याद आएगी, चंदर धीरे से बोला। तुम बहुत सवाल करती हो सुधा। क्योंकि कुछ जवाब आंखों से नहीं मिलते, इसीलिए पूछने पड़ते हैं चंदर। हर बात का जवाब होना जरूरी नहीं होता, मगर कुछ खामोशियां बहुत कुछ कह देती हैं। सुधा शायद अपने दिल की बात सुनना चाहती थी, बस एक बार अगर चंदर ये कह देता कि हाँ सुधा तुम मेरी दुनिया हो, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन चंदर, उसने अपने जज्बात को आदर्शों की जंजीरों में बांध दिया था। उसे लगता था प्रेम पाने में नहीं, त्याग में महान बनता है। नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी है, उनका विश्वास, उनका सम्मान, मैं उसे अपने लिए कैसे मांग सकता हूँ। चंदर ये समझ ही नहीं पाया कि कभी कभी मोहब्बत को कुर्बानी नहीं, सच की जरूरत होती है, और जो प्रेम शब्दों तक नहीं पहुंचता वो अक्सर दर्द बनकर बह जाता है। चंदर, तुम्हें कभी डर नहीं लगता?
4: डर किस बात का?

0: किसी अपने को खो देने का? कुछ लोग कभी खोते नहीं सुधा, बस दूर हो जाते हैं। उस रात दोनों बहुत देर तक खामोश बैठे रहे, मगर उनकी खामोशियों में एक अधूरी मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी मोहब्बत जिसे इजहार कभी नसीब नहीं हुआ, और शायद शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी थी और सबसे बड़ा दर्द भी।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे आज सच कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: अरे सुनते हो क्या?
3: हाँ हाँ सुनाओ, और काम ही क्या है, तुम्हारी तो सुनता रहता हूँ पूरे दिन।
5: जब मुंह खोलोगे ताने निकालोगे। कभी ऐसा हो कि बीवी की प्यार से तारीफ कर दो, खुश हो जाए वो?
3: अब बंदा तुम्हारी खुशी के लिए जहर तो नहीं पी सकता।
5: चुप कर जाओ तुम, जब देखो बकवासी करते रहते हो। अच्छा मैं क्या कहने आई थी, हाँ सुनो, मेरा ना फोन काम नहीं कर रहा, दूसरा ले लूं?
3: काम तो वैसे तुम भी नहीं करती, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा? कहा क्या?
5: तुम्हारी तो।
4: जी हाँ मजा आ गया।
3: तो दोस्तों शुरू हो चुका है सेगमेंट दिल से दिल तक। हाँ आपसे हमने कुछ कहा था, आपको बिल्कुल ये नहीं कहा था कि आप खाली बैठ जाएं। हाँ आपने बूझो तो जाने का सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको हमारी थीम याद है सेगमेंट दिल से दिल तक की? थीम क्या थी? जी जी, अपने खाली दिमाग को थोड़ा सा टटोलिए, शायद आपको याद आ जाए। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, आज की थीम है खाली। और हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको याद ही होगा, एक बार से फिर याद दिला देते हैं, 9457078288। आपको इस नंबर पर अपने दिल के जितने भी भरे हुए आधे खाली या आधे पूरे जज्बात हैं वो सारे हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर कर देने, और फिर हम आपको उनको पढ़ के सुनाएंगे। हो सकता है, क्या पता, आपकी खाली खाली जो अंदाज हैं वो किसी के दिल को भर दे या किसी के दिमाग को। तो शुरू करें फिर सेगमेंट दिल से दिल तक।

0: तो सेगमेंट शुरू हो चुका है। सेगमेंट का नाम है दिल से दिल तक। पहले तो ये सोचिए कि दिल पहले आता है या दिमाग। क्या कहा आपने कि अगर हम सर से शुरू करें तो दिमाग पहले आता है। तो देखिए, दिमाग हो या दिल, खाली तो कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ना। तो आज की जैसे कि थीम थी खाली, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ काम में बिजी रहना चाहिए, दिमाग को कभी खाली नहीं रहने देना चाहिए। और ये सुंदर सा मैसेज हमें लिखा है रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुण वर्मा जी ने। उनका कहना है कि यदि दिमाग को फिल रखें तो आप पर शैतान हावी नहीं होगा। अच्छा, अगर दिमाग खाली रखें तो किस तरह का आइडियाज आ सकते हैं नंदनी हमारे माइंड में?
1: खुराफाती आइडियाज आ सकते हैं कि भैया को बाथरूम में बंद कराओ, है ना, होमवर्क जिसने किया है उस वाले बैचमेट के साथ थोड़ी दोस्ती करके उसकी कॉपी ले लो, और भी बहुत सारे सारे। देखो, खाली दिमाग जिसका होता है उसके दिमाग में पता नहीं किस किस तरीके से ख्याल आते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि दिमाग भरा होना चाहिए, लेकिन दिल जिसका खाली होता है, अब उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
0: जिसका दिल खाली है, मेरे ख्याल से उसका ब्लड फ्लो बहुत आराम से हो जाता होगा।
1: नहीं नहीं, ये गलत कह रही हो तुम। जिसका दिल खाली है ना, उसके ब्लड फ्लो में तड़प बहुत होती है।
0: तो फिर वहीं से तो आएगी क्रिएटिविटी।
1: ये बात बहुत अच्छी है। तो हमारी जो लिसनर्स है उनके क्रिएटिव मैसेजेस का हम कर रहे हैं इंतजार, तब तक कि शाम के खालीपन को भर देते हैं इस खाली गाने से, इस गीत से। सुनवाते हैं ये गीत।

न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका दिल खाली है तो वो खाली रहे। अब देखिए, खाली होता है कोई चीज़ तो उसे भरा दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ रहने वाला कोई नहीं होता, बस दो पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे, मतलब किसी के मम्मी पापा होते हैं, और वो जो रूम है वो खाली पड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर वो उनको रेंट पे दे देते हैं। इससे क्या होता है कि उनके जो बच्चों की जो शोर शराबा है वो भी उनके नज़दीक रहता है और उनका घर भी भर जाता है। तो ऐसे छोटे मोटे तरीके होते हैं अपने खालीपन को भरने के लिए। अब जैसे कि पैन है, अगर वो खाली हो चुका है तो कोई बात नहीं, रिफिल आ जाएगा उसको, वो फिर से चलने लगेगा, है ना। तो दिल में उम्मीद होनी चाहिए, खाली तो कुछ नहीं रहता, कुछ ना कुछ भर ही जाता है। तो खैर, अनिल विनोचा जी का मैसेज आया है और वो भी बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने लिखा है कि खाली

0: के दो अर्थ हैं, एक दर्द भरा और दूसरा राहत भरा। जैसे जब हम स्टडी करते हैं तब कोर्स में एडमिशन मिल जाए तो राहत, नहीं तो दर्द भरा, क्योंकि इससे हमारा फ्यूचर जुदा होता है। फिर जॉब ना मिलने तक खाली रहना बड़ा दर्द भरा समय होता है, जब मिल जाए तो राहत। ट्रेन बस में खाली ना मिले तो परेशानी, पर खाली हो और मन खाने को ना मिले तब भी खाली। दिल में जो प्यार के जो रूम खाली होते हैं उस रहने वाला ना मिले तो परेशानी, और जब मिल जाए बिना किराए दिए तो फिर राहत और भी परेशानी। काम करने के लिए शॉप खाली ना मिले तो परेशानी, परदेश में जॉब करते हुए रूम ना मिले तो परेशानी, जब मकान मालिक कहे घर खाली कर दो परेशानी, दुकान मालिक कहे तो भी परेशानी। ऊपर जिसने ज़िंदगी दी होती है वो इससे मांग लेता है वक्त बेवक्त, सच इंसान कुछ भी नहीं कर पाता।
1: कहते हैं लोग खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, मगर इस बीच जो करना पड़ता है सभी जान सकते हैं। जाने कितने नंबर हमें मिलते हैं, नगर पालिका से शुरू होकर के वोटर नंबर, आधार, रोल नंबर, हर क्लास उसके नंबर, मोबाइल नंबर, इनकम टैक्स नंबर, अकाउंट नंबर, इन सब में उलझ गई है जिंदगी। एक जिंदगी जब इस दुनिया में आती है तो दिमाग खाली कांच के ग्लास की तरह होता है, और फिर इसमें जो भरता है भरता चला जाता है, दुनिया समाती जाती है, फिर ही खाली रहता है बस। और जी, इन्होंने बड़ी प्यारी सी दो लाइन हमें लिख के दी हैं। हमारी प्यार भरी नज़र को प्यार भरी नज़र मिली तो दिल की खाली कोठी उसके नाम कर डाली। क्या बात है, वो अनजान दिल आया है एक दिन गैर बन कर चला गया, फिर मालूम हुआ ये हमने गलती कर डाली। ओहो, बड़ा गहरा दर्द है इनके पीछे
0: लग रहा है, मगर
1: इनकी खलिश जो इन्होंने हाँ। सारी लाइफ की फिलॉसफी में डाली है उसकी जो जड़ है वो यहाँ से आई है
0: जी। तो फिर अंदाजा क्या लगाया जाए, खाली है या भरा हुआ?
1: नहीं नहीं खाली होकर भी भरा हुआ है ये कहा जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें मैसेज करने के लिए। और साथ ही ये आया है हमारे पास दिल्ली से, ऋचा का, माधव का, मोहन का, और ये कहते हैं कि हमारे पिताजी बहुत परेशान हैं, इस खाली लफ्ज़ ने हमारे दिल के जो दर्द भरे तार हैं वो छेड़ दिए। बताओ यूसुफ ऐसा क्या हो गया जो दर्द भरे तार छिड़ गए? हाँ, हालांकि ये बात मान सकते हैं कि खालीपन से दर्द भरे तार जरूर छिड़ जाते हैं सबके। तो ये कहते हैं कि हमारे जो किराएदार हैं पिछले 2 महीने से हमें बहुत दुखी कर रहे हैं, हमारा पानी भी ज्यादा खर्च करते हैं और जो है किराया भी वक्त पर नहीं देते, तो हम इस बात से परेशान हैं कि वो कब खाली करके जाएं। कह रहे हैं कि जाएंगे जाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे और नंबर आने वाला है, लेकिन जा नहीं रहे।
0: तो उनके लिए एक एडवाइस है, वो एक काम करें ना, तो वो देखिए मेरे पास एक बहुत अच्छा जुगाड़ है।
1: हाँ, मतलब तुम्हारा दिमाग खाली है इसलिए जुगाड़ तुम्हारे पास है।
0: इससे ये होगा कि वो उन्हें घर भी खाली नहीं करने की जरूरत है, बस वो उन अंकल की जेब जो खाली है उसे भर दे तो फिर मेरे ख्याल से किसी को कोई शिकायत
1: नहीं
0: होगी।
1: सही बात है, उनका कमरा भी भरा रहेगा। अब इस कमरे का जिक्र आया है हमारे पास जो मैसेज है, तो उनके लिए एक प्यारा सा गीत हम सुना देते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे हम मैसेजेस के साथ।

0: जी, और हमारा मैसेज बॉक्स भी था, एक खाली कमरा, और इसमें ढेर सारे मैसेजेस आ गए हैं। हमारे पास मैसेज आया है नगीना से, मिसबा शमसी का। ये कहती हैं, खाली वक्त में अक्सर नई राहें नज़र आती हैं, बीते हुए लम्हों की कुछ यादें नज़र आती हैं। ज़रूरी है थोड़ा रुक कर खुद को पहचान लेना, क्योंकि खाली पन्नों पर ही नए सपनों की कहानियाँ लिखी जाती। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात कही उस पर
1: और पॉजिटिव वाइब।
0: बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और इस तरह हमारे प्रोग्राम में हमें पॉजिटिव वाइब्स जो है बरकरार रखनी चाहिए।
1: तो इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है जसपुर रोड दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से, महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महबूब मोहम्मद समीर अंसारी मोहम्मद वारिस अंसारी और बेटी अलशिफा परवीन का। कहती हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, दूर ना होना मुझसे कभी, तुझ पर एतबार बहुत है, मेरा दिल तेरे प्यार का तलबगार बहुत है, एक तेरा ही चेहरा मेरी आंखों में है बसा, ये सच है मेरी जान कि मुझे तुझसे प्यार बहुत है।
0: क्या बात है, खूबसूरत, इतना प्यार कि हम बिल्कुल खुश हो गए हैं, और इतने प्यार को हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और साथ ही हमारे पास मैसेज आया है, युवाणी प्रस्तुत करने वाले उद्घोषकों को हमारी ओर से राम राम। उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल ग्राम सेंधी पोस्ट ऑफिस सेंधी खाल से प्रकाश चंद, उज्जवल कुमार, कनुप्रिया, मंजू देवी, आज हमारे जीवन में हमारे बीच से अगर कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाए तो उसकी जगह हमेशा खाली रह जाती है। चाहे कितने लोग जीवन में आ जाएं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। दुनिया में खाली आना है, खाली जाना है। गलत हम अपने कर्म साथ लेकर जाते हैं, इसलिए कभी भी कर्म अच्छे करने चाहिए जो हमारे साथ जाते हैं। कितनी पॉजिटिव बात कही इन्होंने, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम कर्म सही करेंगे ना, तो फिर हम जाकर भी कोई व्यक्ति हमें छोड़कर भी जाए तो उसका वो खालीपन हमेशा भरा रहेगा, उसकी यादों से, उसके कार्यकर्तों से, है ना।
1: और यही हमारे पास एक ऑप्शन भी है कि जब कोई जाए तो फिर उसकी यादें ही हमारे साथ रहती हैं, और फिर हमें उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो कुदरत भी नहीं देती।
0: बिल्कुल।
1: तो इसी के साथ हमारे पास एक और मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है कि खाली का अर्थ है रिक्तता, जो स्थान बिल्कुल रिक्त हो, जिसमें कुछ भी नहीं हो, खालीपन हो। खाली का अर्थ है जब देखा जाए तो ये संसार ही खाली है, खाली डब्बा, खाली बोतल, और मेरे यार खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार, खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपने खाली शब्द से पूछा है, तो अब कोई घर खाली कर देता है, कोई मकान खाली कर देता है, कोई दुकान खाली कर देता है, कोई दिमाग ही खाली कर देता है, और कोई जेब खाली कर देता है। खाली सिर्फ शून्य नहीं होता, खालीपन अच्छा भी नहीं लगता। किसी में अगर परिपूर्णता हो, पूर्णता का एहसास हो, तब अच्छा लगता है। बाकी खालीपन निरसता है का एहसास कराता है, इसलिए खाली को नज़रअंदाज करें, अपने परिपूर्ण करें अच्छी आदतों से, अच्छे विचारों से, अच्छे व्यवहार से। जिंदगी में कोई खालीपन नहीं रह जाएगा। भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहर।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही है, और हमें ये सोचना भी चाहिए कि एक पॉजिटिव वाइब रखनी चाहिए। खाली वो करें जो आपकी बैड मेमोरीज हैं, जो आपकी बुरी आदतें हैं, वो अपने अंदर से खाली करें, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव होने लगती हैं।
1: खैर नंदनी, मैं तुम्हारी बात को रोक कर एक फनी सा किस्सा सुनाऊं?
0: बिल्कुल।
1: हाँ, तो हुआ ये कि अभी ना हमारे कजिन की शादी हो रही है, तो उसका रिश्ता हो गया, तो जिस लड़की से उनका रिश्ता हुआ है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी है, और हमें ऐसा लग रहा था कि वो उनको हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते। तो हमने पूछा कि भाई आपने वहां पर ऐसा क्या किया कि आप उनके मम्मी पापा आपके लिए तैयार हो गए, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने? तो आंटी ने हमें बताया कि जी हमने तो कुछ नहीं करा, बस इसने उन्हें सलाम किया था, और वो जो आंटी है उस लड़की की मम्मी, वो इसके सलाम पर फिदा हो गई। हमने कहा भाई सलाम तो हम भी करते हैं, हम पे तो नहीं हो रहा कोई ऐसे फिदा। तो उन्होंने कहा बस खाली सलाम ही किया था। तो देखिए खाली खाली सलाम में भी कितना कुछ हो जाता है, तो खाली दुआ प्यार सलाम करते रहना चाहिए, हो सकता है कि हमारी जो ख्वाहिशें हैं, जो ख्वाब हैं, वो पूरे हो जाएं।

0: तो दोस्तों हमारा जो इस सेगमेंट का आखिरी मैसेज हमारे पास आया है वो है मुजफ्फरनगर से इंदु राठी जी का। ये कहती हैं, खाली तो कुछ भी नहीं होता, अगर खाली होता है तो भर दिया जाता है, जो भरा हुआ है उसे खाली भी किया जाता है, ये ज़रूरत की बात है। जैसे अब हमारे बच्चे बाहर जा चुके हैं, घर खाली रहता है, सुनसान रहता है, तो मैं तो इसको कैसे भरती हूँ, इसको संगीत से भरती हूँ, रेडियो चलाकर भरती हूँ, मेरे दिमाग में थेरेपी भी होती रहती। कितनी अच्छी अच्छी बात कही इन्होंने। एक तो रेडियो सुनती है, म्यूज़िक सुनती है, जो अपने आप में एक हीलिंग एक्टिविटी है। ऊपर से इन्होंने थेरेपी का जिक्र किया है, जो कि आज की डेट में बहुत ज़रूरत है साइकोलॉजी की फील्ड की या काउंसलिंग की फील्ड की। तो अगर आप ओपन हैं उस चीज़ को लेकर तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसको आप स्प्रेड भी करें, इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर भी करें कि कोई ये कलंक की बात नहीं है अगर आप दिमागी ट्रीट के लिए कहीं जाते हैं, या अपने आप भी कोई ऐसी टेक्निक लगते हैं
1: जी। और साथ साथ इस बात पर भी ध्यान दें कि बूझो तो जाने का सवाल हमारा था, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
0: मनाया जाता है जी 29 अगस्त को, और हमारे सही जवाब देने वाले जितने भी लोग हैं उनका नाम है धर्मेंद्र छीपा, राष्ट्रपाल गजबीय, जॉन डिकेस्ट्रो, अनिल विनोचा, नंद कुमार ठाकुर, और हैं जी बी कमल, और हैं ताज अंसारी, गुरमी

0: सिंह मीता, आसिफ चौधरी, दिनेश वर्मा, इरशाद अहमद और जी हैं बगावत चौबे लाडला जी, राघव बघेल, मसरूर हसन, दिग्ध दर्शन गौड़ ये, और हमारे साथ है रितु जायसवाल, दिलशाद हुसैन, दुर्गा राम साहू, सुदर्शन शाह।
1: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा की निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
0: हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि हमने अभी भी आपको बताया और आपको बता देते हैं आपके मैसेज आप हमें कर सकें, हमारा नंबर है 9457078288। और साथ ही दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ढेर सारे जो फॉलो हमारे पास आते हैं तो हमें खुशी होती है, और दूसरी फिर हमारी जो अपडेट्स होती हैं वो आपके पास टाइमली पहुँच जा सकती है। जैसे कि अभी वॉकथन हुआ हमारा, आप सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए और कुछ हमारे साथ लाइव आकर जुड़े, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हमारे सोशल मीडिया पेज पर आप बने रहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का हमारा एक कॉमन हैंडल है ताकि आप इजीली उसको सर्च कर सकें, वो है आकाशवाणी नजीबाबाद। आप ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बस प्यार देते जाइए आकाशवाणी को, आकाशवाणी नजीबाबाद को, और दीजिए आप कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति आपकी साथी नंदिनी को
1: और यूसुफ अजैदी को। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है।

0: खान ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सब बहन भाइयों को आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम राम। तो प्रमोद भाई।
1: हाँ झुमरू भैया।
0: भाई कैसे हाल चाल है? सब राजी खुशी?
1: भैया बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तुम बताओ भैया सब ठीक तो?
0: बिल्कुल भैया, हम भी ठीक ठाक हैं और भैया खेती बाड़ी भी ठीक ठाक चल रही है। और भाई उम्मीद करते हैं कि हमारे बहन भाई भी जो सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे।
1: बिल्कुल भैया, देखो सब ठीक ठाक होंगे। और भैया खेती बाड़ी के काम में तो देखो दिन रात लगना ही पड़े करे। किसान भाई भी भैया अपने काम धाम में लगे ही होंगे।
0: भाई देखो काम धाम में हमारे भाई लगे हुए हैं। और भैया हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है भैया वो है गन्ना बाहुल्य क्षेत्र।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और हमारे सब बहन भाई जो इस टाइम जो भैया गन्ने की देखभाली में लगे हुए हैं, निकाय गुड़ाई में लगे हुए हैं और भैया जल प्रबंधन में लगे हुए हैं। और भाई आजकल तो मौसम भी भैया बहुत साथ दे रहा।
1: हाँ भैया देखो मौसम साथ भी दे रहा, कभी बारिश हो जा और भैया एकदम से धूप निकल जा। देखो भाई मौसम में जो ये उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा, भाई इस उतार चढ़ाव का हमारे स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ जाएगा या पड़ने को होगा भैया।
0: अब देखो भाई ऐसा हो जा कि जैसे मान लो अचानक से बारिश आ जाओ।
1: हाँ।
0: और भैया खेती बाड़ी में हम काम कर रहे हैं।
1: हाँ।
0: और भाई खेती बाड़ी का काम हो मेहनत का।
1: जी जी।
0: और भैया मान लो पसीना आ रहा है और अचानक से बारिश आ जाओ
1: जी,
0: तो भैया ऐसे में भीग जाने से भैया जो है खांसी जुकाम नजला बुखार हो जाए कर।
1: यही तो हम कह रहे हैं भैया कि देखो ये इस उतार चढ़ाव में भाई हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
0: और भैया जो हम गेहूं काटने के बाद में गन्ने की बुआई हमारे भाई करते हैं ना भैया, तो कुछ भाइयों की बुआई भी रह रही है। और भैया पीछे बारिश हो गई थी तो भैया बुआई जो लेट हो गई है। और अब जब फिर भैया आज देखो थोड़ी सी हल्की बारिश हुई है,
1: कहीं हल्की हो गई कहीं तेज भी हो गई भैया,
0: तो भाई इस वजह से जिन भाइयों की बुआई गन्ने की रह रही है तो भैया वो अभी नहीं हो पा रही है। और भैया अब हमारी बुआई लेट हो रही ज्यादा हो।
1: देखो भाई हम तो एक ही बात कहेंगे कि जो काम टाइम से होए करे वो भैया

0: टाइम का ना होता
1: ना भैया।
0: इसलिए भैया गन्ने की जो बुआई है वो बहुत लेट हो गई। अब तो भाई अगर किसान भाई अपने इन खेतों में कोई दूसरी फसल बो दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल भाई आपकी बात सही है। और देखो भैया बातचीत हम करेंगे
0: हाँ।
1: कि हमारे किसान भाई खाली खेतों में कौन सी फसल की बुआई कर सके
0: जी, जी, जी।
1: और भैया और हम जो है क्या क्या काम हमारे हो सकते हैं खाली खेतों में
0: हाँ।
1: तो भाई यू बातचीत होगी। लेकिन अभी तो भैया हमें एक महत्वपूर्ण काम करना है भैया।
0: बिल्कुल भैया देखो आज दिन तो याद आ ही रहा होगा।
1: अरे भैया मंगलवार का दिन है।
0: मंगलवार का दिन है और भैया अब हमारे किसान भाई प्रत्येक मंगलवार को सुन रहे हैं बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
1: बिल्कुल। और भैया इसका दूसरा पाठ हम लेकर आ गए हैं क्योंकि भैया पिछले मंगलवार से यानी कि 5 मई से वो पाठशाला शुरू हुई है
0: जी जी जी
1: और आज भैया इसका दूसरा पाठ हम लेकर आ गए हैं। तो मेरी बात तो भैया मानो तुम अगर
0: हाँ
1: तो बातचीत को तो दो स्टैंप विराम
0: ठीक है
1: और भाइयों को सुनवाते हैं पाठशाला।
0: तो ठीक है भैया आओ सुनते हैं बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का पाठ नंबर 2।
1: ठीक है भैया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
1: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
3: अरे मास्टर जी।
2: हाँ भैया।
3: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
2: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
3: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है
2: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
3: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
4: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
5: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती,
6: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
1: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में। और इस पाठशाला के साथ मैं हूँ आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
0: और भैया मैं हूँ आपका भाई प्रमोद सिंह।
1: तो भाई देखो इस पाठशाला का जो दूसरा पाठ लेकर हम आ गए हैं।
0: बिल्कुल, और भैया देखो बासमती धान की खेती के संबंध में इस पाठशाला में जानकारी दी जा रही है और भैया बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम आगे भी देंगे इस पाठशाला में।
1: भाई देखो बासमती का नाम सुनते ही भैया यू समझ लो कि खुशबूदार लंबा मुलायम सा चावल जो ध्यान में आ जा है एकदम।
0: हमें तो ऐसा लग रहा है भैया कि मुंह में पानी अभी से ही आने ही लगा।
1: बिल्कुल।
0: खैर भैया बासमती की खुशबू और बासमती का नाम ही बहुत होता है और भैया बासमती की खेती अच्छी तरीके से करनी बहुत जरूरी होती है।
1: भाई देखो बासमती की खेती आप यूँ समझ लो कि भैया बासमती धान बासमती चावल केवल भैया ज्यादातर भैया हमारे ही देश में उगाया जाता है।
0: हाँ हाँ झुमरू भैया ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो भाई जब हम ही इस बासमती धान की खेती कर सकते हैं तो भैया फिर तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से करनी चाहिए ताकि बासमती की खुशबू पूरे विश्व में फैल सके।
1: बिल्कुल। तो भाई देखो सीधी सी बात यह है कि हमारे किसान भाई पहले भैया नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद जब भैया हमारी नर्सरी रोपाई के योग्य हो जाती है
0: जी,
1: तो भैया फिर हम उसकी रोपाई करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद भैया हम जो है बासमती को लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन भैया इसके साथ ही जहां पर भैया पानी की कमी है, श्रमिकों की भी कमी है,
0: हाँ,
1: तो भैया ऐसे स्थानों पर ऐसे खेतों में हम बासमती धान की सीधी बुआई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखो भैया बासमती धान की सीधी बुआई करके किसान भाई समय और श्रम दोनों बचा सकते हैं।
1: और मैं देखो हमारे किसान भाइयों को याद होगा कि भैया पहले जब हम धान लगाते थे भैया वो लाल वाला धान जिसके भैया हम रोटी खाया करते थे,
0: हाँ, हाँ,
1: तो उसकी सीधी बुआई होती।
0: हाँ।
1: यानी कि भैया हमने खेत को तैयार करा, खेत में पानी भरा और हमने पाटा लगाया और भैया पाटा लगाने के बाद में भैया हम जैसे ही पानी हमारा शांत हो जाता तो फिर हम सीधे भैया उसमें धान की बुआई होती हमारी।
0: बिल्कुल।
1: और उसमें हम अलग से पौध उखाड़ को रोपाई करने की आवश्यकता नहीं रहती भैया।
0: तो भैया देखो वैसे ही बासमती धान की भी सीधी बुआई कर सके हैं।
1: तो भाई देखो इस बारे में तो पूरी जानकारी होनी चाहिए,
0: हाँ,
1: कि किस तरीके से हमारे किसान भाई धान की सीधी बुआई करेंगे, कैसे खेत को तैयार करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, कितने बीज की मात्रा हमें आवश्यक रहेगी। तो भाई ये ऐसी तकनीकी जानकारी है जो कि हमारे बहन भाइयों को होनी चाहिए।
0: और भैया देखो आज के इस पाठ में हम यही जानकारी तो लेके आए हैं।
1: और भाई जानकारी कौन दे रहे हैं?
0: देखो भैया बासमती धान की सीधी बुआई के संबंध में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रमोद।

0: कुमार तोमर, जो कि भैया वैज्ञानिक अधिकारी हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में।
1: तो भाई जब ऐसी बात है तो भैया डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर भाई थारी बगल में को बैठे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, बातचीत तमी कर लो भैया।
0: ठीक है भैया, डॉक्टर साहब से बातचीत हम ही करो ले हैं।
1: तो भाई आओ सुनते हैं यो बातचीत।
0: तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद प्रमोद जी, और सभी किसान भाइयों को मेरा एपिडा और बीईडीएफ की तरफ से नमस्कार।
0: देखिए डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर जी, जो आज हम अपने इस बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में आज हम अपने किसान भाइयों के बीच में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे जो किसान भाई बहन हैं वो वैसे तो धान की बुआई नर्सरी लगाकर करते हैं, नर्सरी की रोपाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान भाई बहन हैं जो कि धान की सीधी बुआई करते हैं
2: जी।
0: तो धान की सीधी बुआई, विशेष रूप से बासमती धान की सीधी बुआई की अगर बात की जाए, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए?
2: प्रमोद जी, बासमती धान की सीधी बिजाई की जरूरत वहाँ ज्यादा पड़ने लगी है
0: जी,
2: जहाँ पर लेबर की समस्या है, क्योंकि किसान भाई को समय पर लेबर नहीं मिलती, उनकी रोपाई लेट हो जाती है तो उनका उत्पादन घटता है। दूसरा वहाँ पर भी है जहाँ पर पानी की समस्या है, कि पानी की उपलब्धता ना होने से रोपाई करने के बाद कई बार किसान की फसलें सूखने लगती है
0: जी,
2: समय से पानी नहीं मिलता, तो वहाँ पर भी सीधी बिजाई कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो देखिए ये तो आपने वहाँ बताया कि हमारे किसान भाइयों को किन परिस्थितियों में धान की सीधी बुआई करने की जरूरत पड़ती है। अब अगर हमारे किसान भाई बासमती धान बोना चाह रहे हैं, उसकी भी सीधी बुआई अगर वो करना चाह रहे हैं, तो फिर हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये बात आएगी कि भाई मुझे कौन सी ऐसी प्रजाति है बासमती की जिसको सीधी बुआई करके अच्छा उत्पादन उससे हम प्राप्त कर लें। डॉक्टर साहब वो कौन कौन सी प्रजातियां बो सकते हैं किसान भाई?
2: प्रमोद जी, बासमती की सीधी बिजाई के लिए दो विशेष प्रजातियां बनाई गई हैं, पूसा बासमती 1979 जो पूसा बासमती 1121 का सुधार है, और एक बनाई गई है पूसा बासमती 1985 जो 1509 प्रजाति का सुधार है।
0: अच्छा,
2: ये दोनों प्रजाति विशेषकर सीधी बिजाई के लिए बनाई गई हैं, लेकिन जो किसान भाई पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718 और 1885 की भी सीधी बिजाई करना चाहते हैं तो वो इनके भी सीधी बिजाई कर सकते हैं।
0: अच्छा, आपने बताया डॉक्टर साहब कि अगर आप बासमती धान की सीधी बुआई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए दो प्रजातियां बनाई गई हैं, एक तो 1979 और दूसरी है 1985
2: जी।
0: इन प्रजातियों को सीधी बुआई के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इनके अलावा भी अगर किसान भाई बासमती की जो दूसरी प्रजातियां हैं उनको बोना चाहते हैं तो उसकी बुआई वो कर सकते हैं। तो इसकी बिजाई करने के लिए कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं डॉक्टर साहब?
2: हाँ, यदि हमारी जो दो प्रजातियां सीधी बिजाई के लिए बनाई गई हैं उनके लिए एक विशेष खरपतवार नाशी रिकमेंड है एमिजा थियापर।
0: अच्छा,
2: उन दोनों प्रजातियों में सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है बुआई के करीबन 15 से 20 दिन के बीच में।
0: जी जी जी।
2: लेकिन यदि आपने सीधी बिजाई में अन्य प्रजातियों की बुआई की गई है तो उसमें वीडी साइड के लिए खरपतवार नाशी के लिए एमिजा थापर बिल्कुल नहीं लगाना है।
0: अच्छा,
2: उसके लिए बिस्पायरिक पैक सोडियम करके एक साल्ट आता है जिसको नोमनी गोल्ड के नाम से किसान भाई जानते हैं, तो उसका एप्लीकेशन करना होता है।
0: अच्छा,
2: ये विशेष सावधानी सीधी बिजाई में प्रजातियों के चुनाव के लिए ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम यदि दोनों प्रजातियां लगा रहे हैं पूसा बासमती 1979 और 1985 तो हमें एमिजा थियापर का स्प्रे करना होगा, और अन्य प्रजातियां ले रहे हैं तो वहाँ बिस्पायरिक पैक सोडियम का
0: इस्तेमाल,
2: वो भी बुआई के 15 से 20 दिन के बीच में बाद में।
0: जी जी जी। इसका मतलब तो डॉक्टर साहब ये हो जाता है कि जो विशेष प्रजातियां दो तैयार की गई हैं उनमें कुछ और खरपतवार उगते हैं, और जो दूसरी प्रजातियां किसान भाई उगा रहे हैं तो उनमें कुछ और खरपतवार उगते होंगे, तो उनका नियंत्रण करने के लिए अलग अलग खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करेंगे किसान भाई?
2: क्या होता है ना, सीधी बिजाई में खरपतवार बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, और कई बार धान के अन्य प्रजातियों के और धान के जंगली धान के भी पेड़ उसमें जम जाते हैं, तो जो एमिजा थियापर है वो सिर्फ सिलेक्टेड प्रजाति को छोड़ के
0: अच्छा
2: बाकी सबको खत्म कर देती है।
0: अच्छा, तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि अगर हम धान की सीधी बुआई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखने की

0: जरूरत होती है। इसके लिए क्या डॉक्टर साहब कोई खेत विशेष तकनीक से तैयार करना पड़ेगा हमें?
1: हाँ, सीधी बिजाई के लिए आप रवि सीजन की फसल कटने के बाद खेत की अच्छे से जुताई लेवलिंग करके
0: जी
1: खेत को तैयार कर लें।
0: ठीक।
1: इसमें दो विधि अपना सकते हैं किसान भाई, एक तरबतर और एक सूखी। तरबतर में क्या होगा, जब आपने लेवलिंग वगैरह कर दिया तो उसके बाद में प्लेवट करेंगे, प्लेवट जब आउट पे आ जाएगी तो उसकी अच्छे से जुताई करके हम फील्ड तैयार कर लेंगे।
0: जी।
1: उसमें सावधानी ये बरतनी है कि यदि आप तरबतर विधि में बुआई कर रहे हैं सीधी बिजाई, तो वो धूप में ना करें,
0: अच्छा।
1: सुबह करें ताकि नमी खेत से ना उड़े। और उसमें जो हम बीज डालेंगे वो बीज भी थोड़ा सा 8 से 10 घंटे भिगो के और उसको हल्की सी हवा में रख दे ताकि उसकी ऊपर की नमी हट जाए। और उसको उपचारित करना चाहे तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा हरजेनियम से आप कर सकते हैं ताकि आपका बीज उपचार भी हो जाए।
0: मतलब उसको बीज को उपचारित करके ही हमें बोना चाहिए, वैसे नहीं बोना चाहिए, नहीं तो रोग जनित जो रोग होते हैं वो लगने की संभावना रहती
1: बिल्कुल
0: है। अच्छा। तो एक तो आपने बताया कि हमें जो इनकी बिजाई करनी है और तरबतर विधि से अगर करनी है तो वो सुबह के समय करनी अच्छी रहती है,
1: हाँ जी।
0: और अगर सूखी बिजाई करना चाह रहे हैं किसान भाई?
1: तो सूखी बिजाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आप अपना खेत को अच्छे से तैयार करिए, बीज को उपचारित करिए और उसमें बुआई कर दीजिए। बुआई करने के बाद में आप उसमें पानी दे दें
0: अच्छा।
1: और पानी देने के बाद में जैसे ही पैर चिपकता है तो पेंडामैथिलिन एक वीडीसाइड आता है जो घास जमने से पहले यदि उसको कर दिया जाता है तो उसके बाद में घास जम के नहीं आती।
0: अच्छा, तो उस समय हमें खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी कर देना
1: हाँ,
0: चाहिए।
1: दोनों में तरबतर में भी कर सकते हैं क्योंकि तरबतर में बुआई के बाद कर दें और सूखी बिजाई में पानी देने के बाद कर दें जैसे पैर चिपके।
0: देखिए डॉक्टर साहब, धान की जो खेती है किसान भाई करते हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत तो ज़्यादा पड़ती ही है। जैसे कि सामान्य रूप से हमारे किसान भाई नर्सरी लगाते हैं, रोपाई करते हैं, उसमें जब हम पानी लगाते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता ही है। लेकिन जो ये हम सीधी बिजाई कर रहे हैं तो इसमें उतने ही पानी की ज़रूरत पड़ती है कि कम की पड़ती है?
1: नहीं, इसमें कम पानी की बचत करने के लिए सीधी बिजाई लोग करने लगे। दो चीजों की बचत होती है, लेबर की और पानी की।
0: जी।
1: आप इसमें पानी ऐसे देंगे जैसे आप नॉर्मल गेहूं में देते हैं, नमी
0: अच्छा
1: बनाए रखेंगे,
0: अच्छा
1: तो भर के नहीं रखने की जरूरत होगी क्योंकि भर के रखने के लिए आपने उधर इसमें वीडीसाइड इस्तेमाल करेंगे, वीड इसको खत्म कर देंगे।
0: हाँ
1: शुरुआत के जो आम धान है जिनको हम रोपाई करके लगाते हैं उसमें पहले 30 दिन पानी को बनाए रखने का इसलिए बोलते हैं ताकि उसमें वीड न पनपे, घास
0: जी
1: ना हो।
0: हाँ।
1: और यहाँ हम एक बार बुआई के तुरंत बाद वीडीसाइड डाल रहे हैं, फिर जैसे 3 से 4 पत्ती की घास हो जाती है लगभग वो 15 से 20 दिन में हो जाएगी तो उस समय वीडीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो फिर हमें पानी भर के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी भर के रखना भी है तो जब आपकी बूट अवस्था आती है, जब आपकी बाली बनने को होती है, उस समय पानी बनाए रखे, उसमें भी पूरा भर के ना रखे, 5 सेंटीमीटर पानी आप बनाए रखेंगे तो आपका उत्पादन पूरा मिलेगा।
0: अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें अपनी खेती की लागत को घटाना है तो धान की खेती करते समय हमें इस विधि को अपनाना अच्छा रहेगा। अब डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें उर्वरकों के प्रबंधन की, क्योंकि किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें खाद उर्वरक तो डालने ही पड़ते हैं, तो इन उर्वरकों का जो प्रबंधन हम करेंगे, जो हम इसमें डालेंगे, तो कैसे डालेंगे उर्वरक?
1: उर्वरक के लिए जो नॉर्मल है जैसे हम आम धान को करते हैं उसमें इस तरह से यूज कर सकते हैं। पहले आप उसमें यदि आपके पास गोबर की खाद है तो गोबर की खाद डालें,
0: जी
1: खेत की लेवलिंग वगैरह करने से पहले ही खेत में अच्छे से मिला दें ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। जो लोग हरी खाद कर सकते हैं वो हरी खाद करके भी मिला सकते हैं
0: अच्छा।
1: ताकि वो फिर उसमें हरी खाद को मिला के पानी दे दे, जब पलेवट पे आए तब उसमें आप भी बुआई कर सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: सूखी विधि में भी यह है कि आप FYM गोबर की खाद है उसको पहले मिला के उस खेत में तैयार कर लें ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए।
0: अच्छा।
1: बाकी यदि NPK आप देना चाहते हैं, यदि आम भाषा में हम बात करें तो लगभग 120 ग्राम नाइट्रोजन वो यूरिया बहुत होता है एक एकड़ के लिए, जिसको 3 बार में किसान बराबर बराबर मात्रा में बांटकर चौथे छठे और 9वें सप्ताह में दे सकता है।
0: अच्छा।
1: DAP की 30 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ काफ़ी होती है, पोटाश की 20 किलोग्राम मात्रा काफ़ी होती है,
0: जी
1: और यदि आपको NPK का कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है 12 32 16 तो 60 किलोग्राम NPK को प्रति एकड़ के हिसाब से हम बुआई के समय दे सकते हैं।
0: अच्छा। क्या बुआई के बाद भी इनकी

0: जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारी फसल बहुत अच्छी अवस्था में खड़ी होती है, बालियां बनती हैं, दाना बनता है, उस अवस्था में भी हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा?
1: यदि आपकी फसल थोड़ा सा रुक के चल रही है, शो कर रही है।

0: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें किस तरीके से इन उर्वरकों का इस्तेमाल करना है और कैसे हमें अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेना है। यहाँ पर एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि बासमती धान की जब खेती किसान भाई करते हैं तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो निर्यात के लिए करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बासमती धान की सीधी बुआई की। तो सीधी बुआई करके जो किसान भाई बासमती धान उगा रहे हैं, वो निर्यात करने के लिए उसको उगा रहे हैं, तो वो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे?
1: सीधी बिजाई में किसान भाई रोग और कीट दोनों कम लगते हैं, क्योंकि इसमें पानी आप लिमिटेड मात्रा में देते हैं।
0: जी जी जी
1: पानी ज्यादा देने से ही रोग और कीड़ा बढ़ता है। दूसरा, यदि आप नत्रजन का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करते हैं तो भी रोग और कीड़ा बढ़ता है।
0: अच्छा,
1: तो DSR में हम उन दोनों पानी और फर्टिलाइजर दोनों को संतुलित मात्रा में दे रहे हैं, इसलिए हमारा जो बासमती पैदा होगा वो रसायन अवशेष मुक्त होगा। और इसके लिए भी बीच बीच में हम लोग जागरूक करते रहते हैं कि किसान भाई उन्हीं पेस्टिसाइड का, उन्हीं इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें जो वैज्ञानिक के द्वारा रिकमेंडेड है, और उनकी सही मात्रा सही समय पर सही घोल बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो उनका रसायन अवशेष आपके उत्पाद के ऊपर नहीं रहेगा। जो आप पैदा करेंगे वो निर्यात योग्य बासमती होगा।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने आज हमारे सभी किसान भाई और बहनों को दी है डॉक्टर साहब। अंत में चलते चलते कोई विशेष बात आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे?
1: हाँ किसान भाइयों, यदि आप बासमती उगा रहे हैं तो आपको एक तो अपना डर छोड़ना पड़ेगा, दूसरा अपने मित्र कीटों की पहचान करनी पड़ेगी,
0: जी
1: क्योंकि यदि आपने अपने मित्र कीटों की पहचान करना शुरू कर दिया तो बहुत सारा रसायन आप बचा सकते हैं, क्योंकि आपके खेत में दिखने वाले सभी कीट आपके दुश्मन नहीं होते, उसमें से लगभग 70% आपके मित्र होते हैं,
0: जी
1: और आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला रसायन आपके मित्रों को मारता है और फिर आपके दुश्मन कीट आपकी फसल को चौपट कर देते हैं।
0: जी
1: इसलिए आप अपने मित्र कीटों को पहचानना शुरू करें।
0: जी तो डॉक्टर साहब, आज आपने बासमती धान की सीधी बुआई के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने बताया कि हमें किस खेत में किस तरीके से बासमती धान की कौन सी प्रजातियों को बोना है और कैसे हमें अपनी फसल की देखभाल करनी है। कुल मिलाकर बात सामने ये आई कि अगर हम समय से सही मात्रा में सही तरीके से खेती करेंगे तो हम अपनी बासमती की खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद प्रमोद जी, और सभी किसान भाइयों का BDF एपीडा की तरफ से नमस्कार।
2: बासमती धान की सीधी बुआई, अभी इस बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर, जो कि वैज्ञानिक अधिकारी हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में। और हमारे प्रमोद भैया ने इन सब बहुत ही बढ़िया बातचीत करी है।
0: अब देखो झुमरू भैया।
2: हाँ भैया।
0: डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर जी ने बासमती धान की सीधी बुआई के संबंध में जो जानकारी दी, उसमें उन्होंने दो प्रजातियों के बारे में बताया कि भैया वैसे तो इसके लिए दो प्रजाति तैयार की गई हैं, और वैसे किसान भाई और जो प्रजातियां हैं बासमती उनकी भी बो सकते हैं।
2: और भैया डॉक्टर साहब ने बताया कि भैया हमें अगर जहाँ पर पानी की कम उपलब्धता है ना भैया, और श्रम की भी हमारे पास में कम उपलब्धता है,
0: जी जी जी
2: तो भैया ऐसी जगहों पर भैया हम ऐसी परिस्थिति में धान की हम सीधी बुआई कर सकते हैं, जिसमें भैया हमारी पानी की भी बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है, और हम जो है बढ़िया उत्पादन इस तरीके से भी हम जो है ले सके। हाँ
0: बिल्कुल।
2: और डॉक्टर साहब ने बताया कि भैया ये जो इस तरीके से हम धान की बुआई करते हैं
0: जी,
2: या धान की खेती करते हैं, तो भैया इसमें घास फूस यानी कि भैया खरपतवार होने की आशंका ज्यादा रहती है ना भैया। तो इसके लिए भैया हमारे बहन भाइयों को निकाय गुड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर हम अच्छे तरीके से भैया निकाय गुड़ाई करते हैं तो भैया इससे हम उत्पादन में बढ़िया ले पाएंगे। साथ ही भैया जो हमारी धान की शुद्धता,
0: जी
2: जो प्रजाति की शुद्धता, वो भी भैया हमारी ठीक तरीके से बनी रहेगी।
0: बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो डॉक्टर साहब ने ये सारी बातें बताई दी हैं, और किसान भाई आगे भी बासमती धान के संबंध में जानकारी लेते रहेंगे।
2: तो भैया बासमती धान के बारे में तकनीकी जानकारी सुनने के लिए, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए सुनते रहो प्रत्येक मंगलवार को
3: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
4: अरे मास्टर जी।
5: हाँ भैया।
4: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
5: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
4: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है,
5: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
4: हाँ, देश

0: किसान किसान का मान बासमती धान।
1: किसान भाई, करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
3: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
4: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
0: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
4: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
0: तो अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला, इसका पाठ दो।
1: बिल्कुल, और भैया देखो, आज के पाठ में किसान भाइयों ने बहुत अच्छी जानकारी ली कि धान की सीधी बुआई वो कैसे कर सके हैं।
0: तो मैं देखो, बातचीत तो भाइयों से जारी है, लेकिन फिलहाल अभी सुनते हैं ये कुछ जरूरी संदेश।
1: ठीक है भैया।
5: पुलिस?
6: मिस सीमा
5: जी,
6: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
5: क्यों? लेकिन मैं
6: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
5: डिजिटल अरेस्ट?
6: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
5: इतने पैसे?
6: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
5: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा।
8: आरबीआई कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
1: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
10: देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती।
0: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
1: खुशहाली का नया प्रयोग।
11: किसान भाई, अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
0: तो भाई देखो, संदेश तो हमने सुन लिए।
1: बिल्कुल भैया, संदेश हमने सुन लिए, और भाई अभी हमारे खेत भी खाली पड़े।
0: भाई देखो, मौसम खरीफ का आ गया है।
1: हाँ हाँ।
0: और भैया, खाली खेतों में हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करने हैं, जिससे कि भैया हम अपने खेतों की जो हालत है भैया उसको ठीक कर सका, यानी कि भैया अपनी खेत की मिट्टी को स्वस्थ कर सका।
1: भाई वो तो सारे काम हम कर रही है। खेतों
0: से
1: ज्यादा उत्पादन लेने के लिए भैया हम उसमें मेहनत भी करें। मेहनत के साथ साथ उसमें भैया हम बहुत सारे खाद उर्वरक भी उसमें डाल रहे हैं
0: जी।
1: पर एक बात हमारी समझ में आज तक नहीं आई
0: कि
1: एक टाइम अच्छा उत्पादन अपने खेतों से लेने के लिए हम जो उसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी लागत लगा रहे हैं, भला हमारे खेत का भविष्य क्या होगा।
0: अब देखो भैया, जहां तक खेत के भविष्य की बात है, तो भैया हमें तो ऐसा लग रहा है कि भैया जिस तरीके से हम ये खाद डाल रहे हैं, रासायनिक खाद, भैया अगर ये इसी तरीके से इसकी बढ़भार होती रही, यानी कि हम मात्रा ज्यादा देते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे खेत बीमार हो जाएंगे, हमारे खेत की मिट्टी बिल्कुल बंजर हो जाएगी, और भैया हम फसल उत्पादन मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा।
1: सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। यो बात हमें सोचनी चाहिए कि भैया अपने खेतों को स्वस्थ हम कैसे रख सके हैं। अब देखो भाई, आजकल बहुत अच्छा टाइम चल रहा, क्योंकि अभी जैसे हम कह रहे हैं ना, खेत खाली पड़े हैं और भैया हमें उसमें धान की फसल लगानी या दलहनी फसलें बोनी है, तो भैया खेत तैयार करने से पहले अगर हम उसमें हरी खाद बो दें तो कैसा रहेगा?
0: भाई देखो, बहुत ही बढ़िया रहेगा, और यो कितनी उपयोगी है भैया इसे जानने के लिए हमारे किसान भाई एक काम कर सकते हैं। भैया वो काम ये हो कि भाई देखो, हमें थोड़ी सी अजलत उठानी पड़ेगी, हमारे भाई उसे बोलते हैं भैया ना।
1: हाँ।
0: तो काम हमें यो करना कि जो हमारे खाली खेत है
1: जी
0: भैया, हम उसकी मिट्टी की जांच करवाओ।
1: वो बहुत जरूरी
0: है ना भैया।
1: हाँ,
0: अरे
1: हाँ।
0: जरूरी तो है, लेकिन मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ भैया।
1: अच्छा भैया, वो क्या?
0: वो ये है कि भैया हम बुआई से पहले, हरी खाद की बुआई से पहले मिट्टी की जांच का काम करें।
1: ठीक।
0: और जब भैया हम हरी खाद को बो देंगे और फिर उसे गला देंगे, उसकी पलटाई हो जाएगी जब, तो अगर उसके बाद

0: हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो भैया हमें सीधा सीधा ये रिजल्ट मिल जाएगा भैया कि जो हमारे आंकड़े थे वो क्या कह रहे हैं भैया।
1: बिल्कुल ठीक आपने कहा। और वो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड होए करा है,
0: हाँ हाँ
1: जो भैया मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला से मिला है, अगर हम उसके आधार पर अपने खेतों में उर्वरकों का इस्तेमाल करें तो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी लागत कम हो जाएगी।
0: बिल्कुल
1: दूसरी बात यह है कि जो अंधाधुन तरीके से हम भैया उसमें ये खाद डालते चले जा रहे हैं, रासायनिक खाद की बात कर रहे हैं भैया हम, तो उससे जो खेत हमारे बंजर हो रहे हैं, खेत हमारे बीमार हो रहे हैं, वो बचे रहेंगे। और भैया यूं समझो कि उर्वरकों की सही तरीके से पूर्ति हम अपने खेतों में तभी करेंगे जब हमें पता होगा।
0: अब देखो भाई, एक तरफ तो हमारे खेत बंजर हो रहे हैं, दूसरी तरफ भैया हमारे जो भैया पैसा खर्च हो रहा है, और एक बात योगी भैया, जो ये हमारे रासायनिक उर्वरक हो, चाहे तो भैया यूरिया हो या DAP हो या NPK हो,
1: जी
0: भैया इन्हें विदेशों से मंगवाने के लिए हमारी सरकार को बहुत विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है।
1: सही बात है, सही बात है भैया। देखो तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें अपने भविष्य को संवारने के लिए भैया योजना बनानी पड़ेगी, अपने खेतों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए भैया हमें सोचना पड़ेगा। और भैया सोचना क्या है, देखो देशी खाद डालो, जैविक खाद का इस्तेमाल करो,
0: बिल्कुल,
1: और हरी खाद का टाइम आ रहा है भैया, हरी खाद बो दो
0: भाई। देखो टाइम चाहे कोई सा भी हो भाई, इस टाइम तो हम ढेंचा सा नहीं बो सकते हैं, और रवि के मौसम में भैया हम बरसीम बो सकते हैं या दलहन तिलहन की बुआई कर सकते
1: जी,
0: हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: ये हरी खाद वाली फसल अगर हमारे किसान भाई बोंगे तो बहुत ही कम खर्च में भैया हमारे खेतों की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी,
1: और भैया हमें रासायनिक खादों पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा।
0: बिल्कुल। तो भैया बातचीत हम भाइयों से कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी सुन लेते हैं ये कुछ जरूरी संदेश।
1: ठीक है भैया।

0: AIR at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: तो भाई देखो, संदेश तो हमने सुन लिए
10: भैया, संदेश हमने सुन लिए, बातचीत भी हम कर रहे हैं। पर भैया आज गीत संगीत के बारे में कुछ सोचोगे अकना?
9: भाई देखो, गीत संगीत की जहां तक बात है भैया, तो गीत संगीत जो हम मन प्रसन्न होता है और

0: खासकर भैया अगर जेब में पैसे हो तो फिर तो मन और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता
1: है। तो ठीक है भाई, देखो अब ऐसी एक ही रागनी सुनो ले।
0: ठीक है भैया।

0: कदर नहीं बिन पैसे के। तो भाई ने रागनी सुनी सेठ पाल आर्य साथी सा। और प्रमोद भाई,
1: भैया देखो रागनी तो बढ़िया सुन ली, हमारे सब भाइयों को पसंद आई होगी। ये चिट्ठी से लिए बैठे हैं भैया, इसमें क्या है?
0: भैया मौसम की चिट्ठियाँ। अच्छा? और हमें मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से।
1: भैया क्या कह रही हो चिट्ठी, कैसा रहेगा मौसम?
0: भैया चिट्ठी कह रही है कि भैया अगले 24 घंटों के दौरान,
1: अच्छा,
0: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक, बिजली गिरने, तेज आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना।
1: अच्छा मतलब भैया बारिश अभी आवेगी
0: अगले 24 घंटे तक भैया।
1: तो ठीक है भैया, हम तो अपने सब किसान भाई और बहनों को भैया यू ही कहेंगे कि वो अपने खेतों में मौसम को देख के ही काम करें, और भैया जब ज्यादा जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर जाएं।
0: बिल्कुल। तो भैया देखो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप इसमें क्या जानकारी सुनना चाहते हैं, तो भाई इसके लिए आप चिट्ठी जरूर लिखें। और चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है
1: कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र।

0: निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2 4 6 7 6 3।
1: तो भाई इस पते पर हमारे चिट्ठियों का इंतजार रहेगा, और भाई किसी वजह से अगर आप चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं तो भैया आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं।
0: भैया हमारा मोबाइल का नंबर है 94-570-78-288।
1: तो भाई इस मोबाइल नंबर पर आप अपना संदेश, आप अपनी चिट्ठी भेज सकते हैं। और देखो भैया 6:45 होने वाले हैं, और भैया आज के हमारे कार्यक्रम का समय संपन्न हो रहा है। तो भैया आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू
0: और भैया प्रमोद सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों
1: राम राम, राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है 90 साल बेमिसाल। रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में नारायण शर्मा से रेणु कोटनाला की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी नजीबाबाद ने एक वॉकेथन का आयोजन किया और इस वॉकेथन में बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े और इस इवेंट का, इस आयोजन का हिस्सा बने। ऐसे ही एक साथी हमारे साथ हैं, आपका परिचय आपसे जानना चाहेंगे हम।
2: नारायण शर्मा।
1: नारायण जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो आज का जो ये वॉकेथन था, आप इस पर किस तरह से जुड़े?
2: मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था आकाशवाणी की तरफ से ही कि आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं इस वॉकेथन के प्रोग्राम में, और मैं आज सुबह ही यहाँ पर वॉकेथन के प्रोग्राम में आया हूँ और मैंने यहाँ पर बल्कि पार्टिसिपेट भी किया है। और मैंने यहाँ पर जैसे कि लोगों को देखा, काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ जो है इकट्ठी हुई भी थी।
1: कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर?
2: अगर मैं सच सच बताऊं, मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर इस प्रोग्राम में काफी मजा आया। सुबह सुबह बेसिकली हम तो यहाँ पर शूट के लिए आए थे, लेकिन हमने जैसे कि यहाँ पर देखा कि काफी सारे लोग यहाँ पर मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और तो और मैंने देखा जो काफी एजिड लोग थे वो भी आकाशवाणी से जुड़कर वहां पर, काफी ज्यादा एजिड लोग भी वहां पर दौड़ लगा रहे थे। तो ये चीज मुझे देखकर काफी अच्छी लगी, जो बच्चे थे वो भी दौड़ रहे हैं और जो है जो बूढ़े लोग हैं थोड़े वो भी दौड़ रहे हैं और सब हर्षोल्लास से यहाँ पर मजे करते हुए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल नारायण, ये जो वॉकेथन था, ये भारत में जो रेडियो प्रसारण के 90 साल हुए हैं उसी उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट किया गया और पूरे महीने अभी ये जो सेलिब्रेशन चलता रहेगा। आपसे जानना चाहते हैं कि आप रेडियो सुनते हैं?
2: जी बेशक, बिल्कुल सुनते हैं।
1: कब से जुड़े हैं?
2: मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। जब हमारे दादाजी थे तो वो बचपन में जो है हम उनके साथ बैठकर ही रेडियो सुना करते थे। अब उस टाइम टीवी का इतना क्रेज नहीं था, रेडियो का बहुत ही ज्यादा क्रेज था, तो हम बचपन में अपने दादाजी के साथ बैठकर वहां पर रेडियो सुना करते थे। जब टीवी की कमेंट्री होती थी वहां पर चौके छक्के लगते थे, काफी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाया करती थी, तो हम उस टाइम वहां पर बैठकर उस रेडियो को बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया करते थे।
1: यानी आप तो उस समय बहुत छोटे रहे होंगे?
2: जी बिल्कुल, उस टाइम में बहुत ही ज्यादा छोटा था, तो काफी ज्यादा जो हमारे लोग थे, गली के दोस्त थे और जो है हमारे जितने रिलेटिव्स थे वो सारे साथ में बैठकर वहां पर एंजॉय करते थे और मैं छोटा सा था बिल्कुल, और रेडियो का जो बटन होता है वो घुमा घुमाकर हम चेक करते रहते थे, आवाज देखते थे, सिग्नल चेंज करते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वाकई वो पुराना दौर याद करके आप

0: होता है रहस्य, वो एक हॉरर प्रोग्राम होता है, तो उस हॉरर प्रोग्राम को सुनने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी रहती है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल की रहती है।
1: यानी आप युवाणी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं?
0: जी बिल्कुल।
1: रहस्य एक सेगमेंट आता है काफी हॉरर होता है
0: बहुत
1: ना? उसका अगर साउंड की भी बात करें तो
0: पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐसा रहता है, अगर आप रात के टाइम उसको देखेंगे तो अलग ही मजा आएगा।
1: हाँ बिल्कुल। और अच्छा देखिए ना नारायण, रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है कि जो आप काम कर रहे हैं तो भी आप उसको सुन सकते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और अब तो बहुत आसान हो गया है रेडियो सुनना, है ना?
0: बिल्कुल। आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं तो आप सुन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और तो और अपने फोन में भी आप सुन सकते हैं।
1: हाँ, मैं यही पर आना चाह रही थी कि अब तो जो है रेडियो का जो ऐप है न्यूज ऑन AIR, आप उस पे भी सुन सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप जब बाहर जाते हैं तो आप ऐप पर प्रोग्राम सुनते हैं?
0: बिल्कुल, मैं बेसिकली फोन से सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ
1: क्योंकि फोन हर वक्त होता है।
0: बिल्कुल, फोन हर वक्त साथ रहता है।
1: और अच्छा ऐप पर आने से ये भी फायदा हुआ कि वो फोन पर हम जो इधर उधर चले जाते थे ना उससे बहुत अच्छा है कि आप ऐप पर जाइए और सुनिए। अच्छा ये तो आपने बताया कि जो रहस्यमय प्रोग्राम्स हैं, है ना, उस तरह के प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, जो युवाणी में रहस्य आता है ये आपको पसंद है। इसके अलावा देखिए रेडियो पर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, फिल्म म्यूजिक आता है, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम आते हैं, खेल दर्पण आता है, और इसके अलावा जानकारी मनोरंजन से भरपूर और भी कार्यक्रम होते हैं। तो फिल्म म्यूजिक की अगर बात करें तो किस तरह का म्यूजिक आपको पसंद है?
0: म्यूजिक मुझे थोड़ा सा थ्रिल वाला म्यूजिक थोड़ा ज्यादा पसंद है, जैसे कि जिसमें बेस थोड़ी ज्यादा हो, उस टाइप का म्यूजिक थोड़ा मुझे ज्यादा पसंद है।
1: यानी वो जो कह सकते हैं
0: धूम धड़ाके वाला म्यूजिक।
1: बिल्कुल, युवा है आप तो बनता है धूम धड़ाके वाला म्यूजिक। लेकिन कभी कभी होता है ना कि जो है हम इस तरह के संगीत को सुन के थक भी जाते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: कभी कभी मन करता है कि कुछ सुकून भरा
0: कुछ इमोशनल सॉन्ग हो,
1: इमोशनल सॉन्ग्स हो, तो वो कभी सुने हैं आपने रेडियो पर?
0: काफी बार सुने हैं, अधिकतर रात के टाइम सुने हैं।
1: अच्छा रेडियो पर कौन सा जो सॉन्ग है जो जब कभी बजता है तो आप वॉल्यूम बढ़ा देते हैं?
0: अधिकतर जैसे कि अभी बारिश का मौसम था तो रिसेंटली एक गाना बजा था, कभी जो बादल बरसे, तो उस टाइम पे मैंने गाना सुना था तो मैंने उसकी वॉल्यूम एकदम बढ़ा दी थी, क्योंकि वो गाना बारिश के टाइम पर बजा और ऐसे टाइम पर बजा तो, और ऊपर से मेरा फेवरेट सॉन्ग था वो।
1: बिल्कुल श्रोताओं, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी आप सुन सकते हैं, आप काम कर रहे हैं। इवन हमारे बहुत सारे श्रोता में मैसेज करते हैं नारायण कि हम स्टडी करते हुए भी रेडियो की आवाज थोड़ा सा कम कर देते हैं और पढ़ते रहते हैं। अपनी दीवानगी के बारे में बताइए, रेडियो से जुड़ी हुई कुछ जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं।
0: रेडियो के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम तो बचपन से सुनते आए हैं रेडियो, अपने दादाजी के टाइम से सुनते आए हैं, और ऐसी बात नहीं है, आज भी हम रेडियो सुनते ही आ रहे हैं और अब भी रेडियो सुन ही रहे हैं। और आकाशवाणी रेडियो को मैं उसके 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि वो इसी तरह के प्रोग्राम और इवेंट्स कराते रहें, और 100 साल पूरे होने की खुशी में आशा करता हूँ कि इससे और ज्यादा बड़ा ग्रैंड यहाँ पर प्रोग्राम कराया जाएगा, और तब भी हम इसी तरह आकर यहाँ पर साथ में बैठेंगे और बातचीत करेंगे।
1: कुछ और मन में ख्याल आ रहा हो जो आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हो तो आप?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे आकाशवाणी में आके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ का जो स्टाफ नेचर था और जो है जो यहाँ के प्रोग्राम थे मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, कि मतलब जैसे कि हम अंदर आए, एंट्री ली, यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों ने मतलब बहुत ही अच्छे से बिहेव किया और अच्छे से बातचीत की, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ कर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा।
1: तो नारायण हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आज जैसे कि सोशल मीडिया का जमाना है लेकिन रेडियो 90 सालों से अपने श्रोताओं के दिलों पर तब भी राज करता था और आज भी राज करता है, आप क्या कहना चाहेंगे, ऑडियो और विजुअल में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है?
0: दोनों में अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि अगर हम वीडियो की बात करें तो हम वीडियो को कहीं भी चलते हुए या घूमते हुए हम वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम ऑडियो की बात करें तो अगर हम कहीं कार में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम किचन में काम कर रहे हैं या फिर हम कहीं भी जा रहे हैं तो ऑडियो को तो हम कहीं भी बैठकर आराम से सुन सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी है, वो किचन में जब काम करती हैं तो वहां पर रेडियो चलता रहता है, उसमें म्यूजिक बजते रहते हैं, तो वो चीज भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑडियो चलती रहती है, लेकिन हम किचन में काम करते करते हम वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन जो ऑडियो है वो हम वहाँ पर सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कि रेडियो ही वो एक ऐसा माध्यम है जिसको आप कहीं पर भी सुन सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि रेडियो किस तरह से दूसरी चीजों से ज्यादा बेहतर है?
0: हाँ बिल्कुल, रेडियो पर जितनी भी खबरें जाती हैं, अधिकतर जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी पे हमें क्या दिखाते हैं कि कोई भी खबर हो गई, एकदम सनसनी खबर आई, अब अगर उस खबर को कोई बच्चा देखेगा या फिर कोई बूढ़ा देखेगा तो

0: उस खबर को बहुत ही ज्यादा नमक मिर्च लगाकर वहां पर दिखाया जाता है
1: जी बिल्कुल
0: जैसे कि पहाड़ से गिरी गाड़ी, दो लोगों की मौत, इस तरह से दिखा देंगे, तीन लोग घायल, इस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन रेडियो पर अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो वहां पर बहुत ही ज्यादा सभ्य तरह से बताया जाता है कि पहाड़ से गिरी गाड़ी और दो लोग हुए घायल और वहीं दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो वहां पर बहुत ही ज्यादा विनम्र तरह से वहां पर बताया जाता है ताकि जो ऑडियंस है वो विचलित ना हो, वो घबराए ना, उनमें वो डर पैदा ना हो। तो क्योंकि जो एक रेडियो होता है, आकाशवाणी है, वो इस चीजों को बहुत ही ज्यादा एक लिमिट में रहकर बताता है ताकि जनता जो है, जो श्रोता जो है, वो घबराए ना।
1: बिल्कुल, और आकाशवाणी का उद्देश्य भी नारायण यही है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। कोई भी परेशान ना हो, रेडियो से ज्यादा हमारे श्रोता लाभ ले सके, मनोरंजन कर सके, आकाशवाणी का, रेडियो का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है। चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग भी आकाशवाणी सुने और रेडियो से जुड़े, तो क्योंकि जो हमारा पहले का समय था, पहले के समय में हम रेडियो सुनते थे, लेकिन आज के समय में लोग बाग जो हैं रेडियो से थोड़ा दूर हटते जा रहे हैं। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं तो लोग थोड़ा दूर हटते जा रहे हैं और यही चीज़ जो है उनके रिलेशन में या फिर उनकी फैमिली में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देती है। तो मैं यही मानना चाहूंगा कि जब तक आप, जैसे कि पहले के समय था जब लोग रेडियो सुनते थे तो पूरा का पूरा जो गांव होता था या फिर जो पूरी फैमिली होती थी वो एक जगह आकर बैठ जाती थी, तो उससे साथ बैठने का भी मौका मिलता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, तो मैं यही चाहूंगा कि वो दौर फिर से आए ताकि सब लोग रेडियो सुने।
1: चलिए नारायण जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से भी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायण शर्मा से रेणु कोटनाला की बातचीत, कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल के अंतर्गत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:55 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का ये गीत हमने लिया है फिल्म बेटा से। गायक स्वर है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण। शब्द रचना है समीर की और संगीत दिया है आनंद बख्शी ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। पेश है फिल्म हाथ की सफाई का एक गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में पेश है फिल्म मेरे हमसफर का एक गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने, शब्द रचना की है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज शाम 7:32 पर श्रोतानंद लेंगे ललित भूटानी की गायी गजलों का। कार्यक्रम मुलाकात के अंतर्गत रात्रि 9:30 पर सुखवीर यादव से शोभी शर्मा की बातचीत। राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण आप सुनेंगे रात्रि 10:00 हमारे लखनऊ केंद्र से। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल सवेरे 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा सवेरे 6:30 पर। चिंतन आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर। कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत मुकेश कुमार का काव्य पाठ सवेरे 6:45 पर। कल सुबह 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा गर्मी और लू से बचाव विषय पर। खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत कल सवेरे 7:10 पर जानकारी दी जाएगी उर्द मूंग और लोबिया की फसल में सामायिक कार्य विषय पर। जानकारी और मनोरंजन से ओतप्रोत कार्यक्रम सूरज के साथ साथ प्रातः 7:31 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सुबह 9:25 पर श्रोता आनंद लेंगे रजनी टॉक के गाए रुहेल खंडी लोकगीतों का बात आसपास की। यह कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 9:50 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर प्रातः 10:00। कल दिन में 12:05 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित ब्रज नारायण का सरोद पर बजाया राग मुल्तानी। आलाप विलंबित और द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध होगा और तबले पर संगत करेंगे सुखविंदर सिंह नामधारी। कार्यक्रम घर संसार का समय होगा दिन में 1:15 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत श्रोतानंद लेंगे भुंगर खान और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीतों का दिन में 1:45 पर। कल शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे कल शाम 5:15 पर। मुझे याद है जरा जरा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात्रि 10:30 पर। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम, प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित, आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी, पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि

0: का हालात सामान्य न हो, सोने की खरीद को टाले।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज असम में नव निर्वाचित एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मंत्रिमंडल के नव नियुक्त सदस्यों को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी को गंभीर हालत में SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चंदौली में बीते 24 घंटों में 3 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति को बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधी ने 24 घंटों में ट्रेन में यात्रा करने वाले 2 लोगों और अस्पताल में भर्ती एक महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में अपराधी ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की थी। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में आस्था और सेवा का संगम दिखाई दिया। जनपदों के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर रामकोट परिक्रमा में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। बिजनौर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रसाद बांटा। लखनऊ में भी बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अलीगंज के पुराने और नए हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर समेत अन्य मंदिरों को बड़े मंगल पर भव्य रूप से सजाया गया है। इन मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। दिन में तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। शहर भर में सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। भंडारों में प्रसाद वितरण के साथ शीतल पेय और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया। एक रिपोर्ट।
3: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। आज दोपहर जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
1: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान है।
4: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहाँ धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में हल्का बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ तेज हवाएं।

0: भी चल सकती है, उसका सबब जारी रहेगा कल के लिए। उसके बाद मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहाँ से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला कौशल विकास संस्थान है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत रामपुर में 15 दिवसीय विशेष शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटी कला कार्य से जुड़े कुम्हार और परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक कारीगर 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:32 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं ललित भूटानी की गाई गजल।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं ललित भुटानी की गाई गजलें। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में यह गजल।

ललित भुटानी की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। आइए सुनते हैं फिल्म बॉबी का ये गीत, जिसे आवाज दी है शैलेंद्र सिंह ने, शब्द रचना की है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कृष, ये है फिल्म का नाम और स्वर है सोनू निगम और श्रेया घोषाल के। गीत को लिखा है नासिर फराज ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म कृष का ये गीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। आइए सुनते हैं फिल्म हिना का ये गीत, जिसे स्वर दिए हैं लता मंगेशकर ने।

परदेस, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। इसी क्रम में पेश है फिल्म राज का ये गीत, जिसे स्वर दिया है अलका याग्निक और अभिजीत ने, शब्द रचना की है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कुमार शानू के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत फिल्म मोहरा के कुछ नगमे। श्रोता, 1994 में रिलीज हुई फिल्म मोहरा बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से एक है।

श्रोताओं, फिल्म मोहरा में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी को एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किया। दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन सीन शानदार थे।

श्रोताओं, फिल्म मोहरा के मोहरा 90 के दशक के बॉलीवुड का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो अपने संगीत, अभिनय और एक्शन के लिए आज भी याद की जाती है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये दमदार गीत।

0: पंकज उधास और साधना सरगम के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: लवली निगम सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले

0: जी, बहुत बड़ी बात है कि अगर हम बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं तो शायद वो हमारी पॉजिटिविटी का ही एक आयाम है।
1: जी
0: सुखबीर जी, इतना डाइवर्स आपकी बैकग्राउंड रही है, चूंकि एक गांव से आप ताल्लुक रखते हैं, गांव के बाद आपने हमें बताया, हमारे श्रोताओं को बताया कि किस तरीके से फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर उसके बाद में सिविल सर्विसेज के लिए जो तैयारी, जो कि आपके लिए बड़ा एक फ्रूटफुल समय रहा, बहुत सारी चीजें आपने उस समय से सीखी, उसके बाद फिर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में आपके रोल्स रहे हैं, फिर आज आप यहाँ शुगर मिल में जनरल मैनेजर के रूप में डेप्यूटेशन पर यहाँ पर है। क्या कोई ऐसी आकांक्षा मन में कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि, क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी सर्विस बाकी है, आप चाहते हैं कि वो पूरी हो?
1: देखिएगा, जैसे एक ध्येय वाक रहता है जीवन में, अगर आप संतुष्ट हो गए तो आपका विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है,
0: जी।
1: लेकिन आप इतने असंतुष्ट भी ना रहें कि आप बिल्कुल अपनी शांति खो दें
0: जी।
1: और अपना जो शांति का सुख और आनंद उससे वंचित हो जाए। तो आकांक्षाएं तो बहुत हैं, सबसे बड़ी आकांक्षाएं तो अब ये है कि जो मेरे पास है, मेरे पास वास्तव में, मैं आपको बताऊं कि जीवन का, आप जो कह रहे हैं, मैंने एक, मैं खुद में एक, मेरा जो एक पूरी गाथा है अभी तक की, जीवन का विकास है, वो बहुत वैविध्यपूर्ण रहा। मैंने अभावों से गुजरते हुए और अपना प्रभाव जो छोटा बहुत था लोगों के साथ में, वो करते हुए बहुत कुछ मतलब पाया है, और वही चीजें हैं कि आज भी आप यकीन मानिए मुझे काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि हम वो हैं जो हम सोचते हैं
0: जी।
1: तो मैं इस तरह का लोगों को एक मैसेज, जो मुझसे जुड़ते हैं, मैं उनसे इंटरेक्ट करके, और ये चीज जरूर लाना चाहता हूँ कि मैंने कई किताबें ऐसी पढ़ी थी जो हमारे रिचुअल्स में हैं। आप देख रहे हैं कि एक UBI ग्रुप होता है जो अपने आप को कहीं ना कहीं ये सोचता है कि सब चीजें फॉरेन की अच्छी हैं, मतलब उनकी सोच और समझ की बात हो सकती है कि क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में गहराई से चिंता नहीं कर पाया। तो मैं लोगों के साथ में, जिनसे मैं रूबरू होता हूँ, जिनसे मेरा साक्षात्कार होता है, मैं सबसे पहले तो उनसे यही कहता हूँ कि चीजें जो, जैसे कबीर साहब ने कहा कि वेद कतई कतई नहीं, झूठा झूठा जो ना विचार है, तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि आप सोच समझ के आगे बढ़िए। सोचिए कि कोई चीज मीडिया पे है, कोई चीज आपके फेसबुक पे है, कोई आप व्हाट्सएप पे है, ऑरकुट पे है, कहीं भी है, तो उसमें देखो कि सच्चाई कहाँ तक, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप सकारात्मक रहिए, आप सकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक लोगों से जुड़िए। तो आपने कहा कि आपकी इच्छा क्या, मेरी इच्छा, मैंने जैसे किताब एक पढ़ी था सीक्रेट, रहस्य करके उसकी हिंदी में, उन्हीं की एक पाई थी मैजिक जादू। होता यह है कि हम लोग करते क्या है कि आपने देखा, मैंने कंपटीशन के दौरान जो अनुभव किया, आपके आसपास एक बड़ा वर्ग होता है जो नेगेटिविटी से भरा होता
0: बिल्कुल
1: है। आप उन लोगों को खोजिए, हो सकता है आप जानते हो, मैं नहीं नकार सकता हूं, आपने देखा हो, आपने बात में सच्चाई होगी, लेकिन आप ऐसे लोगों को भी तो देख रहे होंगे जो आपके आसपास होंगे, आपके ग्रुप में होंगे, जो बिना किसी बहुत बड़ी बैकग्राउंड के, बिना किसी स्पेशल करेक्टर के उस चीज को अचीव कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि जो लोग इस तरह के थे वो लोग वहीं रह गए, और जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं कहता था 200 सीटें आई तो भाई 99 के लिए लड़िए, 10 आई तो 9 के लिए लड़िए, तो वो चीज करते ही करते हम तो कहीं ना कहीं चीजों को पा ही गए ना।
0: जी सही बात है।
1: तो वो जो था सीक्रेट का भी रहस्य यही है कि आपकी जो सोच है, और दूसरा, आप अगर आपके साथ कोई छोटा सा भी कर रहा है तो आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड जरूर करिए, कृतज्ञ जरूर होइए, और ये नेचर का नियम है कि आपको, नेचर अपने पास कुछ नहीं रखता, मैंने तो अपने जीवन में इतना महसूस किया है। सबको मैं संदेश देना चाहता हूं कि प्रकृति अपने पास कुछ नहीं रखती है, प्रकृति तो आप मानिए शीशे का घर है, आप जो चीज कर रहे हो उसी तेजी से रिफ्लेक्ट करके आपस को देगी, आप अच्छे विचार देंगे, अच्छे विचारों का फायदा ये होता है आपका सराउंडिंग्स भी अच्छा बनता है और आप खुद भी अच्छे बनते हैं। तो मैं तो यही करना चाहता हूं कि जितने लोगों से जहां, और इसीलिए जब भी आपका आमंत्रण मिलता है आकाशवाणी या कहीं से कहीं कोई मंच का कार्यक्रम, तो मैं इसलिए, मैं ये सोचता हूं कि अगर हमने 100 लोगों ने मुझे सुना, 100 में 2 लोगों में ही अगर परिवर्तन आया, क्योंकि मैं इतने लाइट माहौल में और कहीं ना कहीं ऐसी बातें करता हूं, कभी भारी बातें नहीं करता
0: जी।
1: कोई मतलब नहीं, आदमी भारी बातों से बहुत लदा पड़ा है
0: जी।
1: सकारात्मक बात करिए, हल्के फुल्के माहौल में बात करिए, लोगों का हमेशा ध्यान रखिए इस बात का कि आपके सामने जो है व्यक्ति वो आपके व्यवहार से छोटा महसूस न करे
0: जी। बिल्कुल।
1: तो मेरा बस यही चाह है कि जो मुझे सौंपा है ये मेरा सौभाग्य है, और आप मजिस्ट्रेसी में है, सबसे बड़ा सौभाग्य ये है, जैसे कहा जाता है कि राजा भगवान का अंश है और राजा का प्रतिनिधि मजिस्ट्रेट होता है, ईश्वर का अंश मजिस्ट्रेट होता है। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, देखिएगा हमारी नौकरी में जो कुछ भी हो या ना हो, आपके पास देखिए बहुत बड़ा इशू होता है जब आप डायस पे बैठे हैं, ठीक है आप किसी की मौत जिंदगी का फैसला करते, वो तो तत्कालिक हो गया, किसी व्यक्ति को फांसी लग गई, उसके घर वालों के लिए दुख का कारण, वो व्यक्ति गया, और आप सोचिए कि किसी की जीवन आपके सामने आता है, जमीन का मामला, आपके पास 100 बीघे जमीन का मामला भी हो सकता है और
0: एक
1: बीघे का, या 10 बिस्वा का भी, 100 बिस्वा का भी हो सकता है, लेकिन आप ये देखिएगा कि आज भी हिंदुस्तान में

0: जमीन जो है दो चीजों का प्रश्न है,
1: जी
0: एक तो उसकी मर्यादा है जमीन से,
1: जी
0: दूसरी उसकी जीविका है।,
1: है।
0: मैंने गोदान में पढ़ा था प्रेमचंद जी के में, गोदान में जो जो करैक्टर है होरी,
1: होरी जी,
0: तो उसके पास जमीन ज्यादा नहीं है, लेकिन एक जगह वो वार्ता कर रहा है घर में, कहता है ये मर्यादा है।
1: जी।
0: आप देखिए वो मर्यादा वास्तव में, किसी के पास 20 बीघा जमीन है यही देखिए पश्चिम में
1: जी,
0: तो उसका लड़का भी छोल करने चला जाएगा, उसकी पुत्रवधू, उसकी पत्नी भी, बहन भी, बेटी भी, लेकिन क्या आप सोचते हैं कभी वो दूसरे घर पे जाके मजूरी के लिए जा सकते हैं?
1: बिल्कुल नहीं जा।
0: वो इज्जत के साथ जाता अपने खेत पे काम करने के लिए, उसके स्वाभिमान है,
1: जी
0: मर्यादा है। और अगर हमने डिसीजन के दौरान थोड़े से प्रलोभन में या किसी चीज को मैंने पलट दिया, किसी दबाव से पलट दिया, तो आपने दो चीजें उसकी छीनी। हो सकता है कि उस पर उतनी जमीन रही हो, तो वो तो अगर उसका घर बना तो बेघर हो गया,
1: बिल्कुल,
0: उसकी जीविका चल रही थी तो वो बच्चे उसके दाने पानी को मोहताज हो गए,
1: जी एक पक्ष तो ये हुआ,
0: एक पक्ष तो हुआ। दूसरा उसकी देखिए सामाजिक मर्यादा धूमिल हो गई,
1: जी
0: उसकी हो सकता है लड़की की शादी टूट जाए उससे,
1: बिल्कुल।
0: तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा समाज में किस लिए सब चुनौतियां? आज अगर आप हम लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, खेती में मेहनत कर रहे हैं, व्यापार में मेहनत कर रहे हैं, या किसी कला क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो कारणों से करता है।
1: जी
0: और इन दो कारणों का परिणाम क्या होता है? व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिलती है।
1: जी
0: वो आत्मसंतुष्टि वो कहां से पाता है? कि जो उसने काम किया उसको समाज में उसमें प्रतिफलन हुआ, उसको फीडबैक क्या मिली,
1: रिकॉग्निशन मिला,
0: रिकॉग्निशन मिली।
1: जी जी
0: तो अगर ये चीजें आपको करने का आपको सौभाग्य दिया इस सिस्टम ने, इस समाज ने, तो आपके लिए इससे बड़ा और व्यवहार क्या हो सकता है? उसे आप अगर थोड़ा सा आप सिंसियर होकर करें, थोड़े से प्रलोभनों से बच के करें, तो आपको, मैंने तो यही महसूस किया कि लोग, अब पता नहीं, हो सकता है कि लोग, ये भी हो सकता है कि आपके थोड़ा सा जो आपको सम्मान मान पद मिला उसके रियाज से करते हो, लेकिन वो तो तब तक करना चाहिए जब तक आप उस जनपद में, मैं आपके बगल जनपद में यहाँ अमरोहा में SDM सदर रहा लगभग 2 साल, जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया लोगों ने वहीं के लोगों ने दिया। आप अगर एक कदम आगे बढ़ते तो वो लोग 5 कदम आपका सहयोग करने को तैयार। और आज भी वही स्थिति है, आज भी अगर दिन में नहीं तो वीक में 2-4 लोगों के कॉल्स आएंगे और 1-2 लोग मिलने आ जाते हैं। और कई लोगों ने, यहाँ के लोगों ने जो संभ्रांत लोग थे, वहां किसी मीटिंग में किसी बैठक में गए और आके वो मिलने आए मुझसे और कहा कि साहब मैं तो आपको नहीं समझ रहा था, जब मैं फला जगह गया वहां इतने भले लोग थे और उन्होंने कहा मेरे साहब वहां हैं।
1: जी।
0: वो फोन करते हैं और कहते हैं कि साहब बस याद आ रही थी और आपका वो कार याद आ रहा था, मैं वहां पे SDM सदर के साथ साथ मुझे शासन ने वहां की नगर पालिका का वो EO भी बना रखा था
1: ऑफिसर जी,
0: तो वो भी कार्यकाल मेरा अच्छा था। मैंने वहां पे एक जलभराव की समस्या थी, इसके पहले जो यहाँ पे वर्तमान कलेक्टर साहब हैं उनसे पहले जो कलेक्टर साहब थे वहां के DM थे
1: जी,
0: तो उन लोगों ने कहा, वो भी वहां SDM रहे थे सहयोग से,
1: अच्छा,
0: तो कहा यार अमरोहा का कर्ज है मेरे ऊपर,
1: अच्छा,
0: तो हमने कहा सर हमने कहा कर्ज आपके ऊपर है तो हमने भी यहाँ का अन्न पानी खाया, नौकरी के मान सम्मान भी बहुत मिला, सर कैसे अगर हम सहयोगी बने? बोले यार यहाँ पे वो बाल शेप में है शहर
1: जी, अच्छा,
0: हाँ उसकी मतलब अगर बॉटम पे माना जाए तो शहर है थोड़ा सा, आप देखेंगे तो मतलब वैसे तो महसूस नहीं होता, लेकिन उसका जल भराव को देखा हम लोगों ने, बोले तुम EO भी हो SDM भी हो यार, तो इसमें कुछ जल निकासी, तो आपने देखा होगा एक नदी जो थी संबल वाला एक चला था कि वो जीवंत किया, वहां मिस्टर दीपेंद्र यादव उस समय हुआ करते थे SDM और DM साहब, तो हम लोगों ने जब इधर से शुरू किया, एक जोया शहर है वहां तक हम लोग, हाँ जोया से आगे हमारे खेत थे, DM साहब ने खुद फावड़ा चलाया, हमने खुद फावड़ा चलाया, तो जब यहां से उसका जल निकासी हो गया तो उसमें दीपेंद्र चूक मेरे परिचित थे, जूनियर थे, उनका भी सहयोग लिया कई बार डिमार्केशन में सीमा पे, और वो नदी जीवित हो गई, और नदी जीवित तो हुई, उसके साथ में सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अमरोहा वासियों को राहत मिली
1: जी, ड्रेनेज
0: ड्रेनेज में 100% तो नहीं, तो मतलब वहां के लोग अभ्यस्त हो चुके थे, आप समझो कि 1 घंटे के आधा घंटे की बारिश हो जाए तो ये मानेंगे कि आप उसको 1 फुट और 6 इंच पानी में घुस के जाना ही होता था, लेकिन आज ये है कि बारिश हुई अगर आधा घंटे लोग रुक जाते हैं तो पानी लगभग खत्म हो
1: जाता है।
0: तो ये सब चीजें आपको इस फील्ड में करने के मौके मिलते हैं
1: जी। बेशक इस पॉजिटिविटी के साथ आपने कार्य किया है सुखबीर सिंह जी, और आपकी आकांक्षाएं, आपका जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं उसी में कहीं ना कहीं वो सब अमेलगमेटेड है, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल, एक बहुत ही सेटिस्फाइंग करियर की भी निशानी होती है। आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुलाकात के अंतर्गत सुखवीर यादव से शोभित शर्मा की बातचीत। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी मथुरा की।

0: टूर्नामेंट युवा भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलने, आर्थिक मजबूती और खेल को ग्लैमर के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान करता है। IPL न केवल क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करता है बल्कि पर्यटन, खानपान, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में भारी राजस्व उत्पन्न करता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये केवल क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि भारत में क्रिकेट की संस्कृति को बदलने वाली एक व्यावसायिक क्रांति है। क्यों है लोगों में और खिलाड़ियों में IPL के प्रति इतना जुनून और इसका क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आइए जानते हैं शरद श्रीवास्तव से।
1: भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग आज की तारीख में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरे खेल जगत की एक बेहद लोकप्रिय और चर्चित इवेंट बन चुकी है, जिस पर पूरी दुनिया की उत्सुकता भरी निगाहें टिकी रहती हैं। और महज भारतीय क्रिकेट प्रेमी ही नहीं, पूरे क्रिकेट जगत में सभी खेल जानकार, विशेषज्ञ, पूर्व खिलाड़ी तथा आम खेल प्रेमियों के मध्य इस वक्त यदि चर्चा का कोई सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है तो वह IPL ही है। वर्ष 2008 में अपने प्रारंभ के समय जिस IPL की वैश्विक ब्रांड वैल्यू करीब $2 बिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वह आज बढ़कर लगभग 6 गुनी यानी $12 बिलियन हो चुकी है, जो कि भारतीय मुद्रा में तकरीबन 10,200 करोड़ रुपए बैठती है। वर्ष 2008 में BCCI ने कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ IPL के आयोजन की शुरुआत की थी। यह वो समय था जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का चलन प्रारंभ ही हुआ था। उस वक्त तक विश्व स्तर पर क्रिकेट में मुख्यतः 5 दिन के टेस्ट मैच और 50 ओवर प्रति पारी वाले एक दिवसीय मुकाबले ही लोकप्रिय हुआ करते थे। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठा था कि क्या T20 फॉर्मेट वाली IPL व्यावसायिक रूप से अपने कदम जमा पाएगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यह सारी आशंकाएं निराधार साबित हुई। IPL न केवल व्यावसायिक रूप से बेहद कामयाब साबित हुई बल्कि इसकी आशातीत सफलता ने पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट को भी लोकप्रियता के चरम पर पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, IPL की सफलता ने दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी व्यावसायिक कामयाबी की एक नई राह दिखाई और नतीजा यह हुआ कि आने वाले सालों में दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी IPL की तर्ज पर प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीगों के आयोजन शुरू हो गए। इस तरह के कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इंग्लैंड की इंग्लिश क्रिकेट लीग, दक्षिण अफ्रीका की SA20, पाकिस्तान की PSL और वेस्टइंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग के नाम लिए जा सकते हैं। इनके अलावा श्रीलंका, USA, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के क्रिकेट बोर्डों ने भी अपने यहाँ प्रोफेशनल T20 लीग के आयोजन प्रारंभ किए। ये अलग बात है कि इन तमाम लीगों में से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और कुछ सीजन के बाद बंद हो गई। दरअसल IPL की जबरदस्त व्यावसायिक कामयाबी के लिए जिम्मेदार है इसका सुव्यवस्थित ढांचा और अनुभवी प्रोफेशनल टीम, जो कि मैदानों और क्रिकेटरों के प्रबंधन से लेकर प्रसारण, टिकट बिक्री, प्रचार और आर्थिक मुद्दों तक आयोजन के प्रत्येक पहलू को बड़े प्रभावी ढंग से संभालती है। इस सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि साल दर साल IPL की प्रसिद्धि, लोकप्रियता और व्यावसायिक कामयाबी में बढ़ती ही जा रही है। आज यह न सिर्फ विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग बन चुकी है बल्कि दुनिया भर की तमाम प्रोफेशनल खेल लीगों में भी चौथे नंबर पर आ गई है। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से IPL ने इंग्लैंड की मशहूर फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2008 में 8 टीमों के साथ IPL का पहला सीजन खेला गया था। उस वर्ष शेन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें कुल मिलाकर 5-5 बार IPL चैंपियन बनने में कामयाब रही हैं और उनके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार IPL खिताब जीता है। समय के साथ IPL में उतरने वाली टीमों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि और विभिन्न टीमों द्वारा अपने प्रमुख खिलाड़ियों को दी जाने वाली अनुबंध राशि भी कई गुना बढ़ चुकी है। 2008 के पहले सीजन में जहां टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक बनने के लिए DLF समूह ने

0: प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए की बोरी लगाई थी, वहीं आज टाटा समूह ने 2024 से 2028 तक के 5 वर्षों के प्रायोजन अधिकार 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में हासिल किए हैं। लेकिन आईपीएल की सबसे बड़ी खासियत यह है, अपनी लंबी कामयाब यात्रा के दौरान अब यह महज एक खेल टूर्नामेंट नहीं रहा है, बल्कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर बन चुका है, जिसका लाभ असंख्य व्यक्तियों, कॉरपोरेट हाउसेज को होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी इससे कई रूपों में लाभान्वित हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की, जिनके लिए आईपीएल के जरिए से सर्वोच्च मंच पर अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका हाथ लगा। इस मंच पर सही वक्त पर चमक जाने वाले कई युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के द्वार भी खुलते देखे गए, और इनमें देशी और विदेशी दोनों ही तरह की प्रतिभाएं शामिल थीं। विभिन्न टीमों द्वारा अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी अच्छी खासी रकम में अनुबंधित किए जाने की जो परिपाटी आईपीएल ने शुरू की, उसकी बदौलत क्रिकेट को करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले युवाओं की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। युवा प्रतिभाओं के अलावा खेल से अवकाश ले चुके पूर्व दिग्गजों के लिए भी आईपीएल ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। ऐसे तमाम नामचीन खिलाड़ी आज कमेंटेटर, तकनीकी विशेषज्ञ, कोच के रूप में विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जुड़कर अपनी आजीविका चला पा रहे हैं। अब बात करते हैं देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर आईपीएल के प्रभाव की। एक प्रमुख अखबार के सर्वे के मुताबिक आईपीएल के जरिए से देश में लगभग 12.5 लाख रोजगारों का सृजन हुआ है। इनमें होटल, पर्यटन, टैक्सी, खानपान तथा विज्ञापन सेक्टर में बने अवसर शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अप्रैल और मई के 2 महीनों में, जबकि आईपीएल का सीजन अपने पूरे शबाब पर होता है, उस दौरान देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। सीजन के दौरान विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेल रहे विदेशी स्टार खिलाड़ियों के प्रशंसक उनका प्रदर्शन देखने के लिए निश्चित रूप से भारत पहुंचते हैं। यदि देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में आईपीएल के प्रत्यक्ष योगदान की बात करें, तो अब तक आईपीएल प्रबंधन, आयकर व जीएसटी के रूप में भारत सरकार को करीब 3,500 करोड़ रुपए की कर राशि अदा कर चुका है। इसे भी आईपीएल के एक सकारात्मक योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आईपीएल आज की तारीख में महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक व्यापक जीवन दृष्टि अर्थात परसेप्शन की शक्ल ले चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर तो वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभाव डाल ही रहा है, साथ ही इसके अनूठे बिजनेस मॉडल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी समृद्धि की एक नई राह दिखाई है।
1: श्रोताओं, खेल न केवल शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि मानसिक मजबूती के साथ व्यक्तित्व विकास में भी ये योगदान करते हैं। इनसे ऊर्जा का सदुपयोग होता है, और आजकल खेल एक शानदार करियर विकल्प भी बन गया है, जो युवाओं को न केवल नाम बल्कि अच्छी आय भी प्रदान करता है। बस आवश्यकता है प्रतिभाओं को खोजकर एक मंच देना, और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जनपद मथुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आइए सुनते हैं जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से की गई ये बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
2: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जिला खेल कार्यालय से जुड़कर जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
3: हमारे यहाँ सुबह और शाम, सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक प्रशिक्षण का कार्य चलता है, जिसमें हमारे पास 8 कोचेज हैं। फुटबॉल, हॉकी, फेंसिंग, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, ये सारे, और स्विमिंग के हम लोग 8 लोग हैं। तो बच्चे आते हैं यहाँ रोज प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने यहाँ चले जाते हैं, और उनको जितने भी हमारे कोचेज हैं सब बहुत डिसिप्लिन और अनुशासित हैं। बच्चों को स्किल पर और उनकी फिजिकल फिटनेस पे काम किया जाता है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं।
2: और वर्तमान में हमारे जिले के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों से संबंधित किस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं?
3: हमारे पास सभी ग्राउंड आधुनिक तरीके से बने हुए हैं, जैसे फेंसिंग का है, उसमें पिस्ट वगैरह है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। जूडो है, जूडो का हॉल है, मैट्स हैं। कुश्ती है, कुश्ती का हॉल है, मैट्स हैं। तो सारे उन मानकों पर है जो एक बाहर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, तो वो हमारी सरकार साथ में बहुत अच्छे सहयोग कर रही है, खेलों को

0: आगे बढ़ा रही है। खेलों में बहुत सारे पुरस्कार सरकार के द्वारा, सरकार नौकरियां भी खेल कोटे से देने लगी है, ये सब है।
1: जिला खेल कार्यालय से खिलाड़ी किस प्रकार से जुड़ सकते हैं इसके बारे में और बताएं।
0: बड़ी सरल प्रक्रिया है। हमारे यहाँ जो कोचेज हैं आठों खेल के या और अन्य खेल के, तो उनमें आता है बच्चा, एक 18 साल से नीचे है, वो 210 रुपये उसका पूरे साल का कार्ड बनता है। जो हमारे यहाँ फीस एक है सरकार द्वारा निर्धारित, उससे लेके 210 रुपये में पूरे साल का एक कार्ड, वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने लगता है सुबह शाम आके। वो कार्ड आइडेंटिटी कार्ड रहता है, मिनिमम फीस है, आ सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा कि जिस खेल में इच्छुक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उस पे फिर हमारे कोचेज उस बच्चे पे काम करते हैं, काम करके वो बच्चा हमारे जिले के लिए, हमारे मंडल के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए खेलता है।
1: जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आते हैं सीधा अपना यहाँ जुड़ सकते हैं या वो किसी स्कूल से संबंधित होना चाहिए।
0: ऐसा कुछ नहीं है किसी स्कूल से, लोकल बच्चे गार्जियंस आते हैं अपने घर से बच्चे लाते हैं। जरूरी नहीं है कि स्कूल का बच्चा है, सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो वो इंडिविजुअल गार्जियंस ले आता है। कोई स्कूल नहीं आ रहा है, उनकी संख्या नहीं हो रही है, तो वो सीधा आ सकता है, तो ऐसी कोई उसमें पाबंदी नहीं है।
1: वर्तमान में किस खेल में विशेष रूप से खिलाड़ियों की रुचि देखने को मिल रही है?
0: यहाँ जो बेल्ट है हमारी मथुरा की या मथुरा के आसपास की, वो कुश्ती वाली है, तो कुश्ती यहाँ का एक समझ लीजिए जनपद का खेल है, यहाँ के लोकल खेल है, तो कुश्ती में ज्यादा बच्चों की रुचि रहती है। तो यहाँ हमारा खेलो इंडिया का सेंटर भी कुश्ती का ही चल रहा है, तो उसमें बच्चे लाभान्वित होते हैं, खेलने जाते हैं।
1: और इसके अलावा और किन किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है?
0: एथलेटिक्स में है, फुटबॉल में है, सारे बच्चे, जूडो में है, बैडमिंटन में भी है, सारे खेलों में बच्चे पर्याप्त हैं।
1: यहाँ पर स्टेडियम में एक तरणताल बना हुआ है, तो उसमें क्या विशेष सुविधाएं, क्या उसके लिए यहाँ विशेष कोच रखे हुए हैं?
0: बिल्कुल, स्विमिंग का मैं खुद हूँ, तो मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ। लाइफ गार्ड है, उसकी प्रक्रिया आजकल में पूरी हो जाएगी, रेगुलर चालू हो जाएगा। अभी भी स्विमिंग पूल चल रहा है, उन बच्चों को एडमिशन है जो बच्चे स्विमिंग जानते हैं या स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, उन सारे बच्चों को हम एडमिशन दे रहे हैं और चला रहे हैं स्विमिंग पूल।
1: तैराकी में भी क्या कुछ विशेष रुचि देखने को मिल रही है?
0: हाँ, तैराकी में जो बच्चे हैं वो आते हैं, अपने कॉम्पिटिशन में भाग भी लेते हैं और अपना प्रैक्टिस करते हैं।
1: सरकार के द्वारा खेलो इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ हमारे जनपद के खिलाड़ियों को किस प्रकार मिल रहा है?
0: पूरे इंडिया स्तर पर खेलो इंडिया भारत सरकार की स्कीम है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है पूरे देश में, तो हर एक जनपद में अलग अलग खेल है। हमारे यहाँ कुश्ती का चयन हुआ है, जो कुश्ती खेल है वहाँ 30 बच्चों का चयन किया जाता है और उन 30 बच्चों को रेगुलर अभ्यास किट वगैरह हमारी सरकार द्वारा दिलाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाता है।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन उनको एक सही मंच नहीं मिल पाता है, तो ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में भी खेलों को लेकर क्या कोई विशेष योजना है?
0: जी बिल्कुल, विशेष योजना है। इस बार जो विधानसभा स्तर पर विधायक खेल स्पर्धा, जिले स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा, वो उसी का भाग है। जो ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो पहले विधानसभा स्तर पर भाग लेंगे, फिर सांसद खेल स्पर्धा वे जिले स्तर पे, और इसके बाद जोन स्तर पे आगरा में जोन होगी, फिर इसके बाद स्टेट होगी। ऐसे उन बच्चों को अवसर दिए जाते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए।
1: मथुरा जनपद में मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा अन्य जगह भी स्टेडियम वगैरह या अन्य सुविधाएं खेलों से संबंधित मौजूद हैं?
0: जी, जैसे हमारा एक समकक्ष विभाग है, हम लोग मिलके काम करते हैं, जिला युवा कल्याण अधिकारी, वो माट में उनका स्टेडियम है, कोसी में है, एक शेरगढ़ में है, 3 उनके बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनके व्यूज वगैरह हैं तो उसको देखते हैं।
1: जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन वो प्रतिभावान हैं, तो ऐसे खिलाड़ी अगर खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या सरकार द्वारा उन्हें कुछ सहायता या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है?
0: जी बिल्कुल, कराई जाती है जूनियर स्तर पे, सब जूनियर स्तर पे और सीनियर स्तर पे। हमारे यहाँ एक क्लब क्रीड़ा कोष की व्यवस्था है, जो खेल साथी पोर्टल पे अच्छे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट से लेके 6th प्लेस तक पोजीशन है, वो राष्ट्रीय स्तर पे है और प्रतिभावान है, अच्छे खिलाड़ी हैं, गरीब हैं, उनको एक क्लब क्रीड़ा कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता उनके उपकरण खरीदने पर, उनके भोजन पर, उनके अभ्यास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा एक कोष बनाया गया है, उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यहाँ से 4 तीरंदाजी में बच्चे हैं और 2 कुश्ती।

0: टीमें हैं उनको लाभ। अभी तक हम 14 लाख रुपए दे चुके हैं तीरंदाजी पे और लगभग 4 लाख रुपए कुश्ती पर।
1: इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है?
0: बिल्कुल, जब बच्चा अच्छा अचीव करने लगता है तो छात्रवृत्तियां हैं, खिलाड़ी को पुरस्कार राशि है जो हमारा विभाग सब देते हैं।
1: आगे आने वाली कुछ विशेष बड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताना चाहेंगे?
0: हम इस साल 26-27 में बहुत सारी यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे जिले और मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, तो उनमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे कराना है।
1: यहाँ जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं तो समय समय पर उनको प्रतियोगिताओं के बारे में और ट्रायल्स के बारे में सूचित किया जाता है?
0: बिल्कुल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से खिलाड़ियों का जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक जनमानस तक हमारी बात पहुंचे, सरकार की बात पहुंचे। सरकार खेल के रूप में बड़ा काम कर रही है तो वो बच्चे पार्टिसिपेट करें और प्रतियोगिताओं में भाग लें।
1: ऐसे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देती हैं और उनको खेलों से दूर रखते हैं? देखा जा रहा है कि आजकल खिलाड़ी जो हैं खेलों में भी बड़ा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपना अच्छा कैरियर बना रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा इसको लेकर आपका?
0: खेल में अनुशासित रहें बच्चे और अपना बेस्ट करें, ये नहीं देखें कि ये आइडियल, सबके आइडियल होते हैं, उनके भी आइडियल हैं, उन आइडियल को पकड़ें। जैसे आप एथलेटिक्स के हैं तो पीटी ऊषा वगैरह या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, हमारे थ्रोअर हैं अभी चोपड़ा जी, उनका इतिहास देखें कि उतना कितना ये वर्क करते थे, जब ये सफल हुए तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को जो ट्रेनिंग करने वाले हैं तो वो जरूर वो अचीव करेंगे जो उनने किया, नीरज चोपड़ा ने जो अचीव किया, हमारी उड़न परी कहलाने वाली पीटी ऊषा थी उनने बहुत अचीव किया, हमारे नामी ग्रामी आप जानते ही हैं दद्दा ध्यानचंद का नाम सुना होगा आपने, वो तो महान हस्ती थे। उनके जन्म दिवस पे हम लोग 29 अगस्त को बढ़िया खेल डे बनाते हैं और बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं।

0: और अब श्रोताओं खेल की सुर्खियों के साथ हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
1: खेलों में सबसे पहले बात खेल हॉकी की। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह में महिला टीम की स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर और पुरुष टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 1980 के मास्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में हार्दिक के अलावा सुखजीत, संजय और अभिषेक शामिल हैं। 2025 की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब बलजीत सिंह पुरस्कार विदु देवी खारी बम को दिया गया, जबकि हॉकी इंडिया प्रगट सिंह सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार संजय ने जीता। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजीत पाल सिंह पुरस्कार सुमित को और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का धनराज पिल्ले पुरस्कार सुखजीत सिंह को मिला। सभी खिलाड़ियों को 5-5 लाख का चेक दिया गया। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 48 टीमें तैयार हो गई हैं। पिछले 2.5 साल से क्वालिफाइंग प्रक्रिया चल रही थी। उत्तरी मेक्सिको के मॉन्टरी में मंगलवार को खेले गए अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ में इराक ने बोलीविया को 2-1 से हराकर 48वां और अंतिम स्थान हासिल किया। यह मैच बोस्निया हर्जेगोविना की यूरोपीय प्लेऑफ में 4 बार के चैंपियन इटली पर पेनल्टी शूटआउट में उलटफेर भरी जीत के कुछ घंटे बाद खेला गया। क्वालिफाइंग के आखिरी दिन यूरोप की 8 टीमें 4 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाली एक अन्य टीम कांगो थी, जिसने मेक्सिको में जमैका को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन, तुर्की और चेक गणराज तीनों ने यूरोपीय प्लेऑफ में क्वालिफाइंग किया है। स्वीडन

पोलैंड को 3-2 से, तुर्की ने कोसावा को 1-0 से, चेंग गणराज ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। विश्व कप 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा कि विश्व कप फुटबॉल में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने मेलबर्न में जबरदस्त कारनामा किया। वे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्कराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से हराया। अल्कराज का यह 7वां ग्रांड स्लैम है। पहली बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा था। सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रांड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। हालांकि जोकोविच के पास हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडर और राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक और अधिक खिताब है। सेरेना के नाम 23 एकल खिताब हैं। जोकोविच टेनिस के दमदार खिलाड़ी रहे हैं। कोर्ट पर उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उनकी सर्विस और बैकहैंड ड्राइव देखते ही बनता है। जोकोविच से आने वाले समय में भी बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। भारत में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी और क्रिकेट को जरूर शामिल किया जाएगा, जबकि कबड्डी, योगासन, खो खो और मलखम जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों में से 2 को जगह दी जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे की अध्यक्षता में इसके प्रतिनिधि मंडल ने पिछले सप्ताह मेजबान शहर अहमदाबाद में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। हमारे पारंपरिक खेलों में से कबड्डी, मलखम, खो खो और योगासन में से 2 को शामिल करने का प्रयास है। ग्लासगो में इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में बजट में कटौती के कारण क्रिकेट और हॉकी को शामिल नहीं किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि भारत में होने वाले खेलों में इसकी वापसी होगी। भारत में अब खेलों को प्राथमिकता में रखा जा रहा है। भारत में 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। भारत में फॉर्मूला 1 रेस की वापसी होगी। इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत में 2013 के बाद रेस नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के 10 वर्षीय आरित कपिल स्पेन के मेनारका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के अंतिम दौर में ऑस्ट्रेलिया के सैमुअल असाका के साथ ड्रॉ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर IM नाम हासिल करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आरित ने यह उपलब्धि 10 साल 7 महीने की उम्र में हासिल की। प्रतियोगिता में आरित का सबसे शानदार प्रदर्शन अर्जेंटीना के 12 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ओरो के खिलाफ रहा, जिन्हें शतरंज की दुनिया का मेसी कहा जाता है। टिपे सिगेमन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट के 31वें संस्करण में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ड्रॉ पर रोक दिया। मैच के दौरान कार्लसन ने क्वीन साउंड पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने सटीक बचाव करते हुए 24वीं चाल चलकर पास्ट प्यादे के खतरे को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े को सक्रिय करते हुए स्थिति को सरल बनाया। रुक के आदान प्रदान के बाद सफेद मोहरों के पास जीत का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ये टूर्नामेंट क्वालिफाइंग शतरंज के सबसे मजबूत आयोजनों में से एक माना जाता है। इसमें 2024 के विजेता नॉर्डरबैक, 2021 के चैंपियन जॉर्डन वान फॉरेस्ट और स्वीडन के नंबर 1 खिलाड़ी निल्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल में IPL का 19वां संस्करण चल रहा है। ये टूर्नामेंट मई के अंत तक चलेगा। इस समय IPL टूर्नामेंट अपने रोमांचक दौर में चल रहा है। प्रत्येक टीम प्लेऑफ में आने के लिए संघर्ष कर रही है। टूर्नामेंट में अब तक 50 से ज्यादा मैच हो चुके हैं। इस समय में खेले जा रहे सभी टीमों के सभी मुकाबले टूर्नामेंट के लिए अहम माने जा रहे हैं। अभी तक पहले नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स, तीसरे स्थान पर RCB और चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स जैसे टीमें हैं। इस बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बल्लेबाजी में राजस्थान

0: राइट्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने सभी को प्रभावित किया है। सूर्यवंशी ने आकर्षक क्रिकेट खेली है। सूर्यवंशी बहुत जल्द भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा, संजू सैमसंग, रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स की दो बार मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आईपीएल क्रिकेट अपने चरम पर है। कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आईपीएल क्रिकेट भारतीयों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। खेल जगत में यह महीना उपलब्धियों और संघर्ष से भरा रहा। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के इस अंक में बस इतना ही। आलेख, वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुत करता थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम का ये गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म क्योंकि का ये गीत जिसे आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने पसंद करता है आप सभी श्रोतागण। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहारकार, नर्मदा पोहारकार, अनिल पोहारकार, महेंद्र पोहारकार, सुनील पोहारकार, साहिल पोहारकार और सुजाता पोहारकार। अरायण राजस्थान से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, विमला जयपाल, सोनू जयपाल, ममता जयपाल, मोक्ष, दिशा, सुशांत और विक्रम जयपाल। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेग सिद्दीकी, रियाज रियाफाकत सिद्दीकी, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी और इनके परिवार के सभी सदस्य। मेन बाजार नहटौर उत्तर प्रदेश से एम जुल्फिकार राही, एम मुमताज राही, एम जुनैद राही, अल सबा गुल, गुल फिशा रानी, मोहम्मद आयान फरीदी और मोहम्मद कैफ फरीदी। नेहरू वार्ड यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतक बिरक और मीका बिरक। जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashvaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: और अब पेश है आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म दबंग का एक नगमा, जिसे आवाज दी है राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने। इसे सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। पटियाला रोड गंज ढुंडवारा से इरफान कुरैशी, रिहान कुरैशी, फैजान कुरैशी, शहादत कुरैशी, सऊद कुरैशी और इनके परिवार के सभी सदस्य।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं, पिंगा वाला चौक, गोराए, जालंधर पंजाब से, संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर और भारत मकर। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। इसी गीत को सुनना चाहते हैं, कस्बा अग्रवाल, मंडी टटीरी।

बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वली उल्लाह नूरजहां। राजनांद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इमरान आसमा और जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। फिल्म है दबंग।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं श्रोताओं की फरमाइश पर व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पेश है फिल्म अजनबी का ये गीत जिसे आवाज दी है कुमार शानू और सुनिधि चौहान ने। पसंद करता है आप सभी श्रोतागण। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलीस डिकैस्ट्रो, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म बरसात का एक गीत, जिसे आवाज दी है अलका याग्निक, कैलाश खेर और प्रियंका चोपड़ा ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, गंज ढुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

अलका याग्निक, कैलाश खेर और प्रियंका चोपड़ा के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम

0: 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd